107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज बुधवार है, चैत्र मास की आज गुरुवार है, चैत्र मास की सातवीं तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 28 मई 2026 प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

गुरु का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला। गु अज्ञान के अंधकार को दर्शाता है, जबकि रू अज्ञान के को दूर करने वाले को इंगित करता है। गुरु ब्रह्मा यानी कि सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी कि संरक्षक और महेश्वर अर्थात शिव संहारक की दिव्य त्रिमूर्ति का प्रतीक है। गुरु केवल एक मानव शिक्षक नहीं, बल्कि उन्हें परम ब्रह्म का साक्षात अवतार माना जाता है, जो सभी द्वैत से परे परम वास्तविकता है। इसीलिए तो गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।

रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम श्रीराम भद्र श्रीराम चंद्र इनके अनेक स्वरूप श्री रघुनाथ ऐसे जिनके कई नाम हैं, माँ सीता जी के स्वामी हैं श्री रामचंद्र जी का हम सब वंदन करते हैं।

प्रभु की शरणागति में वह शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। विश्वास रखिए, जो आपके पास है वह उनकी कृपा है, और जो आपको नहीं मिला उसमें उनकी कोई ना कोई बड़ी योजना छिपी होगी।

मीरा का भाव है, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग सारा, सदवन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्रेम प्रेम क्या होता है ये मीरा को सुनो तो जानो, ब्रज के विरह से पूछो या माधव के प्रेम में लीन होकर जानो।

राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे मध्यन। हमारी राधा रानी वृषभान दुलारी संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हैं, क्योंकि त्रिलोक के स्वामी माधव स्वयं आपका आलिंगन करते हैं।

धन अकिंचन का श्री कृष्ण शरणम ममः, लक्ष्य जीवन का श्री कृष्ण शरणम ममः, दीन दुखियों का निर्बल का दृढ़ सहारा श्री कृष्ण शरणम ममः।

से सरल मार्ग समर्पण है। जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है और मन शांत हो जाता है। आप सुन रहे हैं भक्तिमय कार्यक्रम आकांक्षा के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

मोरे हित हरि सम नहीं कोई, एही अवसर सहाय सोई होई। प्रभु मेरे कल्याण के लिए आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार ईश्वर हम सब की मनोकामनाएं हम सब का मंगल करे, इसी भावना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में कल 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया है। बैठक में प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में रेलवे, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थान तथा अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार पहले से ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई परंपरा शुरू ना हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। बादा में कल एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। साइकिल सवार को टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक के सवारियों से भरे ई रिक्शे के ऊपर पलटने से 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक बच्ची सहित 2 लोगों के इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन रोड

है। डीएम अमित आसेरी के मुताबिक हालात को देखते हुए क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संतृप्त परिजनों के लिए प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रहे
3: हमारी और आपकी साझा कहानी,
4: आपके अपने रेनबो की जबानी।
5: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
6: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
7: ये हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
2: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं आकांक्षा आपके साथ, स्वागत है आपका प्रोग्राम सदाबहार गीत में। तो बात से शुरुआत हुई है और बिना बातों के कहां ये जिंदगी चलने वाली है, तो आज हम बातें करेंगे बातों पर, जी हाँ, और गुनगुनाएंगे वो गीत जो वाकई अपनी बातों को, जज्बातों को बेशक बखूबी बहुत खूबसूरती से पेश करते थे। तो बस बने रहिए हमारे साथ ओनली 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

राधा बोले ना बोले, लेकिन हमें यहाँ पे बातें करती रहनी पड़ेंगी क्योंकि प्रोग्राम चला है सदाबहार गीत, जिसमें या यूँ कहें कि जिंदगी में हर वक्त अगर आप कुछ बातें छिपा कर रख लेंगे या सोचेंगे नहीं बोलते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जी हाँ, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, बहुत कुछ बढ़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि अगर ये सब चीज़ें बढ़े तो क्यों ना हम आके बातें करें। पर कभी कभी हमारा लहजा, हमारी बात करने का तरीका बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सिचुएशंस को सॉल्व कर देता है। बहुत सिंपल सी बात होगी, अगर बहुत एग्रेसिव होकर आप कहते हैं तो बेशक वो बात अच्छी नहीं लगेगी और ऐसा लगेगा कि बस आप किसी को रूल करना चाहते हैं, अपनी धौंस जमाना चाहते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी बात भी है और आपने बड़े आराम से कही, बहुत एहतियात बरत के कही कि किसी को तकलीफ ना हो, तो बेशक मानिए कि वो बात काम भी करेगी और आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि बेमकसद महफिल से बेहतर तन्हाई। जी हाँ, बेमकसद महफिल से बेहतर तन्हाई, बेमतलब बातों से अच्छी खामोशी है। अगर आपको लगे कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आप अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बात रख नहीं पाएंगे, तो बेशक आप खामोश हो जाइए, माफी कर जाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बात होनी चाहिए, बात करनी पड़ेगी, तो बेशक आप चुप मत रहिए, अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन क्लियर करिए, क्योंकि कुछ लोगों से हमारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं और उनसे सारी बात बताना बहुत ज़रूरी होता है।

जी, और ये खुशी और भी बढ़ जाती है जब आप अपनी बातों में बहुत ढेर सारा नुक्ता, बहुत ढेर सारी डिफिकल्ट वोकैबुलरी, जी हाँ, शब्दावली ना जोड़कर कोशिश ये करते हैं कि आपका लहजा इतना खूबसूरत हो कि वो कोई भी हो, किसी भी कद का इंसान हो, कहीं से भी आता हो, आपकी बात समझ जाए। वो यूं क्योंकि इसलिए नहीं कि वो आपकी बात समझ जाए, सामने वाला आपकी बातों को समझे। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा है आपकी बातें। जैसे कि कुछ लोग बहुत शॉर्ट में बातें करते हैं लेकिन क्लैरिटी रखते हैं, कुछ लोग बहुत घुमा के बातें करते हैं, गोल गोल बातें, लेकिन फिर भी आप मुद्दे तक नहीं पहुंच पाते। इसके बजाय मुझे ऐसा लगता है कि बातें इतनी सरल हों आपकी, आपके अल्फाज इतने सरल हों कि वो हर किसी के दिल को छू लें।

0: जी हाँ, 7:28 और अगर बात हो रही है बातों की, तो एक बात ये भी है कि भाई जब उस दौर की हम बात करें जिसके गीत आज हम सुन रहे हैं, सदाबहार गीत में 80 के पहले का टाइम, उस टाइम पे लोग जिस तरह से बात करते थे या फिर बड़े एहतियात से, बड़े आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं करते थे किसी बात को कहने में, और बेशक कई बार सोचते थे कि किसी को कुछ जवाब देना है, क्या कहना है, तो बस यूं ही नहीं कि जैसे आज हमने बस फ़ोन उठाया, टेक्स्ट किया या कॉल किया और अपनी बात कर दी, चाहे जैसे करी, लेकिन उस वक्त के लोग बहुत सोच समझ के अपनी बातें करते थे। तभी तो एक कहावत मुझे याद आती है जिसमें कहते हैं कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। आपके पास भी कोई ऐसी ही बातों से रिलेटेड कहावत हो जो जानते हो आप, तो हमसे शेयर जरूर करिएगा। बहरहाल इस कहावत का मतलब क्या है ये हम आपको बताएंगे इस प्यारे ट्रैक के बाद, लेकिन याद रखिएगा कि ये कहावत है बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ।
1: इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा,

जी हाँ, जब आप चुनते अच्छी चीज़ें हैं ना, शब्द अच्छे चुनते हैं, बातें अच्छी चुनते हैं और बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, तब बिल्कुल बेशक जो आपसे प्यार नहीं करता है ना, वो भी आपसे प्यार करने लगेगा। और मैंने आपसे कहा था कि एक कहावत इससे पहले बोली थी कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बातें अच्छी होती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर आप अच्छी तरीके से बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, या कोई जिद है या उसे पूरी करवाना है आज की जनरेशन के लिए, तो बड़े प्यार से अपनी बात रखिए, तो आपको हाथी के बराबर आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जिस तरह से आपकी जिद है वो शायद पूरी हो सकती है अगर आप अपनी बात अच्छी तरीके से रखेंगे। और उसी जगह अगर आप बहुत अकड़ के, बहुत गुस्से में, हमेशा एग्रेसिव होकर बात करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको ऐसी कोई सजा मिल जाए कि आपको ये लगे कि यार इसने तो मुझे हाथी के पांव के नीचे दबा दिया। तो बस अपनी बातों को खूबसूरत रखिए। और देखिए ना, मैंने कहा ना कि आज हम बात करेंगे बातों पर, और रोशनी रावत जी का हमारे पास मेला गया है। राम राम जी। मैं अच्छी हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, धमाकेदार, लाजवाब, बिंदास लग रहा है, और सुबह आपका आना और सदाबहार गीत सुनाना, मन को प्रसन्न हो जाना, अति सुंदर, थैंक यू सो मच। रोशनी रावत, ग्राम व पोस्ट बहमा, तहसीलपुर सफीरपुर, जिला उन्नाव से आप हमें मेल कर रही हैं। राधे राधे रोशनी जी। और इसी के साथ ही राम राज जी हमें मेल कर रहे हैं, गणेशाय नमः, और सदाबहार गीत जिला रायबरेली गांव से हमें आप मेल कर रहे हैं। राम राज, राजू भानु शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु भुईरा, बजरंगी काका, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। जो आपने गाना सुनाया बहुत ही अच्छे लगे, मुझसे रहा नहीं गया कि और मैंने ईमेल कर दिया। अच्छी बात है ना कि मैंने कहा ना कि कभी कभी जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, बुरी लगे तो मत बोलिए, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर अपनी बात रखिए। और कह रहे हैं मेल ज़रूर पढ़िएगा, मैंने मेल पढ़ लिया है आपका। और हमारी तरफ से आकांक्षा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। अरे यही तो होता है जादू ना, आपने बिटिया का और नमस्कार स्वीकार है आपका, और आपका इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे, थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। जावेद अख्तर जी हमें मेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी, पुष्पांजलि आपको अच्छा लगा, और कह रहे हैं एक दर्द भरा अंदाज कार्यक्रम भी जाना हुआ करती है आज, यही वजह है कि FM रेनबो के हम दीवाने हो चुके हैं, और गुड रेनबो में कहें कहीं ना कहीं है इसमें। और रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आप हमें मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो यही खूबसूरती है बातों की कि बस आप अपनी बातें बरकरार रखिए, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और देखिए ना, आपकी पर्सनालिटी भी खूबसूरत हो जाएगी, और आप जो बात कहेंगे, भले आप कसम ले ना लें, लेकिन उस बात पर विश्वास भी बन जाएगा।

जी हाँ, कुछ लोग ऐसे अपनी बातों से यही हो गए कि घर में ऐसा दबदबा बना कर रखते हैं कि बहुत मुश्किल होता है उनसे बात करना, और इसके चलते होता क्या है कि कम्युनिकेशन गैप, जी हाँ, एक लंबा सा गैप छिड़ जाता है जहाँ पर बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे बात करें। कभी कभी ये गार्जियंस के बीच में होता है, कभी कभी पार्टनर्स के बीच में होता है, कभी कभी कुछ घर में ऐसे रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं जिनके बीच इतना कम्युनिकेशन गैप होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो हर वक्त लहजा है बात करने का, वो बहुत सख्त है। डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है, अनुशासन अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इतना तो ढील रखिए, इतना तो आप लचीले होइए, फ्लेक्सिबल होइए कि आपसे हर कोई, हर उम्र का बच्चा आपसे अपनी बात तो रख सके। और आज के टाइम पर जिस हिसाब से दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, वाकई आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपके सोशल साइट्स पे बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत से लिंक्स हैं जिनसे आप बातें करते हैं, हाय हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं, लेकिन क्या वाकई आपकी लिस्ट में कोई ऐसा भी है जिसे आप बेशक अपनी दिल की बात रख देते हैं? अगर नहीं है कोई ऐसा, और ऐसा खालीपन आप भी महसूस करते हैं, तो क्यों ना आज थोड़ी सी कोशिश की जाए, एक जगह बनाई जाए कि आप कोशिश करिए कि आप अपना एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखेंगे, इतना लचीला रखेंगे कि आप एक ओपन कन्वर्सेशन, कि हाँ, आप आके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना हाल बता सकते हैं, और ये श्योरिटी आपको तब मिलेगी जब, पता है, जब आप बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो शब्दों का जादू कुछ ऐसा ही होता है, कभी कभी ये कोई मीनिंग ना हो, लेकिन फिर भी अगर खुशी में बोल दिया गया ना तो अच्छा लगता है।

जी हाँ, बेशक चेहरे पे खुशी छा जाती है जब आपके मेल्स हमें रिसीव होते हैं, और बबीता राव जी का मेल आया है, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ढेर सारी बातें लिखी हैं लेकिन वक्त कम है, और बस इतना कहेंगे, कह रही हैं सात तोपों की सलामी दे रही ये आज हमने बातों पे बात करी, यही होता है कि बातों बातों में देखिए हम क्या क्या कह जाते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच बबीता राव जी, राधे श्याम जी आपका भी मेल, थैंक यू सो मच, ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अनंत राम मिश्रा जी आपको भी प्रोग्राम अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, यही तो हम चाहते हैं। और इसी के साथ राजकमल यादव लिख रहे हैं, मैंने पहली बार मेल किया है, तो थैंक यू मेल करने के लिए और प्रोग्राम सुनने के लिए।

जी हाँ, 7:56 और ये वक्त कह रहा है कि प्रोग्राम सदाबहार गीत से आकांक्षा को दीजिए अनुमति। मिलेंगे आपसे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में 8:15 और हमारे साथ होंगे एक दोस्त जैसे कि वादे के मुताबिक, और 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से

0: राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के

0: सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग

0: जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर है आपके दो दोस्त। पहले मेरा नाम तो आप जानते हैं क्योंकि सुबह से हूँ आपके साथ, आकांक्षा हूँ आपके साथ और साथ में आ गए हैं स्टूडियो में।
1: जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस दिन की और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ रतन, और आप कैसे हैं? मौसम कैसा है? क्योंकि मैं जब सुबह आई थी तो ऐसा लग रहा था कि यार आज थोड़ी थोड़ी थोड़ी रहम होगी, धूप से थोड़ी राहत मिलेगी।
1: अभी जब मैं आया तो अब सूर्यदेव आ चुके हैं पूरी तरह से, और वो अपने रूप में आप बिल्कुल पूरी तरह से आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा गर्मी भी बढ़ती जाएगी, धूप भी बढ़ती जाएगी, लेकिन हाँ कि हम मौसम की अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल पूरा तरह से वही गर्मी वाला है। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ये भी बताया गया था कि एक दो दिन अभी मौसम ऐसा ही रहेगा, उसके बाद कुछ चेंजेस आ सकते हैं मौसम में, तो फिलहाल अभी तो मौसम से राहत मिलने वाली नहीं है।
0: मुझे लगा कि मैंने कहीं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी को कॉल तो नहीं कर दिया है क्योंकि रतन ने पूरी डिटेल बता दी। बहरहाल कोई बात नहीं, मौसम कैसा भी हो, मौसम का टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन प्रोग्राम का जो टेम्परेचर है, एंटरटेनमेंट का जो टेम्परेचर है, वो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र।
2: जी हाँ दोस्तों, 8:23 का समय और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपके दो दोस्त आकांक्षा और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं और अब समय हो चुका है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को आप तक पहुंचा दिया जाए। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कह रहा है आकांक्षा?
3: जी हाँ, आज का मॉर्निंग मंत्रा कहता है कि जो परिस्थिति से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है, जिसने किस्मत को कोसा है वह वही का वही खड़ा है।
2: क्या बात,
3: तुम्हारी तकदीर के चित्र भी तुम हो चित्रकार भी।
2: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिविटी भरी ये बात। और वाकई में दोस्तों, किस्मत को कुछ कहने से अच्छा है आप पॉजिटिविटी के साथ हर परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं, साथ में अपने आसपास के लोगों की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं। हमारे साथ ही जुड़े रहें, सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ, कोई जब ऐसा मिल जाता है या फिर कहें कि रतन हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ जाते हैं, देखिए गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आने लगे तो वाकई दिन बन जाता है।
1: दिन बन जाता है और आज का दिन तो वाकई में अपना बहुत खास है क्योंकि आज पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है ईद उल अजहा। और दोस्तों आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। इस पाक दिन पर आप खूब हर्ष के साथ, उल्लास के साथ और धार्मिक श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और सुबह से ही दोस्तों मस्जिदों में और उसके आसपास चहल पहल का पूरी तरह से माहौल है। जब मैं आ रहा था तो मैं भी देख रहा था कि लोग नए नए कपड़े पहनकर और मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे थे। लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं और नमाज के बाद आज के दिन कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। और इस दिन बहुत खास तौर पर इसको मनाया जाता है और ये खास एक जो बहुत बड़ी कुर्बानी की जो बात होती है तो बहुत खास ये त्यौहार बन जाता है और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है।
0: जी हाँ, ईद उल अजहा मुख्य रूप से त्याग, समर्पण और अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे हजरत इस्माइल की अल्लाह की राह में दी जाने वाली कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो आप सभी को इस दिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से आप अपना दिन ये मनाएं, सेलिब्रेट करें। जैसे कि रतन ने बताया कि सुबह से ही सड़कों पर रौनक दिख रही है और बहुत से लोग जाते दिख रहे हैं नमाज अदा करते हुए, तो बस खूबसूरत सा ये दिन भी।
1: और वाकई में बच्चों में जो उत्साह दिखता है, आकांक्षा, वो बिल्कुल ये देखने वाली बात होती है। वो कल जब रात से ही पूरी तरह से मार्केट्स में रौनक थी, बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, इतनी अच्छा लग रहा था कि जैसे कि हाँ ये जो नज़ारे ये हमेशा इसी तरह बने रहें। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज इस त्यौहार को आप सेलिब्रेट कीजिए सबके साथ और खुशियाँ मनाइए। हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 8:37 हो चुके हैं रतन, और वक्त देखिए ना कितनी खूबसूरती से बीत जाता है।
1: जी हाँ दोस्तों, वाकई में वक्त की अगर बात करें तो समय किसी के लिए नहीं रुकता, और इसीलिए कहा जाता है कि समय के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये परिवर्तन जो है यही जीवन का नियम है। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और लोग यही सोचते हैं कि जो चीज़ जैसे चल रही वैसे ही चलती रहे, लेकिन परिवर्तन जीवन का नियम है। इसलिए परिवर्तन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो सोचिए आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए जितने भी परिवर्तन हैं उनको स्वीकार करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।
0: और रतन, परिवर्तन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आज की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, और इस सोसाइटी को, इस समाज को चलाने के लिए दोनों पहिए, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान जगह मिलना या फिर दोनों की बात को समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम इग्नोर करते हैं किसी एक भी इंसान को, तो आपको लगता है कि ये जो पहिया है ना, ये जो गाड़ी ना, वो डगमगा जाएगी।
1: बिल्कुल सही बात है। और वाकई में दोस्तों, जहाँ जितनी वैल्यू और जितनी अगर हम कहें महत्ता पुरुष की है, उससे

0: इतनी ज्यादा महिलाओं की है हम सब के दिलों में और वाकई में दोस्तों ये होनी भी बहुत जरूरी है और करनी भी जरूर चाहिए और आज का ये जो दिन है अपने आप में बहुत खास है आकांक्षा इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम बकरीद का ये पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में आज जो तारीख है 28 मई ये जो दिन है ये जो तारीख है ये अपने आप में बहुत ज्यादा मुख्य रूप से इस दिन को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है कारण है इसका क्योंकि आज हम सभी विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मासिक धर्म स्वच्छता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे तो ये जो दिवस है वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में इसके जो नाम से ये पता चल जाता है कि इसकी महत्ता और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी अधिक है
1: जी हाँ और आज ये दिन इस और भी खास है क्योंकि महिलाओं पे हमने बात करी अभी जैसे हमने बात करी कि जैसे आप इस समाज की जिस तरह से हर जगह पे महिलाओं को अवसर मिल रहा है जैसे इतने बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ कही हैं कि मैं सिर्फ तेरे चूल्हे की आँच नहीं मैं सिर्फ तेरे चूल्हे की आँच नहीं मेरी रोशनी चांद तक पहुँची है तो ये बातें जब ये पंक्तियाँ निकल कर आती हैं तो

0: कितनी अधिक है।
1: जी हाँ, और आज ये दिन इस और भी खास है क्योंकि महिलाओं पे हमने बात करी। अभी जैसे हमने बात करी कि जैसे आप इस समाज की जिस टाइम से हर जगह पे महिलाओं को अवसर मिल रहा है, जैसे इतने बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही हैं कि मैं सिर्फ तेरे चूल्हे की आँच नहीं, मैं सिर्फ तेरे चूल्हे की आँच नहीं, मेरी रोशनी चांद तक पहुंची है। तो ये बातें जब ये पंक्तियां निकल कर आती हैं तो भले हमारे मुंह से वाह वाह निकलता है, बहुत तारीफें आती हैं, और हम में से ही कोई अगर स्त्री ऐसा कुछ कर गुजरती है तो बहुत सी बातें आती हैं उठ करके, देखे वो नारी को ये स्थान मिल रहा है, ये स्थान मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ज़रूरत है हमें समझने की या फिर और लोगों को समझाने की कि संघर्ष जो स्त्री का होता है वो सिर्फ ये कहें कि फाइनेंशियल तौर पर नहीं होता या सामाजिक तौर पर नहीं होता, बल्कि उनका शारीरिक संघर्ष भी होता है। और इस संघर्ष को आप पता है कैसे कम कर सकते हैं? वो ऐसे कम कर सकते हैं कि आप अगर उनको समझें, उनको उनकी एक स्पेस, एक सेफ प्लेस दें, तो वो कहीं ना कहीं और भी आसानी से अपने जीवन को जी सकती हैं।
0: और वाकई में दोस्तों आकांक्षा इसलिए ये ऐसी बात कर रही हैं, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा प्रकाश डाल रही हैं, क्योंकि आज हम सभी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 28 मई को ये दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक एनुअल ग्लोबल एडवोकेसी डे के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जिसे मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और ये हर साल 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। दोस्तों ये जो अगर हम इसकी बात करें इस दिन की, तो इसमें अपने अपने आप में बहुत ज़्यादा खासियत है, और ये खासियत क्यों है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आकांक्षा आपको बताने वाली है।
1: जी आपको बता दें, क्योंकि ये मासिक धर्म की औसत अवधि का एक बताएं कि जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। 28 मई ही इसको चुना गया, और इस वर्ष 2026 का जो विषय है टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, जिसमें स्वच्छ और सुरक्षित मासिक धर्म उत्पादों का उपयोग करना, इसके साथ ही साथ सिर्फ उत्पादों को ही नहीं बल्कि उन व्यक्तियों को भी शामिल किया गया, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हों, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हों, वो भी इस बात को समझें कि ये जो एक दौर है रतन, कहीं कहीं आप देखिए ना इस चीज़ को, या फिर इस कहते हैं ना कि इस जो शारीरिक बदलाव है जो एक स्त्री में होता है, इसको बहुत उत्साह के साथ भी सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हिचक ना बचे कि ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, इसके लिए आप संवेदनशील रहें, इसका सम्मान करें।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही आकांक्षा, और वाकई में ये एक भ्रांति भी बहुत सारे लोगों में होती है इस चीज़ को लेकर, स्वच्छता को लेकर, और बहुत सारी बातें ऐसी की गई हैं कि इस समय में ऐसा कुछ होता है कि स्त्रियों से दूर रहो या फिर स्त्रियों को छुओ नहीं, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं समाज में फैली हुई, तो उन सब बातों में को लेकर जागरूकता लोगों में फैलाना, और साथ में लोगों को अवेयर करना इस चीज़ के लिए कि हाँ ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि हर महिला में होती है, और उसको समझना, और उसके लिए जब ऐसी स्थिति होती है उसमें आपका या हमारा एक जिम्मेदारी बनती कि हम उस चीज़ को समझें और उसमें उनका साथ दें।
1: बिल्कुल, और आज ये बातें क्यों करी गई ये आपको हमने बता दिया है, क्योंकि आज है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, इसीलिए आज का मुद्दा भी हम ऐसे ही कुछ आपसे पूछना चाहेंगे, तो है आज का मुद्दा।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का।
1: जी हाँ, तो मुद्दा आज का ये है कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से महिलाओं के मुद्दे पर पुरुषों को कितना सजग रहना चाहिए, कितनी भागीदारी होनी चाहिए आपकी।
0: जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात, और बहुत अच्छा ये मुद्दा, और हम आशा यही आपसे करते हैं कि आप ज़रूर आज के इस मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुंचाएंगे। हमें आपकी मेल्स का लगातार इंतज़ार रहेगा। हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आज आप हमारे साथ जुड़िए, इस मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं, और अगर इसके अलावा भी कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें आपकी मेल्स का इंतज़ार है। आप हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 8:50 का समय और गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये दौर, आपका हमारा ये प्यारा सा साथ और आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ जुड़ते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, सुबह से आप हमारे साथ यानी कि एफएम रेनबो के साथ जुड़े हुए हैं और अपना साथ हमें दे रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास लगातार मेल्स भी आ रही हैं और आज के मुद्दे पर, चूँकि एक गंभीर ये मुद्दा है और इस पर हमें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। और वाकई में दोस्तों, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं या फिर उनके हम अधिकारों की बात करते हैं, तो बातें और भी ज़्यादा महत्व रखती हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और ये खास दिन इसलिए चुना गया है, आपको पता है रतन, आप ये सोच रहे कि मई ही क्यों चुना गया?
0: जी जी जी जी
1: जी हाँ, जैसे कि 5 होता है तो जो फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरेशन होता है ये 5 डेज तक होता है, इसलिए खासकर मई का महीना चुना गया। और ये बड़ी खास बात है कि इतनी बारीक चीज़ों को ध्यान में रखकर इस दिन को चुना गया। तो कहीं ना कहीं देखे ना कि छोटे छोटे एफर्ट्स आप करते हैं अपने घर के हर मेंबर के लिए, लेकिन आपके घर का एक वो मेंबर जिसे आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, अगर उसकी मेंटल हेल्थ की कोई इशू है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो आप सोचते हैं कि यार इनका तो मतलब ये रूटीन ही है, ये शारीरिक चीज़ है, तो इससे हम क्यों ही उलझे। लेकिन आपको पता है जब आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों में सहयोग करते हैं तो बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और आज की जनरेशन के हिसाब से जितनी अवेयर है, जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जितना हम फास्ट फॉरवर्ड हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी एफर्ट्स बहुत कारगर साबित होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आकांक्षा आपने कि जैसे कि अगर कोई भी महिला है, हमारे घर में ही महिलाएं होती हैं, हमारी माँ होती हैं, हमारी सिस्टर होती हैं, हमारी वाइफ होती हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वो तो निभाती रहती हैं, लेकिन अगर हम एक हल्की सी उनको सपोर्ट दे दें या फिर हल्का सा हम उनको दिखा दें कि हम उनकी केयर कर रहे हैं, तो एक पता है आपको, इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है, इतनी खुशी हो जाती है उनको कि वो अपना सारा जो उनका दर्द है या फिर सारा जो उनकी थकान है वो उस एक बात से ही वो उतर जाती है। और ऐसा आप कर सकते हैं कैसे, जैसे कि अगर आप आपकी माँ हैं या फिर आपकी सिस्टर है या फिर आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, अगर वो आपके लिए बहुत कुछ कर रही हैं, आप देख भी रहे हैं लगातार और आपको नहीं समय मिलता कि आप उनसे कुछ कह पाएं, तो आप कहीं गए, ऑफिस चले गए या कहीं भी हैं, आप बाहर से उनको एक कॉल करते हैं, आपने खाना खाया या फिर आप काम करने के बीच में आपने दवाई ली, तो इस तरह की जो बातें होती हैं बहुत फर्क डालती हैं उनके ऊपर और आपके प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो इस चीज, इस छोटी सी बात से बहुत कुछ समझ जाती हैं बिना कुछ कहे।
1: जी हाँ, और आपको ये बता दें कि रतन, आज के टाइम पे जैसे हमने भी बात करी कि भाई वक्त बदल रहा है और जो पुरुष तबका है, यूँ कहें समाज है, उसमें भी मेंटालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अवेयर हो रहे हैं और साथ ही साथ वो साथ भी देते हैं। और लोगों को ये विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जैसा कि हम आज बता रहे हैं, तो मासिक धर्म में किस तरह से स्वच्छता बरकरार रखनी है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, बहुत एडवांस हो चुकी हैं चीज़ें। आजकल बच्चों को स्कूल्स में भी जाकर बताया जाता है, उनको पहले से प्री एजुकेट किया जाता है कि आप कैसे आप इस चीज़ के लिए तैयार होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं फॉर द बॉयज़ ये कैंपेन चलाया जाता है कि बॉयज़ को भी पता हो कि वो ड्यूरिंग दिस टाइम की लड़कियों से कैसे बिहेव करें, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, ऐसी किसी समस्या में है, तो वो खुद ना डाउट में चले जाएँ कि अरे ये क्या हो गया, उनको भी इस बारे में पता हो, ताकि वो अपनी जो फीमेल फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा घर में मेंबर है उसको बहुत इजीली ट्रैक करें, टैकल करें, उसकी हेल्प करें। तो इस तरह की थॉट और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने आपसे पूछे हैं कि भाई अगर ऐसी परिस्थितियां कोई होती हैं हिसाब से महिलाओं के मुद्दे में, कोई भी मुद्दा हो सकता है, या आज पर्टिकुलर डे को लेकर ही नहीं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, उनकी हेल्थ की बातें होती हैं, उनके खान पान की बातें होती हैं, बहुत बार वो बहुत सी चीज़ें इग्नोर भी कर देती हैं अपने बारे में, तो आप कितना सजग।
0: और अक्सर मैंने देखा है आकांक्षा कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो जितने भी मेल घर में होते हैं उनकी केयर के लिए वो इतना ज़्यादा तत्पर रहती हैं, इतनी ज़्यादा वो केयर करती हैं कि इस कारण वो अपनी हेल्थ का, अपने बारे में सोचना वो एक तरह से वो भूल ही जाती हैं। वो सुबह उठना उनका सबसे पहले उठना, रात में सबसे देर में सोना, ये उनका एक

0: पूरा साइकिल बन जाता है कि हाँ हमें, और ऐसा करते करते इसका फर्क कहाँ पे आता है, इसका फर्क आता है उनकी हेल्थ पर, और उनकी जब हेल्थ पे ये फर्क आता है और हमें यहाँ पे हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उनकी इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि अगला व्यक्ति जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और वो हमसे एक बार शिकायत भी नहीं कर रहा है कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। देखिए ये होता है एक केयर करने का कितना अच्छा तरीका कि अगला आपसे शिकायत भी नहीं कर रहा, उसको प्रॉब्लम भी है लेकिन फिर भी वो आपकी केयर कर रहा है। तो जब इतनी केयर कोई करता है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी भी उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और बनती भी है कि हम उसका ध्यान रखें, चाहे हम उसको एहसास ना होने दें कि हाँ हम आपका ध्यान रख रहे हैं, या फिर हम उसको छोटे छोटे तरीकों से उसको इस चीज का बताएं कि हाँ हम आपका ध्यान रख रहे हैं। तो तरीके कई हो सकते हैं आपको केयर करने के, एक दर्शा के तरीका होता है कहने का, एक बिना दर्शाए होता है कि हाँ हम आपकी केयर कर रहे हैं, तो आपको जो पसंद आप कर सकते हैं लेकिन करना जरूर है।
1: जी हाँ, और एक बहुत छोटी सी बात कहूंगी रतन ने इतनी बड़ी मतलब बातें करी आपसे कि आदमी काम से आराम की ओर लौटता है जब घर जाता है और औरत काम से काम पर लौटती है, तो ये छोटी सी लाइन है बट बहुत बड़ा असर है। अगर आपके घर में वर्किंग वुमेन है या नॉन वर्किंग वुमेन है तो हाउस वर्क भी बहुत बड़ा काम होता है, आपको संभालना, आपके घर को संभालना, थोड़ी सी हेल्प, थोड़ों का थोड़ा सा साथ और बात को समझना और बस।
0: हमारे पास कुछ मेल्स भी आई हैं, 8:55 का समय हो चुका है, गुलफ्सा सिद्दीकी की मेल हम तक पहुंची है। हेलो गुड मॉर्निंग आप दोनों को, गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से, मेरी तरफ से आप दोनों को और सभी सुनने वालों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। रतन भाई, आकांक्षा मैम आप दोनों आ जाएं मेरे घर पर, सब कुछ बना लिया है जैसे किमामी सेवई, चना मटर और दही फुल्की, नमाज भी हो चुकी है, आना जाना शुरू हो गया है और मैं इस वक्त आप अपने गांव वाले घर पर हूँ। वाह, आप तो अपने गांव वाले घर पर चली गई, रोज एड्रेस हमें संडीला का आप भेजती है, अब बताइए गांव वाले घर पे मैं पहुंचूंगा कैसे।
1: फरहान सुनील कुमार, वाह भाई वाह, गुड मॉर्निंग, आपको भी ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप दे रहे हैं। गोकुलपुर सीतापुर से आप हमें मेल करें, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। और रमेश चौहान जी का भी हमारे पास मिलाया है, सभी को ईद उल अजहा की इन्होंने दिल से मुबारकबाद दी है और कह रहे हैं भाई प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, कोई गाना फरमाइश करिए, बहुत से मौके आएंगे जहां पर आप अपनी फरमाइश।
0: ये देखिए फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है हाँ, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि जितने भी हम सॉन्ग्स प्ले करें वो आपको जरूर पसंद आए। वारिस अली साहब की भी मेल हम तक पहुंची है और इन्होंने ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद भेजी है और साथ में अर्ज किया है, त्योहार तो बार बार आएंगे, जो बिछड़ गए वो फिर ना आएंगे। पिछली बकरीद मैंने अपनी वालिदा के साथ मनाई थी लेकिन इस बकरीद मेरी वालिदा मेरे साथ नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, मैं आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं, बच्चों के लिए त्यौहार मनाना पड़ रहा है वरना मैं बकरीद ना मनाता, आज मैं FM को बहुत अपने नज़दीक पा रहा हूं। थैंक यू सो मच वारिस जी, और आप अकेले नहीं हैं, हम सभी आपके साथ हैं। बिल्कुल देखिए, अगर कोई आपके इससे चला गया है लेकिन कहीं ना कहीं तो वो आपको देख ही रही हैं, तो आप ज़रूर उनकी खुशी के लिए खुश रहिए और हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: और जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ का पहला घंटा यहीं पर होता है वाइंड अप, लेकिन एंटरटेनमेंट का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं, इंजॉय करिए ये गीत।

नमस्कार, प्रातः के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इस खबर को विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, मोदी की देशवासियों से भावपूर्ण अपील, भीषण गर्मी में बरते हर संभव सावधानी। हिंदुस्तान ने लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील, प्यासों को पानी पिलाएं। वहीं वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है, मोदी बोले, भीषण गर्मी में बरतें सावधानी, मौसम की मार झेल रहे पशु पक्षियों का भी रखें ध्यान। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर कल अहम फैसला सुनाया और वोटर लिस्ट की समीक्षा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के उसके अधिकार को संवैधानिक व वैध करार दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता की बुनियाद है। निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान करवाने में नहीं होते, इसके लिए सही और भरोसेमंद वोटर लिस्ट भी जरूरी है। ये खबर विभिन्न समाचार पत्रों के पहले पन्ने की सुर्खी बनी है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरा SIR। अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, SIR वैध, चुनाव आयोग का अधिकार, लोकतंत्र की मजबूती व निष्पक्ष चुनाव मकसद। वहीं स्वतंत्र भारत का शीर्षक है, SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार। नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कल मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। इस समाचार को विभिन्न समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर मुख्य रूप से प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, CM ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में दिए निर्देश, नोएडा एयरपोर्ट के लिए चलेंगी ई बसें। दैनिक जागरण ने लिखा है, योगी बोले, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 110 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। वहीं स्वतंत्र भारत ने लिखा है, जेवर एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान, उपलब्ध होंगी इलेक्ट्रिक बसें। इसके अलावा ईद उल अजहा आज बाजारों में रौनक। सहारनपुर से ATS ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को दबोचा और बांदा में ओवरलोडेड ट्रक ने 6 को रौंदा। इसी खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
7: नवज के 5 मिनट और एक बार वेलकम बैक। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ। एक घंटा बीत गया बड़े अच्छे से और बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको आज बकरीद की।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत हार्दिक और दिली मुबारकबाद। और साथ में गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर मैं रतन और मेरे साथ आकांक्षा, हम दोनों आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। और दोस्तों आज हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे।
7: जी हाँ, जिस पर हम पहले ही आपसे बातें ढेर सारी कर चुके हैं। अवेयरनेस की बात करें तो आज का मुद्दा भी कुछ हमने ऐसे ही रखा है कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से महिलाओं के मुद्दे पर पुरुषों को कितना सजग रहना चाहिए।
8: तो दोस्तों बिल्कुल कितना ध्यान देते हैं ये आपको बताना बहुत जरूरी है। तो आज के मुद्दे पर अपनी बातें हम तक पहुंचाइए, हमें हमारी मेल आईडी के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी मेल आईडी fmakashwanilakhnau@gmail.com, इस मेल आईडी के माध्यम से आप आज के मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ पर ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए, इसे एंजॉय कीजिए। हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: Dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-

0: नमज के 12 मिनट और दिल का हाल कुछ भी हो लेकिन आपको हमें मेल करना है आज के मुद्दे पर. आज हम मना रहे हैं विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जिस पर आपसे पूछा गया था कि भाई आप कितनी अपनी घर में जो महिलाएं हैं या फिर आपकी कलीग्स हैं अगर फीमेल फ्रेंड हैं तो आप कितना ध्यान देते हैं उनकी बातों पर, उनका ध्यान कैसे रखते हैं, आपकी भागीदारी क्या है, तो उस पर आपसे राय पूछी थी. तो बस फटाफट से हमें मेल करिए और मेल्स तो आ ही रहे. लेकिन रतन, अगर हम सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो एक बात ये भी आती है कि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं.
1: जी हाँ दोस्तों, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं. अच्छा एक बात बताइए, आप अपने नाम पे कितने सिम यूज करती हैं मैक्सिमम?
0: अभी तो मेरे पास दो ही सिम है.
1: दो सिम है और मेरे पास दो या तीन सिम होंगे. लेकिन लोग अगर यूज करने की कोशिश करते हैं तो कम से कम, जैसा कि जो नियम है उसके अनुसार, मैक्सिमम आप एक आईडी पर 9 सिमों का यूज कर सकते हैं. 9 सिम ही ले सकते हैं. इससे ज्यादा अगर आपने सिम लिया तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है या फिर वो बंद भी हो सकते हैं. ये नियम है, ठीक है. तो मैक्सिमम 9 सिम से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते. लेकिन होता कुछ ऐसा है कि आपके साथ जब आप सिम लेने जाते हैं, किसी भी कंपनी का सिम आप लेते हैं, तो आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है और आपके अंगूठे से वेरिफिकेशन भी आपका किया जाता है और साथ में ओटीपी भी आप तक भेजा जाता है.
0: बिल्कुल. और कई बार ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर होता है वो बार बार कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं आया, फिर से अपना थंब इंप्रेशन दीजिए, फिर से अंगूठा लगाइए, फिर से थंब इंप्रेशन दीजिए. तो आपको ये लगता है कि कुछ फॉल्ट हो रही है, ऐसा हो रहा है. लेकिन आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है. जी हाँ, आप इससे सचेत हो जाइए. अगर बार बार वो आपका थंब इंप्रेशन ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और आपके नाम पर कई सिम क्रिएट कर रख सकता है. तो इसकी

0: जांच करना जरूरी है, अवेयर रहना जरूरी
1: जी है। जी दोस्तों, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आकांक्षा ने कहा कि अगर वो आपके बार बार फिंगरप्रिंट ले रहा है और ओटीपी आपको सेंड कर रहा है और आपसे पूछ रहा है, तो आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतना बड़े स्तर पर फ्रॉड ये होते हैं कि आप पूरी तरह से आप पहचान भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप सिर्फ इस धोखे में रह जाते हैं कि शायद ओटीपी सही नहीं आ रहा है या फिर हमारा फिंगरप्रिंट वहां पे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। और इस स्थिति में होता ये है कि वो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे अवेयर रहने की जरूरत है। अवेयर इस तरह से रह सकते हैं, अब अवेयर रहने के तरीके क्या हैं वो भी आप जान लीजिए। तरीका ये हो सकता है कि अगर आप इस तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने नाम पर जारी जो सिम कार्ड हैं उनकी आप जाँच कर सकते हैं। जाँच कहाँ पर करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सा गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप है संचार साथी के नाम से। इस ऐप के माध्यम से, इस ऐप को आप डाउनलोड करें और इस ऐप के माध्यम से आप अपने जो आधार कार्ड का जो नंबर है उसको आप वहां पे डालकर चेक कर सकते हैं कि इस आईडी पर यानी आपके आधार पर कितने सिम इस वक्त चल रहे हैं। और जो नंबर आपके पास हैं वो तो आपके अपने हैं, लेकिन जो नंबर आपको दिखते हैं वहां पे कि वो नंबर रनिंग में तो है लेकिन वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ,
0: बिल्कुल,
1: तो तुरंत आप उन नंबर्स को ब्लॉक करने के लिए वहां पे रिक्वेस्ट दे सकते हैं और वो नंबर आपके पास, आप के पास से वो नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो ये जो एक अवेयर रहने का तरीका है, तो ये संचार साथी ऐप है, इसके पोर्टल पर भी आप जा सकते हैं sanchar sathi.gov.in के माध्यम से भी आप सीधे इस पोर्टल को लॉगिन करके उस पर इस तरह की चीजें एक्टिविटीज आप देख सकते हैं।
0: और अगर ऐसा कुछ होता है या फिर आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में, जैसे होता है ना रतन, हमारे घर में कोई काम कर रहा है, कोई आया ऐसे ही कि कोई किसी रिश्तेदार ने कह दिया या किसी फ्रेंड ने कह दिया कि यार मुझे एक सिम दिला दो, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, जान पहचान का है, सिम दिला देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बाय चांस अगर ऐसा होता है, कोई भी गलती होती है, तो वो आप पर आएगी। जैसे आप अपनी आईडी का मिसयूज नहीं होने देते ना, अपने पास ही रखते हैं, वैसे ही सिम कार्ड भी सिर्फ आप अपने नाम पर ही लें और किसी और को यूज़ करने ना दें। अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है तो आपको पता है कि 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है और 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ये जांचना है कि भाई आप सिम लेने गए, आप सोच रहे हैं कि आप कैसे पता करें कि इस पर किसी और का नाम तो नहीं है, तो IMEI नंबर की जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, तुरंत वहां पर #06# आप डायल करके ये जांच कर सकते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, आप जो कोड अभी आकांक्षा ने आपको बताया कि #06#, जिस कोड को आप डायल करेंगे तो आप अपने जो भी आपका मोबाइल है उसका आप IMEI नंबर आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपने आपको अवेयर रखें और साथ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखिए, हर चीज़ के लिए एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है बचाव और जागरूकता। इसलिए जागरूकता होनी बहुत ज़रूरत है और हम इसीलिए समय समय पर इस तरह की बातें, इस तरह की जो सूचना है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि आप हमेशा सावधान रहें।
0: बिल्कुल। और रही बात एंटरटेनमेंट की, इंफॉर्मेशन का तो डोज मुझे लगता है रतन अच्छा खासा दे दिया। चलते हैं एंटरटेनमेंट की ओर, एक प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पे। आज के मौसम को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो बाहर जाके पता चलेगा, लेकिन अंगारे तो आसमान से बरस रहे हैं, लेकिन ये गीत कहीं ना कहीं सुकून बढ़ा देता है। तो एंजॉय करिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
4: जी हाँ दोस्तों, 9:23 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और जुड़े हुए हैं आपके दो दोस्त रतन और आकांक्षा आपके साथ। और दोस्तों, आज हम सभी मना रहे हैं ईद उल अजहा का ये पवित्र और पाक त्यौहार, और इस त्यौहार के अवसर पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ के मौलाना यासूब अब्बास जी। चलिए करते हैं उनका स्वागत गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
5: बहुत शुक्रिया आपका, मुबारक हो आप सब
4: जी। और आपको भी आज ईद उल अजहा की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और दोस्तों, आज इस पाक और मुकद्दस दिन पर हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास जी जुड़े हैं और हमसे वो कुछ खास बात बताने वाले हैं। सर, आपका स्वागत है।

0: जी भाई आपका भी बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।
0: आज ईद उल अजहा है जिसे बकरीद कहते हैं
1: जी।
0: ये दो नबियों का पूरा वाकया है। जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे जनाब इस्माइल को मकाम मीना पे जबा कर रहे हैं। तीन दिन तक ये मुसलसल ख्वाब में देखा और तीसरे दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरे लाल मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें मकाम मीना पे जबा कर रहा हूँ। तो जनाब इस्माइल ने कहा कि बाबा आपका जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाइए, इंशाल्लाह आप मुझे साबरीन में पाएंगे। तो जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल निकले और निकलने के बाद घर से निकल के मीना तक आए, दोनों को मालूम था कि कहाँ जा रहे हैं। देखिए एक होता है कुर्बानी
1: जी,
0: कुर्बानी धोखे से नहीं होती है, कुर्बानी जानबूझ के होती है, जो धोखे से होती है वो हलाकत होती है, जो जानबूझ के होती है वो शहादत और कुर्बानी होती है
1: जी।
0: जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल मकाम मीना पर आए, आके अपने बेटे को निकाला, जनाब इब्राहिम ने आग पर पट्टी बांधी, बेटे के गले पर छुरी रखी और छुरी को चला दिया। अब ये दो मोहब्बतें थी, एक अल्लाह की मोहब्बत, एक बेटे की मोहब्बत, एक ईश्वर की मोहब्बत, एक अपनी औलाद की मोहब्बत, दो मोहब्बतें तुल रही थी। जनाब इब्राहिम ने बेटे के गले पर छुरी चला के ये बता दिया कि मुझे अपना बेटा प्यारा नहीं है बल्कि अल्लाह प्यारा है
1: जी।
0: तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया और वो छुरी जन्नत से एक दुम्बा आया और दुम्बे के गले पर चल गई। अब जो जनाब इब्राहिम ने आंख खोली तो उन्होंने पट्टी हटाई तो देखा कि बेटा सामने जिंदा खड़ा है और दुम्बा जमा किया पड़ा हुआ है
1: जी।
0: तो वो गले लग जाता है, आम बाप होता है, मगर ये रोने लगे और इन्होंने अल्लाह की सरकार में हाथ बुलंद किए, कहा महबूद मुझसे क्या गलती हो गई, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। कहा इब्राहिम हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल किया और इसे दिबे अजीम में बदल दिया। ये जो आज कुर्बानी मनाई जा रही है ईद उल अजहा बकरीद, ये उसी जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल की याद में कुर्बानी मनाई जा रही है। कुर्बानी का मतलब ये है कि गले पर खाली छुरी चला के जानवर का खून देख के और बिरयानी या कौरमा पका के खा लेने का मकसद नहीं है, बल्कि तुम जो गला काटो तो तुम अहंकार गुरूर तकब्बुर इन सब को कुर्बान करो और तुम इंसानियत की और समाज की अपने परिवार की मदद करते रहो
1: जी।
0: यही कुर्बानी का मकसद है, यही ईद उल अजहा का मकसद है।
1: जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई मौलाना साहब की। वाकई में ये एक त्यौहार ऐसा है कि आत्मसमर्पण का त्यौहार है, सम्मान का त्यौहार है और दूसरों के सम्मान का त्यौहार है। वाकई में ये जो त्यौहार है बहुत कुछ हमें सिखाता है कि किस तरह से त्याग किया जाता है, किस तरह से समर्पण किया जाता है। और आज इस मौके पर हमारे प्रदेशवासी भी आपको सुन रहे हैं, पूरा लखनऊ सुन रहा है, पूरा लखनऊ के बाहर भी जितने हमारे लिसनर्स हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो आज इस मुकद्दस मौके पर क्या उनसे आप कहना चाहेंगे?
0: मैं आज इस मुकद्दस मौके पर, इस ईद उल अजहा के मौके पर यह पैगाम देना चाहता हूँ
1: जी
0: कि हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े बल्कि लड़ाई लड़े गरीबी बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ। जितना जितना आप गरीबी बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे उतना उतना आपका समाज, आपका देश, आपका परिवार तरक्की करेगा। थैंक यू
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस दिन की आप सभी को और आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: तो दोस्तों हमारे साथ थे जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास जी, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ से, जिन्होंने बताया कि भाई आज का दिन क्या अहमियत रखता है, क्या कहानी थी इसके पीछे। तो इन्हीं ढेर सारी मुबारकबाद के साथ आप सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, तो एक प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर, फिर मिलते हैं और ढेर सारी बातों के साथ।

0: दू कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर,
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बताइए कि आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला है, आज त्योहार आराम से सब मना पाएंगे या नहीं?
1: जी बिल्कुल, मौसम काफी सुहाना हो गया है, थोड़ा सा हवाओं का रुख बदला हुआ है, थोड़ा पूर्वी हवाओं का आगमन हो गया है, जिससे कि आज से थोड़ा तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो इतनी गर्मी थी उसमें कमी आएगी आज से, क्योंकि पूर्वा हवाएं पूरी तरीके से एकदम तेज चल रही है, काफी अच्छा। और आने वाले अगले 3 दिन, कल परसों नरसों, बारिश का झोंका आता रहेगा बीच में, क्योंकि ग्रुप के मतलब बीच में एक आध तो इस पर बारिश का आएगा, तो कुल मिलाकर जो इतने दिनों से जो गर्मी का जो सितम था उससे अभी हमको आने वाले अगले 3-4 दिन थोड़ा राहत मिलने की
0: बहुत बहुत बड़ी सर राहत भरी खबर आपने बता दी। वाकई में इससे बहुत सारे दिलों को सुकून मिला होगा इस बात को सुनकर। और आगे आने वाले समय में जैसा आपने बताया कि बारिश हो सकती है, बौछारें भी पड़ेंगी, मौसम सुहावना हो जाएगा, तो सर 2-3 दिन तो ऐसा रहने वाला, उसके बाद सर क्या फिर से मौसम वैसे ही होगा?
1: फिर से धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा तो, लेकिन अभी फिलहाल तो फिलहाल 4-5 दिन थोड़ा सा राहत रहेगा। और दूसरी बात यह है कि बीच में जैसे कि इंटेंस सिस्टम भी आएगा और जैसे कि जो ठंडा स्ट्रम एक्टिविटी होगा उसमें तेज हवाओं चलने का काफी संभावना है, तो लोगों से यही अपील है कि बचाव रखें, जैसे कि कहीं कच्चे मकान या कोई पेड़ के नीचे इस तरीके से अगर शरण ना ले तो बेहतर है आप कंक्रीट मकान या जितने भी जो सेफेस्ट जगह है वहां पर करें, क्योंकि बीच में आज रात या कल परसों में एक स्पेल थोड़ा तेज हवाओं का आएगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
1: ओके, धन्यवाद।
0: तो दोस्तों दानिश सर तो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने मौसम की बिल्कुल ताज़ा तरीन जो जानकारी है, जो स्थिति है वो हम तक पहुंचाई, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बकरीद का त्यौहार है आप बहुत अच्छे से मना सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो आज से लेकर 3 दिन तक हैं मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है, हवाएं भी चलेंगी, बारिश का भी माहौल बनेगा, तो कुल मिलाकर मौसम बहुत अच्छा होगा, इसलिए पूरी तरह से एंजॉय कीजिए आज के इस दिन को।
2: बिल्कुल। और 9:36 हो चुका है, रतन प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, रतन और आकांक्षा हैं आपके साथ।

0: 9:33 और वक्त है कि आपको बता दिया जाए कि आज का मौसम का हाल कैसा है। तो इसके लिए आइए चलते हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानी जी से करते हैं बात।
1: वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
2: गुड मॉर्निंग।
1: और सर, सबसे पहले आपको बकरीद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया, और हमारे सभी श्रोताओं को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सर,

0: भाई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: हाँ दोस्तों, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और आकांक्षा की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से।
1: जी हाँ, इसी के साथ एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है तो उसकी भी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं।
0: तो इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए अगर, और दोस्तों अपने जन्मदिन पर अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं तो एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, आपका दिन पूरी तरह से बन जाएगा और एक यादगार बर्थडे बन जाएगा आपका। कैसे? आप कोशिश कीजिए कि किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाएं। कोई भी कारण हो सकता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन करके देखिए। अगर आप ले आते हैं तो वाकई में आपका ये दिन यादगार बन जाएगा, पूरे साल आपको याद
1: आएगा। और मुझे लगता है कि अगर भाई जिस तरह से आज का टाइम है रतन देखते हुए कि गर्मी और टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि पहले तो ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी, पहले तो ऐसा मौसम नहीं बदलता था, तो आप एक और कोशिश कर सकते हैं, हर साल अपने बर्थडे वाले दिन एक प्लांट लगाइए, उसकी पूरे साल आप देख रेख करिए, उसके बाद देखिए ना आपके नाम पे कितने प्लांट्स हो जाएंगे। कहीं भी कोशिश करिए।
0: जी हाँ दोस्तों,
1: एक छोटा सा पौधा
0: आने वाले समय में वो प्लांट आपके पोते पर पोते, वाह वाह वाह क्या बात है, उनको छाया देगा।
1: तो बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट है,
0: अच्छी बात है। और आपके जो आगे के रिलेटिव्स होंगे वो सभी आपको जरूर याद करेंगे, और करके देखिए। वाकई में दोस्तों ये सब चीजें अगर होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है।
1: और ऐसा ही कुछ जब हम अपने इतिहास में कुछ ऐसे नाम पढ़ते हैं जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं, जिनकी बदौलत आज भारत में, इतने सुनहरे भारत में हम जी रहे हैं जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं, तो उनको भी याद करना बनता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज 28 मई का दिन है और आज हम आपको बताने ये भी वाले हैं कि आज आप किस महान व्यक्तित्व के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं जिस कारण से आपका दिन और भी ज्यादा खास और खूबसूरत बनने वाला है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में आज ही के दिन विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता, विचारक और हिंदुत्व के प्रणेता थे वीर सावरकर। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहकर पुकारा और अभिनव भारत जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की।
1: अंडमान की सेलुलर जेल में क्रूर यातनाएं सहने वाले सावरकर ने हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू जैसी प्रभावशाली कृतियां लिखी। 26 फरवरी 1967 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके राष्ट्रवादी विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हम सब में जीवित हैं।
0: तो दोस्तों आज इस महान व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं, उनके इस योगदान को नमन करते हैं, और आज आप इस व्यक्तित्व के साथ, इस महान व्यक्तित्व के साथ

0: अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और उन्हीं को समर्पित एक प्यारा सा गीत, और जब वीर सावरकर की बात हो तो देशभक्ति की बात ना हो,
0: बिल्कुल
1: ऐसा हो नहीं सकता।

0: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
7: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
8: इतिहास के पन्नों में आज का दिन

0: 9:50 रतन और आकांक्षा है आपके साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग।
1: 9:51 का समय हो चुका है, साथ में 5:06 हो रहे हैं। और दोस्तों इतिहास की अगर बात की जाए तो हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है, इम्पोर्टेंट होता है और इतिहास उसको और भी ज्यादा खास बना देता है।
0: जी हाँ,
1: उन्हीं इतिहास की कुछ बातों को हम अब आप तक पहुँचाने वाले हैं। बात करते हैं 1937 में आज ही के दिन जर्मन ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन की स्थापना की गई थी।
0: 1952 आज ही के दिन ग्रीस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था।
1: और बात करते हैं 1999 की लियोनार्डो दा विंची की द लास्ट सपर इटली में प्रदर्शित की गई।
0: इसी के साथ 2008 में नेपाल में राजशाही की प्राचीन परंपरा समाप्त हुई थी।
1: तो ये इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा आज के दिन को खास बनाती है हमने आप तक पहुँचाई। एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
0: गीत से पहले हम चाहते हैं कि एक तुरंत मेरे आंखों के सामने एक मेल ऐसे ब्लिंक किया तो मुझे लगा कि क्यों ना ये जो लाइन बनती जा रही इसको भी खत्म किया जाए और मेल्स को शामिल किया जाए।
1: तो मेल्स ले लेते हैं क्योंकि मेल्स बहुत सारी आ गई हैं और उनको शामिल करना भी जरूरी है। और आकांक्षा के सामने जैसे कि एक मेल अभी फ्लैश हुआ है तो क्या कह रही हैं ये?
0: जी हाँ, राम कमल यादव जी हमें बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं और कह रहे हैं कि मैं अभी ये नया नया हूँ और अभी नया नया ही मेल करना सीख रहे हैं ये।
1: अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रतिदिन आप हमें मेल कीजिए, आप मेल करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज विश्वकर्मा जी की मेल, दोनों आरजेस को शुभ प्रभात, सुबह से आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम ताराशिव से इन्होंने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: इसी के साथ हमारे पास मनोज विश्वकर्मा जी, आप जैसे कि बताया कि उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ करी है। जावेद अख्तर का भी हमारे पास मेल आ गया है, गुड मॉर्निंग आपको भी ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं और कह रहे हैं कि बहुत ढेर सारी उन्होंने पकवान तैयार कर लिए हैं और उसका इंतजार हो रहा है।
1: जी दोस्तों, छविराम सिंह जी की भी मेल हम तक पहुंची है। मैं छविराम सिंह राजपूत जिला फरुखाबाद से यूपी से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ। जी रेनबो, मेरे दिल की धड़कन, हम अपनी वाइफ का पूरा साथ निभाते हैं, आलू छीलने में मदद कर देते हैं और पूरा साथ निभाते हैं, पानी भी भरवा देते हैं और अपनी पत्नी अम्मा के साथ पूरा पूरा साथ निभाते हैं। ऐसा इनका कहना है कि अपनी वाइफ का भी ये साथ पूरा निभाते हैं और अपनी माँ का भी ये साथ निभाते हैं, पूरी जिम्मेदारी ये समझते हैं अपनी, बिल्कुल ऐसा ही करते रहना चाहिए और हमेशा ऐसा करते रहिएगा आप। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर।
0: राम मोहन गुप्ता जी का हमारे पास मेल आया है, चिंता करती सबकी खुद की भी कभी सोचे ना, मातृशक्ति ऐसी कि करना चाहिए चिंता सदा, माँ बहन बेटी बहू लेकर स्वरूप दादी नानी का पल प्रति पग करती हैं निज कर्तव्य निर्वहन सदा, इनकी उनकी और सभी की खातिर जीती हैं वो, हम सबका दायित्व रखें ख्याल बहुत जरूरी, जो और बहुत कुछ करना कहाँ केवल इतना कर लें, समय समय पर जाने अनजाने

0: थोड़ी खुशियां भर दें। खाना पीना सजना संवरना और खुश रहना भी सबकी फिक्र करने वाली की रखे कोई फिक्र भी। मान सम्मान स्नेह सुरक्षा सुख इनकी भी जरूरत, होने पाए कहीं ना कोई चूक रखे ख्याल हर सूरत। बहुत ही प्यारी पंक्तियां लिख देते हैं और कुछ कहते ना कुछ मिनट्स में उन्होंने लिखी और हमें भेज दी।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जावेद अख्तर साहब की मेल भी हम तक पहुंची है और इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग रतन जी, आकांक्षा जी, प्यार भरे अंदाज में। बिल्कुल, आपके इस अंदाज को हम स्वीकार करते हैं। ईद उल अजहा की पूरे देशवासियों को बहुत मुबारकबाद। एफएम रेनबो से जो लगाव है उसमें खरा उतर रहा है। बिल्कुल, हम आपकी बातों में आपके लिए हमेशा खरे उतरने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों के लिए सभी पकवान इंतज़ार कर रहे हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, ये सब हमें सुन रहे हैं। और जावेद अख्तर जी, आपको भी ईद उल अजहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: इसी के साथ मुनेश कुमार राज जी का हमारे पास मेला है, लखीमपुर खीरी से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आज के दौर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार दुर्व्यवहार इन्हें कतई नहीं बर्दाश्त है, इवन किसी को नहीं बर्दाश्त है। महिलाओं का सम्मान और अधिकार हर जगह सबसे पहला होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा और उन पर हो रहे उत्पीड़न पर विशेष ध्यान दे रही है। और नारी कोई अबला नहीं, वो शक्ति का अवतार है। जिस घर में सम्मान मिले उसे वही सच्चा संसार है। थैंक यू सो मच मुनेश कुमार राजी
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तेज बहादुर यादव जी हमें मेल कर रहे हैं, आकांक्षा दी, रतन सर जी को मेरा प्यार भरा सुप्रभात, कैसे हैं आप दोनों? तो हम दोनों बहुत अच्छे हैं। हमारी आवाज से आपको नहीं पता चल रहा कि हम बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल,
1: सुबह से बेहतरीन प्रस्तुति हो रही है। पुष्पांजलि सदाबहार गीतों को सुनकर जो आपने आकांक्षा जी सुनवाए इन्हें बहुत पसंद आए। और अब सुप्रभात लखनऊ में भी मैं अभी से जुड़ा हूँ इसलिए आज का मुद्दा नहीं सुन पाया। कोई बात नहीं, आप दोनों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से ये के रहने वाले हैं और गुरुग्राम हरियाणा में ये इस वक्त हमें सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और 9:56 हो चुका है। आज के मुद्दे को समेटते हुए और नारी पर बात करने से पहले ये बताते हुए कि पुरुषों को भी ये चीज समझनी होगी क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ये उड़ान और भी तेजी से भरती रहे हमारी नारी समाज की जितनी भी हमारी साथ में सहेलियां हैं, ताकि वो आराम से आपके सहयोग से आगे बढ़ती रहे। इसी के साथ, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए इजाजत। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ से आगे का सफर
1: अगले घंटे कुछ आपके साथ मैं रहने वाला हूँ। और आज के इस दिन की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग लखनऊ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए भी आप का बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,503 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में से 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीड़ा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई की शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रदेश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, अमरोहा, शामली, उन्नाव और जौनपुर समेत विभिन्न जनपदों की ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली सहित मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के वीडियो साझा न करने की अपील की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: वही रूप की धूप, वही रंग।

0: वो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी,
4: चलते रहे इश्क भी बढ़ जाते
5: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
3: आपके अपने रेनबो की जबानी,
4: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
6: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
7: ये हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
3: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 10:05 का समय और अभी कुछ ही पलों में होने वाला है 10:06 का समय और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 FM रेनबो पर, जिस पर मैं रतन आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। और दोस्तों, जैसा कि आज का 28 मई का ये दिन है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये दिन, आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इस त्यौहार को बहुत प्यार से मनाइए और बहुत एंजॉय कीजिए, बस हम यही आपके लिए दुआ करते हैं। और दोस्तों, अगले एक घंटे आप बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुनेंगे, 90s के वो ट्रैक जिनको सुनकर वाकई में आपकी दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा थिरकने लगती थीं, धड़कने लगती थीं। और आज हम उन्हीं यादों के गलियारों में उसी म्यूज़िक के बीच हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि आज के ये सॉन्ग्स आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो बस हमारा साथ यूं ही इसी प्यार के साथ निभाते रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर आज आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन और प्रोग्राम का नाम है सुपरहिट सॉन्ग।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, जिस पर चल रहा है प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और आपको ये गीत, ये ट्रैक्स बहुत पसंद आ रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 10:54 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग प्रोग्राम को अब हम यहीं पर वाइंड अप करें और अगले प्रोग्राम में आपसे पुनः मुलाकात करें। तो न्यूज़ ब्रेक के बाद ठीक 11:02 पर आपसे होगी पुनः मुलाकात, आपके अपने प्यारे से शो संदेश, आपके गीत हमारे पर। तो बस आप हमारे साथ यूं ही इसी प्यार के साथ, इसी मोहब्बत के साथ, इसी इश्क के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। बस

नमस्कार, प्रातः के 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक वीर सावरकर को उनकी जयंती पर सादर नमन करते हुए लिखा कि वीरता और बौद्धिकता से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए वाली लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने यह कहा कि आयोग जिन प्रतिनिधित्व अधिनियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है। ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

करना है, हम दोनों को पता है, हम सबको पता है कि इस प्रोग्राम में हम सबको क्या करना है। बस आपको अपने संदेश हम तक पहुंचाने हैं और हमें आपके संदेशों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने हैं और आपसे ढेर सारी बातें भी करनी है फोन कॉल्स के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से। तो आप हमारी मेल आईडी तो जानते ही हैं। चलिए, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है या फिर जो अभी अभी नए नए हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ रहे हैं, हम उन सबको अपनी मेल आईडी जरूर एक बार बताएंगे। हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com। दोस्तों, इस प्यारी सी मेल आईडी के माध्यम से आप आज इस प्रोग्राम में जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे, इसमें जुड़ सकते हैं और अपने संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं। वो संदेश आपके हमारे हित में, हमारे देश के हित में, हमारे समाज के हित में और हमारे सभी लिसनर्स के हित में हो सकते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे संदेश आप हम तक पहुंचाते हैं और फोन कॉल्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे दो फोन कॉल्स इस वक्त आपके लिए हमने ऑन कर रखे हैं। पहला नंबर है 0522-2982377 और दूसरा नंबर है 0522-2238845। जी हाँ, इन दो मैजिकल नंबर्स के माध्यम से आप हमारे साथ यानी कि एफएम रेनबो के साथ जुड़ सकते हैं और आज अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं आपके अपने फेवरेट शो संदेश आपके गीत हमारे में। फिलहाल ये प्यारा सा पहला गीत आप सबके लिए, इसे एंजॉय कीजिए। हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 11:04 का समय, प्रोग्राम संदेश आपके, गीत हमारे में। मैं रतन आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और आपको पता है कि इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, हमें भी पता है हमें इस प्रोग्राम में क्या

जी हाँ दोस्तों, 11:09 का समय, प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो जी, लगता है कि जो हमसे जुड़े थे वो इस वक्त लाइन पर नहीं है। क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो दोस्तों, रिंकी और पिंकी जी जुड़ी थी हमारे साथ और कह रही थी कि जो पिछला प्रोग्राम उन्होंने सुना उसमें 1 घंटे जो गीत बने बजे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो हमसे किसी संदेश के साथ जुड़ना भी चाह रही थी, लेकिन फिलहाल उनकी कॉल कट चुकी है।

लेकिन हमारे पास मेल के माध्यम से बहुत सारे मेल्स भी आ चुके हैं और उन मेल्स को भी हम जरूर शामिल करेंगे। काजी अरशीफ फारूकी जी की मेल हम तक आई है। गुड मॉर्निंग सर, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, एक्सेलेंट सॉन्ग सिलेक्शन, ओके लड़कपन की याद दिला दिया आपने, क्या बात, चलिए आपको कुछ तो याद आया इन सॉन्ग्स को सुनकर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। रामराज साहब की मेल हमारे पास आई है और ये लिखते हैं, श्री गणेशाय नमो नमः, संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मिर्ज़ा, इमरान बेग, रिजवान भाई, आज बकरीद है, सभी लोग मिलजुल कर हंसी और खुशी से त्यौहार मनाएं, हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद और नमस्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और वाकई में आज इस त्यौहार को आप पूरी तरह से एंजॉय करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी सी बातें भी हम आप तक पहुँचाएँगे, बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी हमारे जो हमको प्राप्त होंगे मेल्स के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से, वो भी आप तक जरूर पहुंचेंगे। इंद्र कुमार यादव बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, दिन हो गए रात 112, हमेशा आपके साथ क्या मतलब समझे नहीं, दिन हो या रात 112 हमेशा आपके साथ चलिए ठीक है, आपका कहने का मतलब ये होगा कि दिन हो या रात 24 घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, बिल्कुल हम आपका साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और तेज बहादुर साहब लिखते हैं कि इन्हें पिछला प्रोग्राम बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच, और इन्होंने ये भी लिखा कि पुराने दिन आपने याद दिला दिए सर जी, और आज की पुष्पांजलि, आजकल आप पुष्पांजलि क्यों नहीं आ रहे, पुष्पांजलि में क्यों नहीं आ रहे, सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुन लेते हैं तो हमारा तो दिन ही बन जाता है, जल्दी आया करिए पुष्पांजलि में, बिल्कुल आपने कहा है तो ज़रूर आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए, अगली मुलाकात आपकी हमारी पुष्पांजलि में ही हो, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हरी गुरुग्राम हरियाणा से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद तेज बहादुर साहब, और लगातार आपकी मेल्स और आपकी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, फिलहाल ये प्यारा सा गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिए और आप अपने प्यारे से इस शो संदेश आपके गीत हमारे में जुड़े रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: ग्यारह बजकर 18 मिनट का समय, प्रोग्राम संदेश, आपके गीत, हमारे और हमारे अगले कॉलर कौन है? हेलो,
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
4: आपको ईद मुबारक हो, सभी सुनने वाले को भी ईद मुबारक हो।
3: आपको भी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं। पहले अपना नाम तो बताइए।
4: साहिबान सारी, मेहरगंज लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
3: जी साहिबान सारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो पर और प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे पर। तो पहले ये बताइए, आज बकरीद की आपने किस तरह से तैयारियां की और अभी क्या चल रहा है?
4: तैयारी हमने की, सेवई बनाई है, मटर बनाए हैं सर, दही फुल्की बनाई है सर, आइए आपको खिलाएं।
3: क्या बात है, मतलब इतनी सारी चीजें बना दी आपने, मेरे मुंह में पानी आ गया।
4: आइए सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। इधर हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं, आप तैयारी रखिए, हम पहुंचते हैं आपके यहाँ। जरूर पहुंचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार कीजिएगा, हम जरूर पहुंचेंगे। और ये बताइए, आज संदेश क्या देना चाहती हैं आज आप?
4: अरे सर, संदेश तो हम लाना भूल गए कि जो

0: झोले में सेवैया रख ली संदेश लाना ही भूल गए।
1: संदेश लाना भूल गई।
0: और जो संदेश लाए भी थे तो बस में छूट गया
1: जी।
0: सेवैया और मटर सब कुछ झोले में रख लिया और संदेश रखना भूल गए।
1: चलिए कोई बात नहीं, संदेश आप आज नहीं ला पाई हैं। आज
0: संदेश
1: चलिए लाइए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या संदेश आज देना चाहती हैं बताइए प्लीज।
0: संदेश हम ये देना चाहते हैं कि सब लोग त्योहार जो है सब लोग मिलकर जो है मनाए, सेलिब्रेट करें, सेवई जो सब खाएं और मटर भी खाएं, कम खाएं क्योंकि जो है गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और जो सेवैया खा भी रहे हैं तो शाम को खाइए।
1: अच्छा
0: बहुत हो चुकी है।
1: चलिए बहुत बढ़िया। जी जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और आपका ये संदेश भी हमारे सारे लिसनर्स तक पहुंच चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल कर।
0: नाम भी लेना चाहते हैं
1: जी, बताइए किन का नाम लेना चाह रही हैं। जलील दी
0: भाई है, मोहम्मद तेज भाई है, शकील अहमद भाई है, बाबू अंसारी भाई है, तालिब अंसारी भाई है, जावेद दत्ता भाई है, सत्यम कुमार भाई है, समाता विनती है, गुलाब सिद्दीकी महक अंसारी है, साजिया अंसारी है, पिंकी पिंकी है, निशा अंसारी है।
1: जितने नाम आपने ले लिए सब के सब आज आपके घर पहुंचने वाले हैं
0: जी सर, हम सबको
1: ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों साहिबा अंसारी ने बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं और ये भी उन्होंने संदेश दिया है कि आप जो भी चीज़ खाइए बहुत आराम से खाइए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज़्यादा अगर ओवर अगर आप ईटिंग कर लेंगे तो फिर वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है, आपकी हेल्थ के लिए नुकसान कर सकता है, इसलिए जो भी खाइए बहुत लिमिटेड खाइए और जितना आप पचा सकें, जितना डाइजेस्ट कर सके उतना ही खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहिबा अंसारी जी का। और दोस्तों लगातार हमारे पास मेल्स भी पहुंच रही हैं और इन मेल्स को शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे भी ज़रूर और आपसे बातें भी ज़रूर करेंगे। वकील अहमद साहब की मेल हमारे पास आई है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें आपके संदेश बहुत अच्छे लगते हैं। संदेश यह है कि घर सबके घर जाएंगे और आएंगे, घर पर कोई आए जितनी इच्छा उतना उसको ही खिलाएं, ज़्यादा जिद ना करें। ईद उल अज़हा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वकील अहमद मंसूरी, कटका हतूरी, ज़िला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजी अंसारी और बहुत सारे नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। थैंक यू सो मच वकील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफ्सा सिद्दीकी जी का मेल हम तक पहुंचा है और इन्होंने हमें सुबह भी मेल किया था। हेलो गुड मॉर्निंग रतन भाई, गुलफ्सा सिद्दीकी, मौलवी खेड़ा, चंदा भेजा, बहदर संडीला, ओके पूरा एड्रेस आज इन्होंने मेंशन कर दिया है। संडीला हरदोई से ये हमें मेल कर रही हैं। पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मेरा संदेश ये है कि जो लोग अपने घर की महिलाओं को ईदी नहीं देते वो लोग प्लीज़ ऐसा ना किया करें, क्योंकि ईदी देने से आपकी कमाई में बरकत होती है, तो अपनी अम्मी को, अपनी बहन को और अपनी वाइफ को ज़रूर ईदी दें, समझ गए ना आप लोग। और इन्होंने इस बात में अपने आप को भी शामिल कर लिया है, इन्होंने ये संदेश अपने पति देव को भी भेजा है और साथ में जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको भेजा है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं ईदी देना मत भूलें, इसलिए ईदी देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अशोक कुमार साहब की भी मेल हम तक पहुँची है, रायपुर उदारा मिठौली लखीमपुर खीरी से हमें ये मेल कर रहे हैं। ईद उल अज़हा बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सुपरहिट सॉन्ग्स प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आया और ये संदेश में कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में सुरक्षित और सेहतमंद रहने के लिए पर्याप्त पानी पिए व ढीले और हल्के सूती वस्त्र पहने, धूप में निकलने से पहले छाता टोपी का इस्तेमाल अवश्य करें। तो ये एक बहुत ही अगर कहें तो कॉमन सा संदेश है, लेकिन हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और हम सब हैं, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर गर्मी में हम जल्दबाजी में बाहर निकल जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम नहीं भूलते। और अभी देखिए थोड़ी देर पहले जब समाचार आप तक पहुँचे उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हम सब से अपील की है कि अगर आप बाहर निकलें तो पानी की बॉटल ज़रूर साथ में लेकर निकलें और अपने घर में, दफ्तर में, अपने घर की छतों पर, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ छतों पर पक्षियों के लिए पानी और दाने का इंतज़ाम ज़रूर करें। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका विशेष ध्यान रखना भी ज़रूरी है हम सब के लिए। फिलहाल अगला ट्रैक आप सब के लिए बिल्कुल तैयार है, आपके अपने प्यारे से शो संदेश, आपके गीत हमारे पर, आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए और हमें कॉल करते रहिए।

0: एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर,
6: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: बजकर 31 मिनट का समय, प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे, और मैं हूं आपके साथ आपका प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, आप भी अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी मेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com के माध्यम से। जो भी संदेश आपके हैं वो आप हम तक पहुंचाइए, हम उन संदेश को अपने लिसनर्स तक ज़रूर ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आप फ़ोन नंबर्स के माध्यम से यानी कि फ़ोन कॉल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक बार पुनः लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इन नंबर्स को मिलाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 0522-298-2377 ये पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है 0522-223-8845। इस नंबर के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों नंबर आपके लिए इस वक्त ओपन है, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
8: सभी सुनने वालों को ब्रह्म पोस्ट प्रसन्न कैसरगंज बहरा से मैं सप्तम कुमार ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
7: जी आपको, जी आपको भी सबकी तरफ से, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी सबकी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्यम जी क्या करते हैं आप ये बताइए।
8: सर मैं ब्लाइंड हूँ, बस रेडियो सुना करता हूँ लेते लेते पूरा दिन।
7: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए आज क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं आप।
8: सर पहले तो कहना चाहूंगा जिन जिन दोस्तों ने ईद पर हमें इनवाइट किया था हम उनके घर पहुंच चुके हैं।
7: क्या बात,
8: वो देखे, मैं जरूर दिखाई दूंगा उन्हें। दिखाई नहीं दूंगा लेकिन सुनाई जरूर दूंगा
7: जी,
8: अगर उन लोगों ने अपना वीडियो ऑन किया होगा तो।
7: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप पहुंच गए हैं। और क्या संदेश है आपका?
8: मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र भी सुबह खा ले हो।
7: जी
8: सर, मेरा संदेश ये रहेगा कि जो लोग ईद मनाने के लिए बाहर जाते हैं, तो जो लोग पैदल जा रहे हैं उनके लिए ये कि वो साइड चले रोड के किनारे किनारे, और जो लोग गाड़ी से जा रहे हैं तो कृपया करके वो नियंत्रण में गाड़ी तेज ना चलाएं।
7: बिल्कुल, आपने ये कहा है कि जो भी लोग रोड पर पैदल चल रहे हैं वो साइड में चलें, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और जो लोग बाइक पे, जी
8: दो नाम लेने,
7: हाँ हाँ बिल्कुल बताइए।
8: हमारी बहन समा पर दिन अंसारी है सीतापुर से, और लक्ष्मणपुर से है सिस्टर साहिबा अंसारी, और बबलू यादव भाई हूँ।
7: जी बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा और हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सत्यम हमारे साथ जुड़े बहराइच से, और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आराम से साइड में चलें, और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं टू व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हैं वो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाएं, वो भी आराम से चलाएं, क्योंकि रोड पे और भी लोग चलते हैं, इसलिए सिर्फ रोड आपकी नहीं है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल्स का पूरी तरह से पालन करते रहिए। थैंक यू सो मच सत्यम कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी बात आपने हम तक पहुंचाई। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी साहब के नाम से ये मेल हम तक पहुंचाई है पिंकू सोनी ने, टिकैत नगर से हूँ सर जी। ओके, सब लोग अपने आप को भीषण गर्मी से और अपने बुजुर्गों को बच्चों को उनका ख्याल रखें, यही कहना है सभी सुनने वालों को। ओके, इनका कहना है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए अपना और अपने घर के समस्त सदस्यों का पूरी तरह से ध्यान रखें।

0: महेंद्र दीपन जी का भी संदेश, लेकिन संदेश तो नहीं आया, इन्होंने बस शुभ प्रभात भेजा है और नमस्कार भेजा है, तो आपको भी नमस्कार। मुनेश कुमार राज जी की भी मेल हम तक पहुंची है, विलेज भानपुर हरौवा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से कह रहे हैं कि प्रोग्राम राम राम टू आरजे एंड एंटायर एफएम टीम। ओके थैंक यू सो मच, द प्रोग्राम प्रेजेंटेशन इज फैंटास्टिक एवरी आर, आई लिसन लाइव एवरी आर एवरी डे। ओके माय मैसेज फॉर टुडे इज व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द फील्ड और फ्रॉम आउटसाइड डू नॉट टेक अ बाथ इमीडिएटली। ओके ऑल्सो डू नॉट रिमूव योर क्लोथ्स राइट अवे, लेट योर बॉडी कूल डाउन फर्स्ट। ओके बहुत अच्छी बात आपने कही है, और वाकई में अक्सर ऐसा होता है कि हम आते हैं गर्मी से या बाहर से, तो हम अचानक हमें गर्मी बहुत लगती है और बस ये सूझता है कि हाँ भैया चलो जल्दी से नहा लेते हैं, तो हमें थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, थोड़ी सी ठंडक पड़ जाएगी हमको, लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है और हमारी तबीयत बिगड़ जाती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आके तुरंत हमारे बॉडी पे स्वेट होता है, हम तुरंत अपने कपड़े भी रिमूव करते हैं और उससे भी कभी कभी हमें परेशानी हो सकती है। तो लगातार ये जो बातें हैं हम तक पहुंच रही हैं और ये संदेश यही दे रही हैं कि हमें इस भीषण गर्मी में बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि हम स्वस्थ रहें और तभी तो हम इन त्योहारों का और इस गर्मी वाले मौसम का इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, इनका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हर मौसम की अपनी एक अलग कहें तो उसका एक अपना अलग नज़रिया होता है, उसका एक अपना अच्छा सा फील करने का तरीका होता है। गर्मी का मौसम है तो उसमें भी हमें आम खाने को मिलते हैं, है ना, और सर्दियों के मौसम में अपनी चाय का अलग आनंद है, बरसात के मौसम में चाय के साथ पकौड़ों का अपना अलग आनंद है, और जब बसंत की बात आती है तो चारों तरफ हरियाली देखने का एक अलग आनंद है। तो हर त्यौहार का अपना एक अलग अलग आनंद है, इस आनंद को महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं, उनको हम ऑनर करते हैं। हेलो हेलो
1: सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
1: जी मैं यास्मीन बानो बात कर रही हूँ, विश्वास सीतापुर से।
0: यास्मीन बानो
1: जी सर।
0: यास्मीन आपको बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सर, आपको और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को ईद अज़हा की मेरी तरफ से दिल मुबारक।
0: तो ये बताइए आप आज किस तरह से मना रही हैं बकरीद?
1: मैं बकरीद तो बहुत अच्छे से मना रही, मेरा कुर्बानी भी हो गई है और सब पकवान बने हैं।
0: अच्छा क्या बनाया आज आपने?
1: मैंने बनाए सिवाइयाँ और वो किमामी वाली सिवाइयाँ बनाई हैं, बड़े बनाए हैं, मटर बनाए हैं।
0: क्या बात, बहुत ज्यादा।
1: हाँ और शाम में जो और तैयारी होगी, बिरयानी वगैरह बनेगी।
0: तो कहीं जा नहीं रही घूमने आप किसी फ्रेंड के यहाँ?
1: मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सब लोग मेरे वहाँ अभी आ रहे हैं।
0: अच्छा
1: क्योंकि हाँ जाते जाते वो धूप हो जाएगी, इससे हम कहीं नहीं जाएंगे।
0: तो आपका जाने का प्लान कब है, कल या इवनिंग में?
1: आज नहीं कल परसों, दो तीन दिन में जाने का प्लान है।
0: बिल्कुल जरूर जाइए अपने त्योहार को बिल्कुल पूरी तरह से।
1: मैंने इसलिए बहुत पाई है।
0: क्या बात, तो हमारा हिस्सा है उसमें कि नहीं
1: जी?
0: हमारा हिस्सा है आपकी ईदी में या नहीं
1: जी? आप तो हमसे बड़े, आप हमें खुद दो।
0: मतलब जब ले जब ऐसी बात हो गई तो हमको बड़ा बना दिया आपने।
1: नहीं सर हम तो अभी बच्चे हैं, आप कहाँ के बड़ों का मतलब।
0: अच्छा है, अच्छा आपको कहाँ से, आपको कहाँ से दिख रहा है कि हम बच्चे नहीं है? अरे अभी तो हम 16 भी हमने पूरी नहीं की भाई, अभी बताइए।
1: हम तो आपके बच्चे हुए ना।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत बहुत अच्छी बात। और ये बताइए आज संदेश क्या देना चाहती हैं आप?
1: संदेश में ये देना चाहते हैं कि आज मतलब बकरीद का त्यौहार है, अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं और खास कर गरीबों का ख्याल रखें।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात,
1: हमारी वजह से गरीबों को खुशी मिल रही तो हम उनको खुशी जरूर दें।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई और वाकई में।
1: और ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि बदला ना करें कि उनके वहाँ से मतलब ये हुआ तो हम उन्हीं को दें, उनको उनके वहां से नहीं आए तो उनको हम ना दें।
0: जी जी जी जी बिल्कुल हम आपकी बात को समझ चुके हैं और वाकई में आपका संदेश बहुत अच्छा है। आप अपने त्योहार को इसी तरह सेलिब्रेट करती रहिए। आपने कॉल किया इसके लिए।

0: जी
1: आप पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया था,
0: थैंक यू।
1: और ये भी मतलब जो चल रहा है ये भी कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, अक्सर आइए मेरे घर ईद पे।
0: बिल्कुल हम जरूर आएंगे, मगर बचा के रखिएगा ठीक है कुछ।
1: जी सर, सब बचा के रखेंगे, आप आओगे सर मैं ताजा ताजा बना के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ हमारे लिसनर जुड़े और उन्होंने बहुत अच्छी बात हम तक पहुंचाई और आपने उनका संदेश भी सुना कि अगर त्योहार है सेलिब्रेट आप कर रहे हैं तो गरीबों का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपकी

साथ हमारे लिसनर जुड़े और उन्होंने बहुत अच्छी बात हम तक पहुंचाई और आपने उनका संदेश भी सुना कि अगर त्योहार है, सेलिब्रेट आप कर रहे हैं तो गरीबों का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके कारण किसी गरीब को खुशी मिलती है, उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, तो जरूर लाने की कोशिश कीजिए। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, सुनते रहिए संदेश आपके गीत हमारे। ये चल रहा है प्रोग्राम आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 एफएम रेनबो पर और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। घर

0: कुछ के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दो।
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 11:46 का समय है और प्रोग्राम आपका अपना बहुत प्यारा सा संदेश आपके गीत हमारे, देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: श्रवण कुमार परिहार, ग्राम हसनापुर को लतीपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से सर।
0: श्रवण कुमार,
1: हाँ सर
0: जी, आपका स्वागत है FM रेनबो पर। ये बताइए आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं श्रवण जी?
1: सर यह है कि पुत्र की शुभकामनाएं देना चाहते हैं सर।
0: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं सब तक पहुंच गई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: सभी लोग मनाते समय अच्छे से चले, रोड का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का।
0: जी
1: सर यही संदेश है हमारा।
0: जी जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, और वाकई में आपका ये संदेश हम तक पहुंच गया कि रोड पर जब आप चलें तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलें, तेज ड्राइव ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना संदेश हम तक पहुंचाया। देखते हैं हमारे अगले मेल पर हमारे जो लिसनर हैं उन्होंने क्या संदेश हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। अनुराग गुप्ता साहब की मेल हम तक पहुंची है। हेलो रतन सर, फ्रॉम अनुराग गुप्ता एडवांस गुड आफ्टरनून। ओके, थैंक यू सो मच। आपको भी, मेरे साथ प्रमोद कुमार गुप्ता भी हैं, यानी कि इनके फादर भी हैं इस वक्त, इन्हें सुन हमारे इनके साथ जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। मैं मुंदेरी मानपुर बिस्वान सीतापुर से, ओके सीतापुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। संदेश ये है कि ईद उल अजहा पर नफ़रतों को मिटाएं, इन खूबसूरत दुआओं के साथ खुशियां बांटें, आपको और आपके पूरे परिवार को ईद मुबारक। तो बिल्कुल कि अपने इस त्यौहार को पूरी तरह से खुशियों के साथ आप मनाइए, नफ़रतों को मिटाइए, क्योंकि हर त्यौहार हमें यही संदेश देता है कि हमें खुशियां बांटनी चाहिए, खुशियों को समेटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मेल के लिए अनुराग जी। और रामकुमार मौर्य जी का भी संदेश हम तक पहुंचा है। प्रिय महोदय, आपको प्यार भरा नमस्कार। महोदय आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच कि आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है और हमें आपकी मेल्स भी बहुत प्यारी लगती हैं। आपके जो संदेश हम तक पहुंचते हैं वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। संदेश आप ये देना चाहते हैं, अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुँचने के लिए दुपहिया वाहन पर हेलमेट और चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें। हमेशा याद रखें कि आप घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, वाहन को ज्यादा तेज ना चलाएं। बास कुशला IMT मानेसर गुरुग्राम हरियाणा से ये मेल हम तक पहुंची है। रामकुमार मौर्य, राम स्वरूप मौर्य, अंकित कुमार मौर्य, रवि कुमार मौर्य, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि हमें दोपहिया वाहन अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, चार पहिया वाहन अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर आपका ये संदेश लोग मानेंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगला गाना भी बिल्कुल तैयार है आपके लिए। 11:49 का समय है और अभी भी लगभग 10 मिनट का समय आपके पास ज़रूर है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हमें आपका इंतज़ार है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 11:53 का समय और अब समय भी इशारा ये करने लगा है कि संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम को हम वाइंड अप करें और जाते जाते हमारे पास एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला लखीमपुर खीरी ग्राम महमदपुर मेवा से बंटी वर्मा बात कर रहा हूँ।
0: बंटी वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो पर और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे पर। आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप बताइए।
1: मैं संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और आप रील डाल देते हैं कि हेलो गाइस, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, आज बर्थडे है, मैं पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, आप रील बनाकर डाल देते हैं कि वो आप लोगों को फॉलो कर लेते हैं जो फ्रॉड वाले होते हैं और लोग चले गए
0: आपको फॉलो करने वाले लोगों में बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि आपकी इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हैं, है ना, और आपके घर में लूट, बिल्कुल लूटपाट हो सकती है। तो बहुत अच्छा ये संदेश और बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच जी।
1: थैंक यू सो मच सर। एक बात और बताएं?
0: बिल्कुल बताइए।
1: वो याद है जब आपने हर दिल जो प्यार करेगा आप मूवी संडे फिल्मों में सुनाई थी कभी? हमको याद है आपकी आवाज, आपकी मूवी
0: अच्छा लगी थी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा बंटी जी। तो दोस्तों 11:55 का समय हो चुका है और मोनू सेठ साहब की भी मेल हम तक पहुंची है। संस्कृत में इनका जो आजकल लिखने का एक चलन मोनू जी

बना लिया है वो अच्छा भी लगता है कभी कभी, कभी कभी इतने कठिन श्लोक ये भेज देते हैं कि उसको पढ़ने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन आज जो उन्होंने भेजा है उसको हम पढ़ ही देते हैं कि स्त्रीं तु रोचमानायाम सर्व तद्रोचते कुलम तस्याम तरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, अर्थात स्त्री यानी गृह लक्ष्मी के प्रसन्न रहने पर पूरा कुल प्रसन्न रहता है और उनके अप्रसन्न रहने पर घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो माँ हो बहन हो या पत्नी हो, अप्रसन्न ना रखें घर की जिम्मेदारियां उठाना आसान नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात और बहुत अच्छा ये संदेश, और इसी संदेश के साथ अब आज के संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम से अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। अगले कुछ घंटे आपके साथ रहने वाली है चंद्रकला, तो बस इसी प्यार इसी मोहब्बत के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।

सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रदेश में प्रस्तावित 3 लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को अब रफ्तार मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की 4th बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए 1 महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ पूर्वांचल, जेवर और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण जून अंत तक पूरा करें। सीएम ने प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतरीन कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगी। बैठक के दौरान बताया गया कि फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 55% भूमि मिल चुकी है। वहीं मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे का एयरलाइनमेंट मंजूर हो चुका है। इस दौरान सीएम ने नोएडा, ग्रेनो और ईडा क्षेत्र में 500 ई-बसों के संचालन की प्रगति की भी समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है। ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईद उल अजहा का पर्व समाज में भाईचारा और प्रसन्नता की भावना को प्रगाढ़ करेगा। इस मौके पर उन्होंने सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना भी की। इसके साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:05 आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई है। नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून, और आज के त्योहार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साथ में। और आपका अपना प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। शत्रुपा का आज सेगमेंट है कौन सा? इंटीरियर डिजाइनिंग है, बागवानी है, लेकिन इसी सेगमेंट के साथ एक खूबसूरत सा, इस चंक के साथ एक खूबसूरत सा आज हम मुद्दा टॉपिक लेकर के आए हैं। और उस टॉपिक को तो जानना है, उसके बारे में बात करनी है। बहुत खास दिन है आज आपसे, हमसे, यानी कि हम महिलाओं से जुड़ा हुआ, उसके बारे में बात करनी है। बस उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक खूबसूरत सा गाना सुनना पड़ेगा पहले। और वो खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर बस आ रहा है, आप इसे सुनिए, एंजॉय करिए। तुरंत वापस आते हैं हम लेकर वो खास दिन और खास बात।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और ये जो बात है हम आपसे करने वाले हैं, जिस बात के बारे में आपसे कुछ खास बात बताने वाले हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप अपना प्रोग्राम शत्रुपा का सेगमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग और बागवानी आज सुन रहे हैं। आज होता है थर्सडे है आज, लेकिन एक खास दिन है, इसलिए हम बागवानी और इंटीरियर के साथ उस खास दिन को मनाते हुए, उसको याद करते हुए, उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे और जिंदगी को बेहतर, खूबसूरत, सुकून भरा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा देखिए ना, महीना भी कौन सा चल रहा है, मई, और ये जो जून का महीना है ना, ये सिर्फ गर्मी अपने साथ नहीं लेके आता है, यह मौसम हमारे शरीर, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे घर के माहौल, खास तौर पर जो हमारे घर की महिलाएं हैं उनकी हेल्थ पर बहुत बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए आज का जो हमारा खास सेगमेंट डेडिकेटेड है एक खास दिन को। आज कौन सा दिन है आपको बताएं, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है आज। तो इस डे को लेते हुए हम आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं की सेहत, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गर्मियों के समय में खुद को हेल्दी रखना, फ्रेश एनर्जेटिक रखना, और साथ ही हमारे घर का जो एनवायरमेंट है, इंटीरियर है, रंग है, खुलापन है, हरियाली है, ये सब हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है। और साथ ही एक खास बात और भी जानेंगे हम कि ये जो मौसम है और ये जो सेगमेंट है, ये आपस में जुड़ा हुआ क्यों है, आज ही का दिन खास क्यों है। आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो को, हम तुरंत आते हैं जल्दी से।

जी, और ऐसे ही गुनगुनाते बात करते करते हम पहुंच गए हैं, समय हो गया है 12:19, और प्रोग्राम शत्रुपा का ये जो सेगमेंट है, खूबसूरत सा चंक है बागवानी इंटीरियर, इसके साथ हम लेकर के चल रहे हैं. आज एक खास दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेंस हेल्थ, और साथ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए.

जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज का एक खूबसूरत सेगमेंट, ये जो सफ़र है हमारा आज का, ये हमारी आपकी यानी कि महिलाओं की सेहत को अपने ध्यान में रखते हुए अपने घर को खूबसूरत, कूल, काम, हेल्दी, पॉजिटिव बनाने

वाली बातें कर रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम ये भी बात करने वाले हैं, चाहे हरियाली हो चाहे इंटीरियर की बात हो, जो सुकून होता है ना वो कैसे मिलता है। हर वक्त हमें सुकून की ज़रूरत होती है और हर तरह की महिला को ज़रूरत होती है। और साथ ही बात करने वाले हैं कि किस तरह मेंस्ट्रुअल हेल्थ हमारे पर्यावरण और इन्वायरमेंट की स्वच्छता की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। पहले तो अगर हम ये बात करें कि महिलाओं की जो सेहत है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, गर्मी के मौसम से, मतलब गर्मी के मौसम में अगर इस बारे में बात करें तो क्या है। गर्मी के मौसम में शरीर में पसीना ज्यादा आता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए, इचिंग, रैशेज, बदबू, इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। और सैनिटरी पैड को हर 4-6 घंटे में बदला न जाए अगर, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बहुत ज्यादा जो खुशबू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, सेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इग्नोर करना जरूरी है इस समय। साफ पानी से वॉश करना, हार्श जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं, उनको इग्नोर करना, उनको डिनाई करना। गर्मी और नमी मिलकर के बैक्टीरियल ग्रोथ इन्फेक्शन को बढ़ाती है। सही हाइजीन महिलाओं को कई इन्फेक्शन से बचाती है। साथ में डिहाइड्रेशन है, वीकनेस है। गर्मियों में ऑलरेडी शरीर से पसीना इतना बुरा, इतना ज़्यादा निकल चुका होता है, किचन में काम करते सिर्फ 1 घंटे में ही शरीर के कई सारे मिनरल्स पसीने के जरिए जो है बह जाते हैं। और जो हम सोचते हैं कि खाना बनाना बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है भाई। कमजोरी, चक्कर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। थकान, चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी, शरीर में भारीपन, ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं उसको इग्नोर तो नहीं करना है। दिन भर पानी पीना है, 4 लीटर तो पीना ही है। और नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, सौंफ का पानी, ये सब पीना है। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक से बचना है। ये तो मैं आपको बाद में भी बता सकती हूँ ना, मेन मुद्दे की तरफ लौटना है हमें। मेन मुद्दे की तरफ लौटने के लिए मैं आपको बताऊँ क्या करना है। ये खूबसूरत सा गाना और सुनना है एक। ये ब्रेक नहीं लेते रहेंगे अगर हम बीच बीच में, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। नहीं, चलिए आप ये खूबसूरत सा गाना सुनिए और हम तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं उस मेन मुद्दे के बारे में कि क्या है वो बात आज की खास।

बिल्कुल भी रोना नहीं है और ना ही हंसना है, बस एक काम करना है और वो ये काम है कि एंजॉय करते जाना है, हर दिन सेलिब्रेट करते जाना है और आज का दिन है इसे भी सेलिब्रेट करना है। हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप में कहता है, उस दिन को जानना है, उस चीज़ को, उस बात को जानना है। बस इसी तरीके से आगे चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। सवाल क्या पूछूंगी मैं आपको बताने वाली हूँ। सवाल पहले है लेकिन छोटा सा, ये है कि आज कौन सी तारीख है। आज 28 मई है और 28 मई को ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे क्यों मनाते हैं और 28 मई को ही ये दूसरा खास दिन मनाने की, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, ये भी सेलिब्रेट करते हैं हम, लेकिन 28 तारीख को ही क्यों मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे का एक कारण है, चलिए कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूं इसके पीछे का कारण क्या है। कारण ये है कि ये दिन और ये महीना मीनिंगफुल माना जाता है। आज के दिन को चुनने का एक कारण खास रहा है, महिलाओं का जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लगभग 28 दिनों का होता है और आज 28 तारीख है और ये जो माहवारी होती है, पीरियड्स होते हैं, सामान्यतः जो है करीब 5 दिनों तक ही चलते हैं और इसी वजह से साल के 5वें महीने यानी मई की 28 तारीख को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में चुना गया, ताकि महिलाओं की सेहत, साफ सफाई और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और इसी समय वुमेन्स हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर खास तौर पर चर्चा की जा सके, क्योंकि महिलाओं की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। 28 मई सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि महिलाओं की सेहत, सम्मान, जागरूकता और हाइजीन के महत्व को बढ़ावा देने का, उसके बारे में अवेयरनेस का एक संदेश है। देखिए कितना खास और कितना इम्पॉर्टेंट दिन है ना आज, और बात करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, 12:30 हो गए। वैसे तो ढेर सारी बातें आपसे करनी है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हो और कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है एक खूबसूरत सा गाना हो और गाने के बाद जो है आप वापस आएँ और इसी बारे में जो आज का

0: हमारा खूबसूरत सत्संग है उसी के बारे में बात करते हुए आगे निकले, और मैं सोच रही हूँ कि बिना देरी के आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो अपनी यात्रा को खूबसूरत और बनाया जाए।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बिल्कुल, ये खूबसूरत सा दिल आपका है, आपके लिए है, और ये जो हाजिरी हमने लगाई है ना ये खूबसूरत से प्रोग्राम में, और ये खूबसूरत सा चंक आज का, और आज का जो खास दिन है, ये सब मिल करके एक ही बात बोल रहे हैं कि आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं आपको बार बार बोलते रहूँगी भाई, ईद मुबारक हो। और ये ईद का जो खास दिन है, और आपके पास मुझे पता है दुआओं का और खुशियों का भंडार होगा आज। आपके आसपास, आपके दोस्तों में, जानने वालों में ढेर सारी खुशियां भरी होंगे, और मतलब यकीन मानिए दूसरों को खुश देख के तो अच्छा ही लगता है, नहीं? और त्यौहार एक ऐसा मौका होता है जब आप खुशियां ना चाहते हुए भी फैलाते हैं, ना चाहते हुए भी। आपका दिल नहीं कर रहा होगा ना कि सामने वाले से बात ना करूं मैं, फिर भी त्यौहार ऐसा मौका होता है जब आप सारे गिले शिकवे भुलाकर गले लगते हैं, गले मिलते हैं और जश्न मनाते हैं, एक दूसरे की सलामती की दुआ करते हैं। ऐसे ही अगर खुद सलामत रहे तो बाकी सबके लिए कर सकेंगे। खुद का सलामत होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये तो महिलाओं को डेडिकेटेड है। अब देखिए ना, आज ईद है, त्यौहार है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं तो कहूँगी कि महिलाएँ निभा रही हैं घर पर। भाई जो त्योहार बन रहा है, पकवान बन रहे हैं, जो रसोई जल रही है, वो तो सब महिलाओं से है बॉस। और मैं सुन रही थी कि जो ईदी महिलाओं को नहीं दे रहे हैं लोग, भाई कितने खंजूस हैं वो लोग, क्यों नहीं मिल रही है ईदी, मिलनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है इसके बारे में बात करते हैं। पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक सामान्य है, नेचुरल हिस्सा है। इस दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाइजीन की कमी इन्फेक्शन, इरिटेशन और कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। और अगर बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो सिर्फ महिलाओं की पर्सनल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है ये, इसका सीधा सीधा रिलेशन इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से भी है। और आज बड़ी मात्रा में सैनिटरी वेस्ट पैदा होता है, आपको पता है, अगर इस्तेमाल किए गए पैड्स या अन्य प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्पोज न किया जाए, गंदगी, पॉल्यूशन बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये। इसीलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब सिर्फ खुद को साफ करना नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट को भी क्लीन और सेफ रखना है। रीयूजेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं।

अब देखिए ना, हम इन खूबसूरत चंक्स में, इन खूबसूरत सेगमेंट्स में डेली बात इन्वायरमेंट की, बागवानी की, इंटीरियर डेकोरेशन की, ऐसे प्लांट्स की करते हैं जो हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छे होते हैं। अब सोचिए अगर हम बाहर अपने हाइजीन का ध्यान न रखने के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है भाई, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। मैं तो ये कहूँगी कि हमें इस बात को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और बस गहराई तक सोचने

कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है भाई, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। मैं तो ये कहूँगी कि हमें इस बात को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और बस गहराई तक सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में बहुत बहुत विचार करने की ज़रूरत है। ट्यून इन करके रखिए 107.7 FM रेनबो, और भी सीरियस मुद्दों पर बात करेंगे। हैं इतने सीरियस नहीं, मौका अच्छा है, बात सीरियस लग सकती है लेकिन ज़रूरी है बात, ज़रूरी, सीरियस से ज़्यादा ज़रूरी बात है, इसको तो ध्यान रखना ज़रूरी है। एक खूबसूरत सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। अच्छा, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, इसमें शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और गाना भी पसंद है, एक्टिंग भी पसंद है, और वाइब भी पसंद है, और गाने वाला गवैया भी पसंद है। सोचिए, सुनिए, इंजॉय करिए। मुबारक हो आज का ये खूबसूरत दिन आपको।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: जी हाँ, ये है धड़कन लखनऊ की और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। और बात मेंस्ट्रुअल हाइजीन की हो रही थी और मैं सोच रही हूँ कि आपको फटाफट से सारी जरूरी बातें बता दूं, याद दिला दूं आज के खूबसूरत चंक में। और ये जो खूबसूरत सेगमेंट है आज का, ये आपको बार बार आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का रिलेशन आपके एनवायरनमेंट से कैसे है ये बता रहा है। हमने अभी बात की कि एनवायरनमेंट का रिलेशन आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से कैसे है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर देखें, पर्सनली अगर जाएं, तो आपका वॉशरूम, बाथरूम मेंस्ट्रुअल हाइजीन से कनेक्टेड है और इंटीरियर में भी तो आता है। आपका वॉशरूम भी तो खूबसूरत होना चाहिए, बाथरूम भी तो अच्छा दिखना चाहिए, वाइब अच्छी आनी चाहिए वहां से भी। ये नहीं कि स्टिंकी है, बहुत ही खराब दिख रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, ये भी तो नहीं होना चाहिए। वो भी जिंदगी का अहम हिस्सा है, न जाने दिन भर में कितना समय हम वहां बिताते। खैर, आपकी हमारी मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ होती है वो बाथरूम हाइजीन की बहुत बड़ी उसमें भूमिका होती है। अगर वॉशरूम साफ ना हो, वेंटिलेशन सही ना हो और हाइजीन मेंटेन ना किया जाए, तो इन्फेक्शंस का हब बन सकता है बाथरूम। और बाथरूम

सा होना चाहिए, साफ सूखा, अच्छा वेंटिलेशन वाला, हल्का नेचुरल फ्रेग्रेंस वाला, और उसमें लाइट भी अच्छी खासी होनी चाहिए, रेगुलरली क्लीन्ड होना चाहिए। यह है कि डस्टबिन जो आपका होना चाहिए हमेशा ढक्कन वाला ही लीजिए। अगर ढक्कन वाला डस्टबिन आपका नहीं है तो आप कोशिश करिए कि ले आइए ढक्कन वाला, और ऐसा ले आइए जो पैर से आप उसको प्रेस करके ओपन कर सकें। वो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, और उसके बाद वो ढक्कन बंद रहता ना, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सैनिटरी प्रोडक्ट्स का आपको हाइजीनिकली डिस्पोज करना है, और ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनके बारे में खासकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इनका जो डस्टबिन या इनका जो बैग आप बनाएं वो अलग बनाएं डिस्पोज करने के लिए। जो भी आपके सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कप्स होते हैं, पैड्स होते हैं, इनको आप अलग से पेपर में रखें और अलग सा ही उसकी पैकिंग आप डिस्पोज करें। उसको किसी भी गीले कचरे में या खाने वाली चीज़ों के साथ या जो भी इजी वेस्ट होता है उसके साथ ना रखें। इतने तो आप अवेयर हैं, हैंड वॉश, साफ पानी, फ्लोर्स, कॉर्नर्स, ये सब रेगुलरली साफ आप करते ही हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में बाथरूम के इंटीरियर की अगर बात करें और आपकी वेलनेस उससे कैसे कनेक्टेड है इसकी बात करें, तो आज इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि हेल्थ और कंफर्ट से भी जुड़ चुकी है। हल्के रंगों वाला एयरी क्लीन बाथरूम आपको, हमको, मतलब हम सभी महिलाओं को मेंटली कंफर्टेबल महसूस करवाता है। अब देखिए कितना चिड़चिड़ापन होता है, नहीं गर्मी है, ऊपर से इतना पेन है, क्रैम्प्स है, और पीरियड है, पसीना है, इरिटेशन है। इंडोर प्लांट्स भी फ्रेशनेस बढ़ाते हैं, अच्छी खुशबू स्ट्रेस थोड़ा कम कर देती है। साफ और ऑर्गेनाइज्ड जो स्पेस होता है हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेवेंडर, लेमन, सैंडलवुड जैसी जो माइल्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मूड को ठीक रखने में। और जब भी हम आप महिलाएं हाइजीन का ध्यान रखती हैं तो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, घर में साफ हेल्दी पीसफुल माहौल बनाते हैं, तब उनकी फिजिकल और मेंटल वेलनेस दोनों बेहतर होती है। स्वच्छ स्वस्थ महिला स्वच्छ वातावरण और साफ सुथरा खुशहाल हेल्दी जीवन बनाती है। अच्छा देखिए, इन सारी बातों के साथ मैं आपको याद दिलाना भूलूं, आज तो खास दिन है, त्योहार का दिन है, लेकिन रेगुलर डेज पे भी आप, चाहे मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात हो या मेंसेस के डेज के दिनों की बात हो या नॉर्मल डेज के दिनों की बात हो, आपने नोटिस किया है कि काम से चिड़चिड़ापन, ये करना है, वो करना है, घर का इतना सारा काम करना है, आप अपना हुलिया कैसा बना के रखती हैं? अगर आपको अपना हुलिया ठीक बना के रखने को कहा जाए तो और गुस्सा हो जाते हैं, क्या मैं साड़ी पहन के काम करूं सारा, या बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसमें और चिड़चिड़ापन आता है। पर मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ें हमारी हेल्थ से ही तो जुड़ी हैं। अगर सुबह उठ करके 2 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें से 5 मिनट अगर अपने आप को ठीक करने में दे दें तो क्या बुराई है। ढेर सारी बातें हैं मुझे आपसे करने के लिए, लेकिन देर हो रही है जाने की, जाना है अगले प्रोग्राम में, जंप करना है जो आपका अपना प्रोग्राम है, खूबसूरत है, लेकिन जाने से पहले थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। आयरन की कमी हो सकती है इस दौरान, हमें शरीर से खून बहुत ज़्यादा बहता है भाई, तो विटामिन सी वाली चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए। आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है, नींबू, आंवला, संतरा, ये सारी चीज़ें। कॉटन के कपड़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय। सिंथेटिक कपड़े थोड़े से डिस्कम्फर्ट बढ़ाते हैं, स्वेटिंग, इचिंग, रैशेज हो सकते हैं। कॉटन से हवा इजीली पास होती है, पसीना एब्जॉर्ब होता है, स्किन इरिटेशन कम होती है और शरीर को कूल कंफर्टेबल रखता है। लूज फिटिंग क्लोथ्स, हल्के कलर्स, ब्रीदेबल फैब्रिक्स, कंफर्टेबल कपड़े मूड को भी अच्छा करते हैं, शरीर को कंफर्टेबल रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी फील होती हैं। ढेर सारा ज्ञान हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, त्यौहार की बधाई के साथ, शुभकामनाओं के साथ साथ आपको ये बार बार बोलूंगी भाई कि हर दिन अपने आप को 5 से 10 मिनट उठने के बाद दीजिए, अपना चेहरा ठीक करिए, अपने बाल सही करिए। ये क्या ज़रूरत है, माना कि काम बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है, पर आपको मंजोलिका बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ढेर सारी बातें और भी करेंगे हम, लेकिन आप ट्यून इन करके रखिए, खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजती हूँ। और आज प्रोग्राम शत्रुपा के खूबसूरत सेगमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग और बागवानी, जिसमें हमने बात करी थी महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, क्योंकि आज है 28 मई, वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है,

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक वीर सावरकर को उनकी जयंती पर सादर नमन करते हुए लिखा कि

वीरता और बौद्धिकता से भरा उनका व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की क्रांतिकारी चेतना और संघर्षपूर्ण जीवन ही हमें सदैव राष्ट्रहित में समर्पण, साहस और अटूट संकल्प का मूल्य संदेश देता रहेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थान तथा अन्य हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, किसानों की आजीविका बेहतर बनाएं और पोषण युक्त आहार भारत की जनता को उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। वहीं नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल की तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

एक बजकर के 5 मिनट हो गए हैं और ये खूबसूरत समय, खूबसूरत दिन, आज का जो प्रोग्राम है होंठों पे तेरी बात, इसकी शुरुआत हो चुकी है। खूबसूरत दिन, खूबसूरत समय की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज का जो दिन है ना वो खास है। त्योहार है और त्योहार के जो समय है ना वो खुशियां ही खुशियां होती हैं, इसीलिए खूबसूरत खुशियां खूबसूरत होती हैं। आपको फिर से मुबारक हो ईद की, और इन मुबारकबाद के साथ ही मैं आपको जल्दी से आज के प्रोग्राम का ये जो टॉपिक है होंठों पे तेरी बात का, ये बता देती हूँ। और ये

होंठों पे तेरी बात का टॉपिक रहा कि आज खुशी के मौके पे ये मुद्दा जो है त्योहार क्या होता है, बस इसी पे आप जो है अपनी बात लिख करके हमें भेजिए। 100.7 FM रेनबो ट्यून इन किया है और FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com ये जो हमारी मेल आईडी है, इस पर अपने मेल्स पहुंचा दीजिए।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे मरहले को मोसर तरीके से नाफिज करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मुहिम सिर्फ बुनियादी ढांचे की तामीर तक महदूद न रहे बल्कि मामूल के मुताबिक निगरानी, आवामी शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकों के कोऑर्डिनेशन से ठोस नतायज यकीनी किए जाएं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं पेशरफ्त मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने रियासतों से कचरा प्रोसेसिंग और गोबरधन प्लांटों समेत ठोस

0: वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल करने के अहकाम दिए। मीटिंग में रेलवे, बिजली और सड़क हलकों के तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए लागत वाले 7 खसूसी प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: काबीना की इक्तिसादी मामलों की कमेटी ने अवामी तकसीम निज़ाम के तहत राशन, नकलो हमल और मैनेजमेंट इमदादी स्कीम सार्थक PDS को जारी रखने की इजाज़त दे दी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 25,530 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बातचीत में वजीर बराए तलातो नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह स्कीम अवामी तकसीम निज़ाम को जदीद बनाने में तआवुन करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमद और रफ्त के लिए पहले मरहले में 110 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी यकीनी करने के अहकाम दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी मीटिंग में सदारत करते हुए वजीर आला ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा हलके में 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 15 जून से मुजव्वजा परवाज से कबल अवामी नकलो हमल निज़ाम को पूरी तरह मुस्तहकम किया जाए। मीटिंग में वजीर आला ने रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से तौसी पर भी जोर दिया। ईद उल अज़हा का त्यौहार आज पूरी रियासत में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार पैगंबर हज़रत इब्राहिम के ज़रिए अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के जज्बे की याद में मनाया जाता है। सुबह से ही इस मौके पर मसाजिदों में खसूसी नमाज का अहतमाम किया गया, जिसके बाद कुर्बानी के फ़राइज़ अदा किए जा रहे हैं। दारुलहुकूमत लखनऊ समेत गोरखपुर, आगरा, कौशाम्बी, कानपुर शहर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बिजनौर, अयोध्या, आजमगढ़, इटावा, शामली, वाराणसी, मेरठ, जौनपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और सहारनपुर में हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान नमाज अदा की गई। वाज़ह रहे कि रियासती हुकूमत ने पहले ही सभी सीनियर पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करके ये यकीनी करने को कहा है कि कोई नई रवायत शुरू ना हो और ना ही पाबंदी शुदा जानवरों की कुर्बानी दी जाए। दरियसना गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। रियासत में शदीद गर्मी और लू का सिलसिला कल भी जारी रहा। कई अजला में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बांदा में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से लू से राहत का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत के कई हिस्सों में कल से आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का कयास जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, जालाबारी और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। दरियसना मशरकी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। कुछ मकामात पर जालाबारी के भी इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: वेलकम बैक। आपके अपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ को और आपका अपना प्रोग्राम होठों पे तेरी बात चल रहा है। और आज जो मौका है, जो खुशी का दिन है, त्यौहार का दिन है और हमने बस छोटी सी बात पर बहुत बड़ी बात हो सकती है। खुशी क्योंकि बड़ी होती है और खुशी खूबसूरत होती है, तो आज छोटी सी बात आपके होठों पे जो आए आप हमसे साझा करें, वो बात इस बारे में होनी चाहिए कि त्यौहार क्या होता है, आपकी नज़र में त्यौहार क्या है। बस ऐसी ही छोटी सी खुशियां आपको हम तक पहुंचानी है। आप बस इंजॉय करिए, खुश रहिए, अपनी होठों की बात हम तक पहुंचाइए। और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ होठों की बातें हम तक पहुँच भी चुकी हैं। शैलेश कुमार के हैंडल से हमें मेल आया है नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से। अपनी हंसी के मालिक खुद बनो वरना यहाँ रुलाने वाले लोग बहुत बैठे हैं। और इन्होंने अनवारुल सर को नमस्कार सलाम आदाब लिखा है। आज मेरी बहन अपनी ससुराल लखनऊ चले गई, मेरे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बुखार भी आ गया। और सारा, पीहू, स्नेहा, सोनी, मनु, वंदना, रोशनी, बबीता, यासिर भैया जी को मेरा नमस्कार। अच्छा नीलू जी, आप क्या कहना चाहती थी आप, मतलब आप बताइए, आपसे चंद्रकला बात कर रही हैं, आपने अनवारुल भैया को, ठीक है अनवारुल जी को हम आपको आपका जो है सलाम पहुंचा देंगे, लेकिन हमें भी तो आप कुछ सलाम कर लेती हैं। आपको बुखार है, हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं, आप सेहतमंद रहें, लेकिन होठों पे तेरी बात के हिसाब से जो बात है वो हुई नहीं मुझे लगता है। अगली मेल जो हमारे पास आई है वो है मोनू सेठ जी की। इनकी जो मेल हमारे पास आई है वो आज के मुद्दे पर ही है शायद। इन्होंने छोटी सी बात लिखी है, साफ सीधी, खुशियों के साथ खुश रखें और खुश रहें। ये मोनू सेठ जी ने मेल किया है, बिल्कुल, और खूबसूरत आपकी मेल और छोटी सी बात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तान रजा जी का मेल आया हमारे पास, इन्होंने लिखा है चंद्रकला मैं आपका और पूरी आकाशवाणी एफएम रेनबो का सुल्तान रजा की जानिब से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक। अच्छा इन्होंने मुबारकबाद दी है, इन्होंने लिखा है जो इस वक्त एफएम रेनबो को सुन रहे हैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से, सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल, मोनिश, सादिक, और इन्होंने ईद मुबारक लिखा है। और इन्होंने लिखा है हर त्यौहार अपने आप में खास होता है और त्यौहार जो है आपसे भाईचारा, प्रेम, हमारे बिछड़े हुए लोग बसा लिए मिल जाते हैं और खुशियां बांटने में सब लोग साथ होते हैं। वरना तो इस ज़िंदगी में सब अपने कमरों में गुम हो चुके हैं, अपने मोबाइल्स में गुम हो चुके हैं, लेकिन त्यौहार आते हैं तो सब लोग एक साथ होते हैं। घर में चाहे गुजिया दिवाली की बात हो या फिर सेवैया की हो, जब साथ में बैठते हैं तो खाने में बहुत मज़ा आता है, वो गले एक दूसरे से मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो आज वही कहीं ना कहीं हमारी पुरानी चीज़ों को याद दिलाता है जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। सुल्तान रजा जी, आपने जो बात कहनी चाही वो हमें क्लियरली समझ आ चुकी है। त्यौहार का मतलब मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए जो मन में गिले शिकवे हैं उनको भुला कर फिर से गले मिलना है। बहुत शुक्रिया सुल्तान रजा, आपका मेल हमें मिला और बहुत खुशियों भरा मेल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाबू अंसारी जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखी है हमें मेल कहाँ से, देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से, और आपने हमें लिखा है नमस्ते चंद्रकला जी। नमस्ते बाबू अंसारी जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने लिखा है आप कैसी हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपको पूरी आकाशवाणी टीम को ईद उल अधा की मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी जीवन में जो है सफलता आए, खुशियां आए। सुधाकर जाधव जी का मेल हमारे पास आया है, इन्होंने टॉपिक के बारे में लिखा है त्यौहार खुशी का माहौल है, हम सभी भाई

एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, चाहे हम हिंदू मुसलमान कोई भी हो, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दोनों समाजों को एक दूसरे से मिलजुल करके एक दूसरे की हंसी खुशी में सहभागी होते हैं। त्यौहार एकता का संदेश है। सुधाकर जाधव जी ने हमें लिखा है काले गांव जाफराबाद मराठवाड़ा से, और बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, आपने बहुत दूर से हमें मेल पहुंचाया है और त्यौहार पर बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी। और रामराज जी का मेल आया है, इन्होंने हमें लिखा है पहाड़ीपुर रायबरेली से, और इन्होंने लिखा है बकरीद का त्यौहार है, त्यौहार का मतलब सब कोई मिलजुल कर रहें और पिछली पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे से गले मिलें। हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेल के लिए और आपके मुद्दे पर बात के लिए। रामेश्वर जी का मेल आया है, इन्होंने लिखा है होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन जी को सप्रेम नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, हम आपका प्रोग्राम प्रतिदिन सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं, खुशियों का त्यौहार है, ईद है, सबसे बड़ी खुशी क्या होगी, ईद की शुभकामनाएं देता हूँ सभी श्रोताओं को और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन्होंने हमें मुंगेसापुर कानपुर देहात से लिखा है, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, इन सभी का नाम शामिल किया है। रामेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और चैनल है 100.7। ओ माय गॉड क्या खूबसूरत टाइमिंग हो गई। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ हम चलते हैं अगले गाने की तरफ, और थोड़ा राइमिंग टूट गई क्योंकि सब राइमिंग नहीं मिल सकता। आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो खूबसूरत है और आपकी मेल्स भी खूबसूरत हैं। इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर आप हमें मेल पहुंचाइए कि त्यौहार आपकी नज़र में क्या है। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेज रही हूँ, कहीं खो ना जाइएगा इस खूबसूरत गाने की मोहब्बत में, मुझे क्योंकि ये गाना इतना पसंद है और मैं जानती हूँ कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बिना देरी के ये गाना बस आपके रेडियो सेट पर ये भेजा, बस मुझे शुक्रिया ज़रूर बोलिएगा आप पक्का इस गाने के बाद।

और ये जीना जो हसीन है ना, ये खूबसूरत आपकी सेहत से, आपकी खुशियों से, आपके अपनों के साथ से है। और ये जो मौका है त्यौहार का, ये हमें यही बताता है कि जो खुशियां हैं ना अपनों के साथ अगर बांटे तो अपनों का प्यार बढ़ता है, और अपने अगर साथ रहें तो फिर किस बात की चिंता है। और इन्हीं बातों के साथ हम मेल्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ को बढ़ते हैं। और ये जो प्रोग्राम है होठों पे तेरी बात, ये खूबसूरत प्रोग्राम है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि आपके मन की बात, आपके होठों की बात यहाँ आती है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किसी के मन की बात जानने में। वकील अहमद जी की मेल हमारे पास आई है, इन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम, इनकी आवाज, इन्होंने लिखा है मेरी आवाज इनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। और इन्होंने लिखा है ईद उल अजहा की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, अर्ज मंजूर करने का कोई तो बहाना होगा, मेरी खुशियों की कसम आपको आना होगा। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया, शमा, रिंकी पिंकी, महक, गुलफशा, इन सभी का नाम लिखा है और साथ में अहमद नवाब का भी नाम लिखा है। वकील साहब आपने ये नहीं लिखा है कि त्योहार का मतलब आप क्या समझते हैं, त्योहार क्या होता है। खैर, आपकी दुआओं के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ये जो दिन है आपका खुशियों भरा हो, खूबसूरत हो। और एक मेल हमारे पास है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी की, इन्होंने लिखा है प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, अच्छा इस हैंडल से आया है, पिंकू सोनी टिकैत नगर से। और सब लोग अपने आप को भीषण गर्मी से और अपने बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, और यही कहना है सभी सुनने वालों से। अच्छा, सिर्फ आपने ये संदेश भेजा है, लेकिन जो होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम है वो ये है, प्रोग्राम में बात मुद्दे की ये है कि त्यौहार आपकी नज़र में क्या है, इस बारे में आप हमें लिख भेजिए। और अगली मेल जो हमारे पास है वो जावेद अख्तर जी की है, इन्होंने लिखा है एफएम रेनबो की टीम को नेक ख्वाहिशों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, त्यौहार हमारे जीवन में जब भी आता है एक नया जोश हमारे लिए, एक नया संदेश लेकर आता है, भाईचारगी पैगाम देता है, हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर कोई भी त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा बरकरार रखते हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार तकीबा शाहीन का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, आपको बहुत मुबारक हो ईद की। अगली जो मेल हमारे पास है वो है महेंद्र देपन जी की, और इन्होंने हमें मेल किया है कहाँ से, आपने गांव रूण ज़िला, अच्छा आपने राजस्थान से हमें मेल किया है, और इन्होंने लिखा है सादर नमस्कार, इन्होंने साथ में लिखा है अब कैसे हो मैम जी, आशा करता हूँ आप पहले से बेहतर होंगे और जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। बस 15-20 दिन की और बात है महेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ख्याल रखा, मेरी सेहत अब ठीक है, बस वही बात है, हड्डियां जुड़ने में थोड़ा समय लगता है, मैं वैसे फिलहाल

0: हाल ठीक हूँ। और इन्होंने लिखा, आज के विषय पर मेरा मानना है कि त्योहार वही है जिसमें खुशियां हो, साथ ही पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित हो और जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखना, किसी भी बेजुबान को कष्ट न होना, प्रकृति का सम्मान, दया की भावना, वही त्योहार है। और बहुत शुक्रिया आपका, और आपने खूब सारी मंगल कामनाएं भेजी है। महेंद्र जी, आपका बेहद शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। रितेश जी का मेल हमारे पास है, और रितेश जी ने लिखा है कि आपने क्या लिखा है। रितेश जी, आपने लिखा है, नमस्ते, कैसी हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। रितेश जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, और इन्होंने बकरीद की शुभकामनाएं दी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो आपने भेजी नहीं है ना। बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रसारक चंद्रकला दीदी जी को नमस्कार लिखा है। नमस्कार बसंत जी, आपको भी। इन्होंने लिखा है, आज मेरी पोती नन्ही सी अन्विका की प्रथम जन्म दिवस पर आपकी दुआ आशीर्वाद की कामना करता हूँ। क्या बात है, आपकी पोती अन्विका को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। आपकी पोती खूब खुशी से झूमें, खेलें, हंसें, कूदें और स्वस्थ रहें, खूब खेलें और खूब नाम कमाएं। और बाकी आपने लिखा है नाम शामिल करने हेतु, तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए तो आज डबल खुशी का दिन है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और बस इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और मैं आपको वादा करती हूँ वो खूबसूरत सा गाना भी उसके बाद जो है ना आपको सुनाऊँगी, और वो खूबसूरत सा गाना जो होगा उसके लिए भी आप मुझे शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि वो जो गाने हैं ना ये मेरे दिल के करीब हैं, और मैं जानती हूँ कि ये जो गाने हैं ये बहुत पसंद आएंगे आपको। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, और ये छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम आते हैं वापस।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:39 और मैं यही सोच रही हूँ कि इकरार इजहार होने का भी डर लगता है क्या, कहीं हो गया तो? हाँ वैसे हो सकता है, डर लग सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद क्या होगा इसका डर लग सकता है, मुझे पक्का पता है, यही वाला हम 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ। मैं भाई बार बार याद दिला देती हूँ आपको ताकि आप भूल ना जाएं, खो ना जाएं, गाने की मौज में कहीं और ना निकल जाएं। बस यही है, बस पल भर की जो खुशी है ना वही सबसे जरूरी होती है। अब देखिए जितनी देर तक ये गाना चल रहा था उतनी देर तक मैं किसी और दुनिया में थी और यही सोच रही थी कि आप भी कहीं किसी और दुनिया में पहुंच गए तो प्रोग्राम का क्या होगा फिर। खैर, बसंत कुमार सिन्हा जी का फिर से मेल हमारे पास आया है और उन्होंने मुझे लगता है कि हमें लिखा है। अच्छा बसंत कुमार सिन्हा जी, आप ये लिखना भूल गए कि आपने दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से लिखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उतनी दूर से हमें मेल पहुंचाई है। और सुल्तान रजा जी की मेल हमारे पास आया है, फिर से आई है, और आपने क्या भेजा है हमें पता नहीं है सुल्तान जी, और आपने बहुत शुक्रिया जो भी आपने लिखा है ये हमें। और बेनित कुमार जी का मेल हमारे पास है, मेरे दोस्तों को इन्होंने लिखा है, ईद की बहुत बहुत बधाई लिखा है। विनीत कुमार, अच्छा आपने इंग्लिश में बेनित कुमार लिखा है और हिंदी में विनीत कुमार, ओह हमसे गलती हो गई। विनीत कुमार जी ने लिखा है, ग्राम अर्थपुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, होठों पर मेरी बात कार्यक्रम करने वाली चंद्रकला बहन जी को और हमारे दोस्तों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।

सभी को हमारी तरफ से बधाई आज के त्योहार की। मेरा कहना है कि सभी को मिलजुल करके त्योहार मनाना चाहिए, कोई भी त्योहार हो। सभी हमारे दोस्तों को, भाई बहनों को, हमारे देशवासियों को भाईचारा निभाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका विनीत कुमार जी हमें मेल करने के लिए। और ये जो आज प्रोग्राम होठों पे तेरी बात कार्यक्रम में बात हो रही है, वो हो रही है कि आपकी नज़र में त्यौहार क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्यौहार क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि त्यौहार क्या है? तो जावेद अख्तर साहब ने दोबारा लिखा है कि गुड आफ्टरनून चंद्रकला जी, कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में जो गाने आप तक हम तक पहुंचा रहे हैं, वाकई गीतों का कोई जवाब नहीं। आपकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में एक जान फूंक दी है। क्या शहद के जैसी मीठी आवाज़ है जिसे सुनकर तबीयत शाद हो गई। आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इतनी तारीफ लिखी है ना कि अब हम यहीं स्टूडियो में बैठे बैठे लाल हो गए हैं और हम भी खुश हो गए। हम इसी को अपनी ईदी समझ ले रहे हैं और बहुत खुश हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी तारीफ के लिए। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरीके से सभी को तारीफ कर करके खुश करते रहें, और आपके घर में जो बाकी लोग हैं उनके भी आप तारीफ कर दीजिएगा। और

आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इतनी तारीफ लिखी है ना कि अब हम यहीं स्टूडियो में बैठे बैठे लाल हो गए हैं और हम भी खुश हो गए हैं। हम इसी को अपनी ईदी समझ ले रहे हैं और बहुत खुश हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी तारीफ के लिए, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरीके से सभी को तारीफ कर करके खुश करते रहें, और आपके घर में जो बाकी लोग हैं उनके भी आप तारीफ कर दीजिएगा। और मेरी दुआ है दिल से कि आपका बाकी सभी श्रोताओं का, सुनने वालों का त्यौहार बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हों। मैं सोच रही हूँ कि एक बेहतरीन सा झमाझम गाना सुना जाए। आज बहुत दिनों बाद ये गाना सुन रही हूँ, और इस तरीके के गाने सुनने का दिल मेरा आज इसलिए है क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जश्न का समय है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है सबको खुश देख के।

और 1:48 हो गए हैं और जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ चल रहा है ना, ये खूबसूरत गाना, मतलब मेरा इतना दिल था इसको सुनने का अभी, और मैंने सोचा कि ये जो वाइब है ना ये बरकरार रहनी चाहिए और मेल्स का जो सिलसिला है वो चल रहा है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। अगली मेल हमारे पास रामेश्वर जी की आई है, इन्होंने लिखा है, अच्छा देखिए जो बीट है ना मेरे मन से जा नहीं रही, मेरा दिल कर रहा है कि इसी को सुनते रहूं, लेकिन इसी वाइब के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ते रहना चाहिए ना। रामेश्वर जी ने लिखा है, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुत करता चंद्रकला जी को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी रामेश्वर जी प्यार भरा नमस्कार। इन्होंने लिखा है, आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हॉटमेल, ये हॉटमेल नहीं है, होठों पे तेरी बात है, प्लीज हमारा भी मेल शामिल कर लें। अच्छा इन्होंने लिखा है, ग्राम पोस्ट मुंगेसापुर से, और रामेश्वर जी आप थोड़ा सा सब्र करिए क्योंकि जो समय है ना वो अभी बहुत ज़्यादा है, और समय जो है वो मतलब ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी हमें जो है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हॉटमेल तक पहुँचने के लिए। और ये जो खूबसूरत सा गाना है इसी की वाइब मैं आपके रेडियो सेट पर बराबर बना करके रखूंगी, तो इसलिए आपको ट्यून इन करके रखना है 107.7 FM रेनबो। अगला जो मेल हमारे पास है गणेश दत्त जी का, इन्होंने लिखा है कि हेलो मैम, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दत्त जी आपका आपकी मेल के लिए। इन्होंने लिखा है, त्यौहार का मतलब होता है आपसी प्रेम, बड़ों के प्रति आदर सिखाता है, और आप सभी श्रोताओं को ईद मुबारक हो। इन्होंने लिखा है, शिवा शर्मा गणेश दत्त आजमगढ़ से इन्होंने मेल की है। गणेश दत्त जी आपकी मेल के लिए बेहद शुक्रिया। और ये जो खूबसूरत वाइब हमारी चल रही थी ये मैं सोच रही हूँ कि इसको बराबर मेंटेन करके रखा जाए, और बस मेंटेन करते हुए ये रहा अगला गाना आपके रेडियो सेट पर, और आप कहेंगे कि क्या गाना सुना दिया, एकदम वाइब बनी रही। और ये जो वाइब बनी रहेगी ना इससे आपको और मजा आएगा, और मुझे लगता है कि बिना देरी के हमें इसे सुन लेना चाहिए।

अच्छा बताने, इस तरीके की वाइफ से आपने कभी रिलेट किया कि नहीं किया? और मैं तो नहीं जानती, लेकिन ये जो गाने हैं ना, इन दोनों की रिदम मुझे एक जैसी लगती है। खैर, प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को वाइंड अप करने का समय है। आपको फिर से आपके त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी खुशियां जो हैं ऐसे ही बनी रहें और आप खूब इंजॉय करें। और बस एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। लेकिन जो अगला प्रोग्राम है न्यूज़ ब्रेक के उस पार आएगा, वो है हॉटमेल, आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आप फरमाइश भेजते हैं हमें और आपकी फरमाइशें हम पूरी करते हैं। तो खैर, ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, इंजॉय करिए और तुरंत वापस आते हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक वीर सावरकर को उनकी जयंती पर सादर नमन करते हुए लिखा कि वीरता और बौद्धिकता से भरा उनका व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की क्रांतिकारी चेतना और संघर्षपूर्ण जीवन हमें सदैव राष्ट्रहित में समर्पण, साहस और अटूट संकल्प का अमूल्य संदेश देता रहेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि परिश्रमी किसानों के प्रयासों के कारण देश में खाद्यान्न भंडार की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दे

रही है। श्री सिंह ने बताया कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये बात कही। CBS कक्षा 12वीं की परीक्षा के पूर्व मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली की विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईद उल अजहा का पर्व समाज में भाईचारा और प्रसन्नता की भावना को प्रगाढ़ करेगा। इस मौके पर उन्होंने सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना भी की। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:05 हुए हैं और समय है प्रोग्राम हॉटमेल का। नमस्कार, शुभ दोपहरी। आपकी दोस्त चंद्रकला फिर से आपके साथ जुड़ गई है। 100.7 FM रेनबो लखनऊ आपने ट्यून किया है और आपका अपना प्रोग्राम हॉटमेल शुरू हो चुका है। बस इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं अपना काम, लेकिन उस काम को शुरू करने से पहले त्योहार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मिलजुल करके रहिए, ये जो गिले शिकवे हैं इन सबको दूर करने की कोशिश करिए। खैर, बातें तो ढेर सारी होती रहेंगी, लेकिन बिना देरी के एक एक मिनट, एक एक समय कीमती है आपका, और इन सारी बातों के परे आपकी मेल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। और जो पहली मेल हमारे पास आई है वो आई है बसंत कुमार सिन्हा जी की। इन्होंने लिखा है हाजिरी लगा दे, और इन्होंने लिखा है हमें दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। बसंत कुमार, रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी, तनुश्री और इन सब का नाम शामिल किया है, गाने की फरमाइश की है। उत्तम कुमार भगत जी का मेल हमारे पास है और आपने हमें लिखा है पाकुड़ झारखंड से, और श्वेता, किसु, अर्णव, सत्यम, इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है साथ ही।

और जो अगली मेल हमारे पास है वो अगली मेल है इनकी मनीष गुप्ता जी की. इन्होंने हमें मेल किया है, गुड आफ्टरनून मैम, मनीष गुप्ता गोसाईगंज से आपका प्रोग्राम. अच्छा, आप मनीष गुप्ता हैं गोसाईगंज के रहने वाले और इस समय जो प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं शिमला से. अरे वाह मनीष जी, शिमला का मौसम कैसा है? वहाँ तो ठंडक हो रही होगी भाई. इधर तो हम, आइए आप अपने शहर लखनऊ में आइए, नौतपा का मजा लीजिए थोड़ा. अब शिमला में एकदम इस तरीके से दगा करेंगे आप हमारे साथ. और इन्होंने लिखा है कि आपका प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब, गानों की लिस्ट बहुत ही शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपकी तारीफ के लिए हम बहुत ही खुश हैं. लेकिन एक बात से हम खुश नहीं हो रहे हैं भाई, आप कुछ भी कहिए इस बात को, आप शिमला के मौसम का आनंद उठा रहे हैं और हम इधर अपने शहर में इतनी चिलचिलाती नौतपे के साथ चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म. आइए लखनऊ की चाय पिए. खैर आगे बढ़ते हैं. रामराज जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने हमें लिखी है मेल जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से. और आपने रामराज, राजभानु, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज इन सब को नाम शामिल किया है और इन्होंने साथ ही मुझे यानी चंद्रकला बिटिया को प्यार भरा नमस्कार लिखा है. बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने साथ में गाने की फरमाइश की है. दिलीप कुमार जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ मुंदी चौक भागलपुर बिहार से लिखी है. दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह जी का नाम लिखा है आपने. और दिग्दर्शन गौर जी का मेल हमारे पास है मेरठ कैंट से. दिग्दर्शन, कविता, राधा नामदेव जी का नाम शामिल किया है, संजय ढिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और मेहर अरोड़ा जी का मेल हमारे पास है पदमपुर ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से. मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका जी का नाम शामिल किया है गाने की फरमाइश के साथ. सतीश अनेजा जी का मेल हमारे पास है, आपने हमें चंडीगढ़ सिटी से मेल किया है और इन्होंने लिखा है नमस्कार बहन जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं. अगली जो मेल हमारे पास है वो अगली मेल आने वाली है कहाँ से, वो मेल हमारे पास है टीडी मल्होत्रा जी की. इन्होंने हमें सेक्टर 67 चंडीगढ़ से लिखी है. टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का नाम शामिल किया है. राजकुमार डूडी जी का मेल हमारे पास है फ्रांसी हिसार से. राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार जी का नाम शामिल किया है, कोई भी गीत लिखा है. कमलकांत गुप्ता जी का मेल है, इन्होंने भी लिखा है किसी भी गीत में शामिल करें, पिपरिया से. कमलकांत, श्रीमती दीपा रिमझिम, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, राधे, दीपक, अंकु, राघव इन सब का नाम शामिल किया है. शाहरुन नूर अंसारी जी का मेल है, कोई भी गीत सुनवा दें. ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से. शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम इन सब का नाम शामिल किया है. सिद्धार्थ गोंडाने जी का मेल है हमारे पास, आपने गाने की फरमाइश के साथ ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से मेल किया है हमें. सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हीरामण, प्रणय, प्रतिभा जी का नाम शामिल किया है. हीरामणि वर्मा जी का नाम हमारे सामने है, इन्होंने दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से मेल किया है. हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल जी का नाम शामिल किया है. मूसा शेख जी की मेल हमारे पास है, मूसा शेख जी ने मेल हमें की है सनावत से और आपने प्यार भरा आदाब भेजा है. हम बिल्कुल खैरियत से हैं, आपको भी आदाब, आप खैरियत से हैं. इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ खूबसूरत मेल भेजी है. जय जी की मेल हमारे पास है, जय जी ने हमें होली चौक उत्तम नगर से मेल की है. जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु और गाने की फरमाइश का साथ इन्होंने लिखा है ईद मुबारक हो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और बाबू अंसारी जी की मेल हमारे पास है, बाबू अंसारी जी ने लिखा है गुड आफ्टरनून और गाने की फरमाइश है और साथ में आपने हमें मेल किया है कहाँ से, अहमदपुर बाजार बाराबंकी से. जो अगली मेल हमारे पास है वो है हरजिंदर छिंदा जी की, आपने गांव नथाना पंजाब से हमें मेल की है. और हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता जी का नाम लिखा है, कोई भी गीत सुनाने के लिए लिखा है. नितेश देवांगन जी का मेल हमारे पास है पलाड़ी छत्तीसगढ़ से. नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा देवांगन जी का नाम शामिल किया है. और अकरम हुसैन प्रिंस का मेल हमारे पास है, इन्होंने किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है. सीतामणि बिहार से आपने मेल किया है हमें. बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज

0: नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, कलेर कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान ने खत परवीन का नाम शामिल किया है। और अगली मेल हमारे पास दिग्दर्शन गौर जी की है, आपकी मेल हमने शामिल कर दी है। दिग्दर्शन गौर जी, आपने मेरठ कैंट से लिखा है और गाने की फरमाइश की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। नवी हसन साहब की मेल हमारे पास है, ईद मुबारक को लिखा है, प्यार भरा आदाब नमस्कार आपको भी। और किसी भी गीत के लिए इन्होंने लिखा है, मारहरा दरवाज़ा एटा से आपने मेल किया है। नबी हसन, शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, यशफ, रसीद जी का नाम शामिल किया है। और दिनेश वर्मा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, और दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी का नाम शामिल किया है और ये खूबसूरत से गाने की फरमाइश की है। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, और आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं इसके बाद, आपकी ही फरमाइश की होगी बारी।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

2:18 हो गए हैं और जो मेल्स का सिलसिला है ना वो चलता चला जा रहा है और ये जो मेल्स हैं आपके ये आते जा रहे हैं. बस मेल बॉक्स यूं समझ लीजिए कि हमारा बिल्कुल फुल है, एकदम भर चुका है बेहतरीन तरीके से और इतना भरा हुआ है कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बहुत ढेर सारी मेल्स हमारे पास हो गई हैं. दातार सिंह जी की मेल हमारे पास है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से और दातार सिंह शेखावत जी, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है साथ में. और अगली जो मेल हमारे पास है वो है सुरेश नारंग जी की और सुरेश जी की मेल हमारे पास कहाँ से आई है, कहाँ से आई सुरेश जी, आपने मेल कहाँ से की? अच्छा, आपने सहारनपुर से हमें मेल की है और आशा नारंग, सुरेश नारंग जी का नाम शामिल किया है. इन्होंने लिखा है, रिस्पेक्टेड आरजे नमस्कार जी, सॉन्ग की फरमाइश की है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें सुरेश जी मेल करने के लिए. रोजी डेकेस्ट्रो है मेल कर रहे हैं और इन्होंने हमें लिखा है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डेकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डेकेस्ट्रो का नाम शामिल किया है, गाने की फरमाइश की है. और अगली जो मेल हमारे पास है वो है सुरेश खुराना जी की. सुरेश खुराना जी की मेल हमारे पास है और आपने हमें सुरेश जी मेल किया है कहाँ से? सुरेश जी आपने सिर्फ एक शब्द लिखा है, फरमाइश. अब हम क्या समझे आपकी फरमाइश क्या है? मतलब आपकी मेल देखकर हमें ज़ोर से हंसी आने वाली थी लेकिन मैं हंस भी नहीं सकती ना, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्यों लिखा है सिर्फ एक शब्द फरमाइश, वो है क्या? खैर, अगली जो मेल हमारे पास है ओम बगड़िया जी की. ओम जी ने हमें मेल किया है. ओम बगड़िया जी, आपने जो मेल किया है हमें गांव बंडी वाला फाजिलका पंजाब से और ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत, बेबी गरिमा, इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है. ओम जी बेहद शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए. और अगली जो मेल हमारे पास है वो वकील अहमद साहब की है. इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, हॉट मेल अच्छा लगता है, ईद उल अज़हा की सभी को शुभकामनाएँ दी हैं और गाने की फरमाइश की है और साथ ही में आपने साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा, रिंकी पिंकी, महक, गुलफशा, इन सब का नाम शामिल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए. अगली जो मेल हमारे पास है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर जी की. इन्होंने लिखा है, डियर एंकर, आपको विनम्र निवेदन करते हैं कि अच्छा, इन्होंने लिखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बात की हो रही कि वो भी फीमेल मेंबर्स का नाम भी बिगड़ रहे हैं, उनका शहर गलत लिख रहे हैं, पता नहीं क्या.

आप लिख रहे हैं, इतने इतनी बड़ी मेल. अरे ओ माय गॉड, आपने लिखा है व्हाट इज बीइंग डन. बहुत बड़ी आपकी मेल है, आपकी शिकायत हम समझ रहे हैं. बस इतना है कि पता नहीं आपने क्या लिखा है कि तीन चार लिसनर्स और एक दूसरे का नाम, उनके परिवार सदस्यों का नाम बिगड़ कर लिख रहे हैं. पता नहीं, जो मेल कर रहे हैं साहब वही हम पढ़ेंगे, है ना. और आपने जो भी आपने लिखा है, हमें नहीं आपकी बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ रही. इतना बड़ा मैसेज आपने लिखा है, आपको थोड़ा क्लियरली आप अपना मैसेज लिखिए, और जो जिस तरीके के मैसेज करेंगे हम उनका मैसेज उसी तरीके से पढ़ पाएंगे. पूनम गगनेजा जी का मेल हमारे पास है. इन्होंने लिखा है, प्लीज़ एनी मेल. जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जी का नाम लिखा है. विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित का नाम शामिल किया है. और अगली जो मेल हमारे पास है, संदीप मक्कर जी की, और इन्होंने हमें मेल किया है. आपने कहाँ से मेल किया है संदीप जी? हमें लिखा है पिंगा वाला चौक गोरिया जालंधर से आपने मेल किया है हमें, और गाने की फरमाइश की है. संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर का नाम शामिल किया है. और अगली जो मेल हमारे पास है वो है रविंद्र जी की, और रविंद्र जी ने जो मेल हमें किया है, रविंद्र मोहनदास जी ने जो मेल हमें किया है किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास और आशा देवी जी का नाम शामिल किया है. किसी भी गीत को सुनाने के लिए लिखा है. तुलसी मस्कीन जी की मेल हमारे पास है, और तुलसी जी ने हमें मेल किया है कहाँ से? आदरणीय होस्ट मैडम जी नमस्कार, गर्मी बहुत है, थोड़ा बच कर रहें, पानी समय पर पीते रहें. गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का नाम शामिल किया है. और अगली मेल गुरमीत सिंह जी के हमारे पास है. इन्होंने लिखा है, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से. बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आपका मेल करने के लिए. और अगली जो मेल हमारे पास है स्वर्ण सिंह जी की है, और स्वर्ण सिंह जी ने मेल किया है लोहगढ़ ठाकुरांवाला से. स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, इन सब का नाम शामिल किया है. और अगली जो मेल हमारे पास है वो है आफताब अंसारी जी की. इन्होंने लिखा है, ईद की मुबारकबाद. शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया है. आफताब, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना, आलिया, इन सब का नाम शामिल किया है. गाने की फरमाइश की है. महेंद्र प्रसाद मोदी जी की मेल हमारे पास आई है. इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ रामगढ़ कैंट से मेल किया है. महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह, भरत भूषण, इन सब का नाम शामिल किया है. अनिल कुमार गुहाणकर जी की मेल हमारे पास है, और आपने गाने की फरमाइश के साथ मेहरनगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से मेल किया है. अभिजीत गुहाणकर, श्रीमती सरिता गुहाणकर, प्रणीता सिद्धांत, लाडला टुक टुक, इन सब का नाम शामिल किया है. और बबलेश पवार जी की मेल हमारे पास है. गाने की फरमाइश के साथ पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब से आपने मेल किया है. बाड़मेर राजस्थान से आपने मेल किया है. बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष जी का नाम शामिल किया है. और अगली जो मेल हमारे पास है वो है किन की है गगनदीप ठांडी जी की मेल हमारे पास है. और आपने गाने की फरमाइश के साथ गांव टोरोवाल, नवाशहर, पंजाब से मेल किया है. गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमारी ठांडी, प्रियंका ठांडी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वमिका का नाम शामिल किया है. और इसी के साथ मेल्स का जो सिलसिला है वो जारी है. ढेर सारी मेल्स हमारे पास आते जा रही हैं, और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आप ही की फरमाइश का ये प्यारा सा गाना ये रहा, आप सुनिए.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:33 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, हॉट हॉट मेल. और सच में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्रोग्राम हॉट मेल ही लग रहा है सुन करके. खैर, आपकी फरमाइशें जो हैं बहुत सारी हैं, और इतनी सारी फरमाइशें हैं कि बहुत सारी, ढेर सारी. सुधन बाबा का मेल हमारे पास है और आपने हमें मेल किया है. किसी भी गीत में शामिल करें. और नरेश पंडित, सुधन बाबा, आपने दो दो नाम लिखे हैं अपने भाई, आपने नाम क्लियर करिए. कोई लिसनर हमें लिख ही रहे थे सही कि अपना नाम गलत लिखते हैं, कुछ दूसरों का नाम गलत लिख करके भेजते हैं. खैर, संजय ढिंगिया जी की मेल हमारे पास है बागपत उत्तर प्रदेश से. संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया जी का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है साथ में. और जो अगली मेल हमारे पास है वो है निसार अली जी की. इन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है और किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है. धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से आपने मेल किया है हमें. निसार, सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, अयान बाबू का नाम शामिल किया है. जो अगली मेल हमारे पास है वो है आर कुमार की और वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का नाम शामिल किया है. और कोई भी गीत सुना दीजिए आपने साथ में लिखा है. और अगली मेल हमारे पास है वो है गणेश दत्त जी की मेल और इन्होंने हमें मेल किया है. गणेश दत्त गोंड विशाल शर्मा, आपने लिखा है महरूपुर, अट्रोलिया, आजमगढ़. अच्छा, आपके यहाँ के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं और इन्होंने लिखा है सुपरमार्केट चलाते हैं, लेकिन आपने फरमाइश तो लिखी नहीं है गणेश जी. और अगली जो मेल हमारे पास है वो है बिट्टू गगनेजा जी की. बिट्टू गगनेजा जी ने लिखा है ईद मुबारक और जलालाबाद वेस्ट से आपने मेल किया है. सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी, निमित का नाम शामिल किया है. और अगली जो मेल हमारे पास है वो है सरफुद्दीन अंसारी की. इन्होंने किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है. बक्सर बिहार से आपकी मेल आई है. सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू का नाम शामिल किया है. ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. और अगली जो मेल हमारे पास है सुमेरा परवीन की, इन्होंने लिखा है ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से. मोहम्मद सईद, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी परिवार का नाम शामिल किया है. बेहद शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए. और मोहम्मद आमिर का मेल हमारे पास आया है करेली ज़िला बरेली से. करेली ज़िला बरेली, क्या बात है, राइम भी हो रहा है. मोहम्मद आमिर अंसारी, माहे नूर, शमीम, नसरीन, समा, इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है. और अगला जो मेल हमारे पास है वो है तौहीद रहीम जी की. और तौहीद जी ने लिखा है, कैसे हैं आप, मलिहाबाद से हैं ये. और इन्होंने हमें लिखा है प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और बकरीद मुबारक लिखा है. तो आपको भी बकरीद मुबारक हो और आपने हमें

भाई मतलब दोपहर के समय आपने जो है ललचवाने वाला काम किया है, सिमई की फोटो भेज दी है आपने और हमें जो है भूख लगने लगी है अब। खैर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे काम मत किया करिए भाई आप, ये खाने की फोटो मत भेजा करिए। खैर दो ठीक दोपहर के समय। और जो अगली मेल हमारे पास है पंजाजी नावकर जी की, और इन्होंने हमें मेल किया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पीएस नावकर, निर्मला नुहारकर, विशाल और नारायण सोपान, आशीष जी का नाम शामिल किया है गाने की फरमाइश के साथ। और अगली मेल जो हमारे पास है, हम आपको पहले बता रहे हैं कि जितने भी मेल्स हमारे पास रिपीटेड आएंगे हम उन मेल्स को शामिल नहीं करेंगे। जितेंद्र नामदेव जी का मेल हमारे पास है, पोस्ट खतरौधी, मैं तो पढ़ नहीं पा रही ये आपने क्या लिखा है, और शहडोल मध्य प्रदेश से आपने मेल किया है, गाने की फरमाइश की है। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक आरूही, सौम्या जी का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है एम के राज जी, मुनीश कुमार राज जी का, भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से मेल किया है और शुभ दोपहरिया आपने लिखा है, एफएम टीम को नमस्कार लिखा है। हर घंटे लाजवाब रोज़ सुनता हूँ, गानों का सिलेक्शन आपकी बातें दिल जीत लेती हैं लिखा है, और गाने की फरमाइश के साथ आपने लिखा है आपका पक्का श्रोता मुनीश कुमार राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीताराम कांगड़ा जी की मेल हमारे पास है एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट नाम का नाम शामिल किए हैं। और जो अगली मेल हमारे पास है वो है मुकेश कश्यप जी की, मुकेश कश्यप जी ने जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मेल किया है। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलबीर का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है कि कोई सा भी गीत सुना दें। प्रकाश बोरगांवकर जी का मेल हमारे पास है, गाने की फरमाइश के साथ सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से मेल किया है। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, स्वीट, अंशुमन, आपने इन सब का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है उस मेल तक पहुंचने के लिए हमें अगला पन्ना खोलना पड़ेगा। नरेश जी की मेल हमारे पास है और नरेश जी ने गाने की फरमाइश की है खैल बाजार पानीपत से। नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल और शिवाजी रोहतक से पीयूष, कोयल, डुग्गू, इन सब का नाम शामिल किया है। महेंद्र देपन जी की मेल है हमारे पास, लेकिन वो देखिए देखते ही देखते अगले पन्ने में खिसक गई। और महेंद्र देपन जी की मेल इन्होंने लिखी है, नमस्कार, गांव रूण, जिला नागौर, राजस्थान से एफएम रेनबो लखनऊ का नियमित श्रोता हूँ और कार्यक्रम हॉटमेल पसंद है। आज इन्होंने विशेष फरमाइश तो नहीं करना चाहता, बस अपने परिवार के प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहता हूँ। और इन्होंने लिखा है, मंच के माध्यम से मेरे बच्चों राजवीर देपन, मोनिका देपन, मेरे भाई सुरेश प्रजापत और मेरी प्यारी बहनों सुमित्रा बंजारा, रोशनी रावत और बबीता राव जी का नाम लेते हुए उन तक मेरा स्नेह और प्यार पहुँचाने की कृपा करें। महेंद्र जी आपकी मेल के लिए बेहद शुक्रिया, हमने बिल्कुल आपकी मेल पढ़ दी है। लाल गिरी जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और किसी भी गाने में फरमाइश शामिल करने के लिए लिखा है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आपने मेल किया है, लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल गिरी जी आपका, और ये खूबसूरत सा गाना आपने फरमाइश की है, ये गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बात नहीं हुई. और किसी भी एवरग्रीन सॉन्ग में एडजस्ट कर लीजिएगा, इन्होंने लिखा है. महेश बुहारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए. बिल्कुल, रेनबो लखनऊ ने आपकी अटेंडेंस ले ली है और आप जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी बार चाहें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं. राजेश वर्मा जी का मेल हमारे पास है. शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से आपने मेल किया है. मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू, इन सब का नाम शामिल किया है. किसी भी गीत में इनका मेल शामिल करने के लिए इन्होंने लिखा है. और उदय भान पाल जी, आपने हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेल किए हैं, इसीलिए आपका मेल तो हम आज नहीं ले पाएंगे. बार बार बोलने के बाद भी आप अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही मुश्किल काम है ये. तो फिर आपकी वजह से कई सारी इंपॉर्टेंट मेल्स दब गई होंगी. साई गायकवाड़ का मेल हमारे पास है. इन्होंने लिखा है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें. नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है. अगली मेल जो हमारे पास है वो किन की है ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट जाना पड़ेगा. और अगली जो मेल हमारे पास है वो आई है, देखिए कितनी सारी मेल्स रिपीटेडली आपने भेजी हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है. और कई सारे मेल्स हमने पढ़ लिए हैं. सुमेरा परवीन का भी मेल हमने पढ़ लिया है. मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान देने वाली होती हैं. और अगली जो मेल हमारे पास है वो है दारा सिंह जी की. इन्होंने चौटाला हरियाणा से मेल किया है. दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए. और अगली जो मेल हमारे पास है ये देखिए, सुमेरा परवीन ने हमें कम से कम 50 मेल्स किए हैं. तो सुमेरा जी आप भूल जाइए आप मेल करना हमें, क्योंकि आप बार बार इतनी इस तरह, ये तो बहुत ही ख़राब बात है. खैर, अगली जो मेल हमारे पास है वो है डी के रणधीर गुप्ता जी की मेल हमारे पास आई है. और इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए. और शुभ दोपहरिया लिखा है इन्होंने. और ओखला संगम विहार दिल्ली से आपने मेल किया है. रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता जी का नाम शामिल किया है. और मोहम्मद रिजवान का मेल हमारे पास है. अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने लिखा है चंद्रकला सिस्टर आप कैसी हैं. मैं बहुत अच्छी हूँ रिजवान जी, और आप कैसे हैं. इन्होंने लिखा है ईद उल अधा मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. मोहम्मद रिजवान फरिंदा संडीला हरदोई से प्रोग्राम इन्होंने लिखा है और गाने की फरमाइश की है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल हमें करने के लिए. अगली जो मेल हमारे पास है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी की है. और इन्होंने हिंदुस्तान रेडियो मित्र से बने बुजुर्ग पलेरा टीकामण मध्य प्रदेश से हमें मेल किया है. और गाने की फरमाइश में इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल करें. ब्रजेंद्र जी, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष जी का नाम इन्होंने शामिल किया है. और अगली जो मेल हमारे पास है कौशिक वाधवाना जी की मेल हमारे पास है. इन्होंने राजकोट गुजरात से मेल किया है. कौशिक, अस्मिता, मम्मी पापा, महेश वडवाना परिवार इन्होंने लिखा है का नाम शामिल किया है. हेलो नमस्ते चंद्रकला जी, केम छो. कौशिक वाधवाना जी मजा मा, आप बताइए केम छो. और इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश. बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी हमें मेल करने के लिए. अशोक कुमार जी की मेल हमारे पास आ गई है. इन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून. रायपुर, ओडाला, मितौली, लखीमपुर खीरी से मेल किया है और गाने की फरमाइश की है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए. और मनोज बंसल जी की मेल हमारे पास है. मनोज बंसल हांसी हरियाणा से नमस्कार लिखा है. किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, ऐसा इन्होंने लिखा है. और अगली मेल जो हमारे पास है वो नरेश जी की है. और नरेश जी आपका हमें मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी मेल शामिल हो चुकी थी नरेश जी, हो सकता है आप सुन ना पाए हों. खैर, ढेर सारा शुक्रिया आपको हमें मेल करने के लिए. और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर.

2:46 हो गए हैं और समय बहुत तेजी से भागता जाता है, समय किसी का होता नहीं है। खैर, अगली जो मेल हमारे पास है वो है किसकी, सीताराम काकड़ा जी की। आपने एकता कॉलोनी रोहतक से मेल की है, गाने की फरमाइश की है आपने। ओ माय गॉड, ढेर सारी मेल्स हमारे पास, इतनी सारी मेल्स हैं कि क्या बताएं। महेश बोहरा जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, महेश बोहरा अजमेर राजस्थान से मेल किया है और नमस्कार प्रणाम लिखा है। इन्होंने लिखा है, आज मेरी भी अटेंडेंस लग जाए तो कम से कम ये मलाल नहीं रहेगा कि कभी FM लखनऊ से मुलाकात।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: करके 56:57 हो चुके हैं और बिल्कुल 57 हो चुके हैं और बिल्कुल समय नहीं है अपने पास, बस इसी बात के साथ कि अगर आपकी मेल कोई छूट गई हो, ढेर सारी मेल्स होती हैं और 10-10, 15-15 मेल्स के बीच अगर कहीं कोई मेल मिस हो गई हो तो निराश मत होइएगा। ढेर सारे प्रोग्राम्स हमारे कल फिर दिन आएगा और आपको फिर से त्यौहार की मुबारकबाद। न्यूज़ ब्रेक के उस पार आपका अपना प्रोग्राम सतरंगी दुनिया आपका कर रहा है इंतजार। ये खूबसूरत सा गाना, बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद हैं। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। श्री सिंह ने बताया कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इटावा में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 301वें जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि हमें गर्व है कि लोकमाता अहिल्याबाई ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया है और सभी ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार कराकर आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को जीवित रखने का कार्य किया है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि इस बार यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक या नकल की कोई घटना सामने नहीं आई। आज अयोध्या पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। सर्किट हाउस में अयोध्या महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर नगर के विकास कार्यों पर चर्चा की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य संघ विशिष्ट डिजिटल प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय शिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी, शासन प्रतिक्रियाओं और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाना है।

भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामगिरा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में शामिल होगी। पुरुषों वर्ग में भारत पूल ए में है, जिसमें मेजबान जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत 29 मई को कजाकिस्तान, 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच खेलेगा। पूल ए में शामिल भारतीय अंडर 18 बालिकाओं की टीम 30 मई को मलेशिया, 31 मई को कोरिया और 2 जून को सिंगापुर के खिलाफ मैच खेलेगी। 5 जून को सेमीफाइनल और 6 जून फाइनल खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: 3:04 हो गए हैं और इस समय प्रोग्राम सतरंगी दुनिया शुरू हो चुका है। आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई है आपके साथ।

0: प्रोग्राम की शुरुआत एक खूबसूरत से गाने से करते हैं और ये आगाज आपको एक खूबसूरत आज सतरंग की दुनिया में एक रंग दिखाने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे, वो मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है, हमारी सेहत से जुड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा सीरियस बातें लेकर के आती हूँ, लेकिन सीरियस बातों के साथ जो होता है वो कुछ म्यूजिकल बेहतरीन तड़का होता है ताकि आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाएं। खैर, आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में ट्यून इन करके रखिए, एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आने को तैयार है।
1: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

3:12 हो गए हैं और सतरंगी दुनिया का हमने खूबसूरत म्यूजिकल आगाज तो कर दिया है, लेकिन बात जो हम करने जा रहे हैं वो बात उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको सुनने में लग रही है कि हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हो। पहले जमाने में या कुछ समय पहले तक ऐसा समय था कि

लोग पता है बीमारियों से डरते तो थे, लेकिन किस तरीके की बीमारियों से डरते थे, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई वायरस ना आ जाए। लेकिन अब तो लोग खुद ही अपने साथ ऐसी बीमारियां लेकर के चल रहे हैं जो उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं, समझ रहे हैं आप। और इनको ही लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां कहा जाता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि हर घर कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज से जूझता हुआ आपको मिल ही जाएगा। कोई डायबिटीज का मरीज है, किसी को हार्ट प्रेशर है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी की बीमारी जिसको कहते हैं, कोई ओबेसिटी से परेशान है, मोटापे से, कोई डिप्रेशन से परेशान है, और कोई हार्ट डिजीज से। दिल की बीमारियां भी बहुत कॉमन हो चुकी हैं। पहले मैं आपको इंट्रो में ही बताती हूं कि हाँ, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज होती है ये होती क्या है। लाइफस्टाइल डिजीज जो होती है ना, गलत खान पान, तनाव, नींद की कमी, शारीरिक जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसकी कमी, नशे और ये सब जो खराब आदतें होती हैं या इररेगुलर आपकी जो लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से पैदा होती है और जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उनका कोई तुरंत समाधान नहीं होता है। इसीलिए इनको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। ये बीमारियां जो होती हैं धीरे धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और लंबे समय तक इंसान दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाता है जीने के लिए। अच्छा, मैं अब इन चीजों को आपको क्यों बता रही हूँ, लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में क्यों बताया मैंने आपको, इसलिए बताया। और ये भी चीज मैंने आपको बताई जो चीज आपने ध्यान दी होगी कि किसी भी घर चले जाइए या अपने घर में देखिए, कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो या तो डायबिटिक होगा, शुगर होगा उसको। शुगर तो इतना कॉमन हो चुका है कि आप कहीं भी चले जाइए, अरे भैया हमें शुगर है, बिना चीनी वाली चाय पियेंगे। शुगर होने तक की स्थिति पहुंची क्यों है, इतनी ऐसी स्थिति हो क्यों गई है, और अब समझ रहे हैं कि दुनिया में नंबर वन पे है भारत डायबिटिक पेशेंट्स में। और ये शुगर एकदम नॉर्मल हो गया, कोई बीपी का मरीज मिल जाएगा, कोई डिप्रेस आदमी मिल जाएगा आपको, कोई अकेलेपन से ग्रस्त मिलेगा आपको, कोई मैक्सिमम ज्यादातर लोग हम में से ओवरवेट है, मोटापे से परेशान है। इन्हीं सब के बारे में आज बात करने आई हूं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इंडिया अब नंबर वन तक पहुंच रहा है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बारे में मैं आपको सोचने के लिए तो जरूर मजबूर करूंगी, लेकिन आपको बस ये है कि थोड़ा सा धीरज धरना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा इन बारे में। खूबसूरत सा गाना आपकी रेडियो सेट पर भेज रही हूँ, आप इसे सुनिए और तुरंत इंजॉय करते करते वापस आती हूँ, मैं भी इंजॉय करती हूँ आपके साथ।

3:25 हो गए हैं और इतने खूबसूरत गाने के बाद मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ, जो बात आपसे करने वाली हूँ, वो उतनी खूबसूरत तो नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो कि अब इंडिया में ना कॉमन हो चुके हैं, हर घर में आपको जनरली मिला करती हैं। नंबर वन पे तो है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। भारत को आज डायबिटीज़ कैपिटल तक कहा जाने लगा है, ये अच्छी बात है क्या? ये तो बहुत ही ख़राब है ना, मतलब किसी बीमारी की कैपिटल, किसी बीमारी की राजधानी बनेगा हमारा देश अब? भाई सोन चिरैया को इस तरीके से बर्बाद तो नहीं करना चाहिए हमें, हमें फिट रहने की ज़रूरत है। खैर, मैं खुद आपको बता रही हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जितने रिश्तेदार हैं हर घर में लगभग एक शुगर का पेशेंट, और कलीग्स में मेरे जहाँ मैं काम करती हूँ, जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, उनमें भाई मेरी उम्र के लोग तक शुगर के पेशेंट्स हैं। और ये क्या है पता है? कुछ नहीं, ये जो बीमारी आपके खान पान, आपके लाइफ स्टाइल, आपकी आदतों की वजह से लगती है आपको। अच्छा, इसके बारे में आपको बताऊं कि स्थिति यह है कि भारत में करोड़ों लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं। शहरी इलाकों में ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं ना, वहाँ कम से कम शारीरिक गतिविधि है, कम उम्र के लोगों में भी अब डायबिटीज दिखाई देने लगा है। इसका जो मेन कारण है वो क्या है? बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें, बहुत ज्यादा चीनी, जंक फूड और फिजिकल एक्सरसाइज की कमी, पेट भर के खा लिया और सोए रहे, या बैठे बैठे वाला काम है, जितनी ज़रूरत नहीं भी है उससे ज़्यादा खा लिया, कभी कभी मोटापा, टेंशन, देर रात तक जगना। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि मीठा

कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस फूड नुकसान कर रहे हैं, जानते भी हैं, फिर भी उसको धड़ाधड़ कंज्यूम कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, हाइपरटेंशन, इसके मरीज आपने सुने होंगे। ये बीमारी ना साइलेंट किलर कही जाती है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण देर से दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तो लोगों को लगता है कि ठीक है, जनरल है, होता है कभी कभी। भारत में हर 3 से 4 जो वयस्क हैं उनमें से एक व्यक्ति हाई बीपी से प्रभावित माना जाता है, और तनाव का खतरा, लाइफस्टाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक खाना, बहुत टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा चिंता करना लेकिन काम ना करना, सोना नहीं, जग जग करके टेंशन लेकर के वीडियोस देखना, एक्सरसाइज ना करना, धूम्रपान करना और शराब, ये सब मुख्य कारण हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग दवा तो खाते हैं लेकिन तनाव, गुस्सा, गलत खान कभी नहीं छोड़ते। हज़ारों रुपये की दवा खा लेंगे लेकिन एक 50 रुपये की, 500 रुपये की वो जो महंगी से महंगी ख़राब करने वाली चीज़ आती है वो नहीं छोड़ते। इसके आगे अगर बढ़ें, मोटापा, इसके बारे में तो थोड़ी देर में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी ऐसी नेगेटिव बातें करने का भी तो मेरा दिल नहीं है, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत भयानक नुकसान कर रही हैं, और हमारे देश को, सोच रहे हैं आप, डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है हमारे देश को, और बोलते बोलते भी मैं थक रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि अच्छी नहीं है। लोगों को लगता है कि दवा खा के कंट्रोल में रहता है, पर ऐसा करना ही क्यों, फिट रहने की जरूरत है। यही आज हमारे प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का मेन मुद्दा है। ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और अपना स्ट्रेस दूर करते हैं, नहीं, और खूबसूरत सा डोपामिन भी तो लेने की जरूरत है। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो चंद्रकला के साथ।

बजकर के 39 मिनट हो गए हैं और ये जो समय है ना ये सतरंगी दुनिया का, इसमें देखिए कुछ खास बात हर दिन होती है, हर रोज़ कुछ न कुछ अतरंगी नया बेहतरीन होता है आपके लिए। लेकिन आज जो बात कर रही हूँ ना मैं, वो थोड़ी सीरियस सी बात है, और सीरियस बात है तो सीरियस होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, पर सोचना ज़रूर है इस बारे में। आगे बढ़ें, अगर मोटापे के बारे में बात करें, मोटापा पहले सिर्फ वजन बढ़ना माना जाता था, लेकिन आज के समय में क्या है कि कई गंभीर सीरियस प्रॉब्लम्स की जड़ बन चुका है। इसके जो मेन कारण है, जो आपने अपने अंदर पाली हुई हैबिट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे ये मत बोलिएगा कि बार बार हमको बोल रही हैं, हमको बोल रही, खुद भी तो मोटी है। हालांकि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और साथ साथ मैं भी खुद को बोल रही हूँ, और मैं इतना जान और बता रही हूँ कि मैक्सिमम लोग ओबेस हैं इस समय। तो ये जो मोटापा है इसके कारण क्या है, इसको ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा पहले सोचते थे कि वजन बढ़ गया है, घटा लेगा कुछ ऐसा, लेकिन अब अगर वजन बढ़ गया तो समझ लीजिए कि अब वो घटने का नाम नहीं लेगा। फास्ट फूड, घंटों मोबाइल और स्क्रीन टाइम। अब आप कहेंगे स्क्रीन टाइम और मोबाइल कैसे वेट गेन करता है? करता है ना, बहुत ज़्यादा गेन करता है। बताती हूँ मैं आपको, मोबाइल और स्क्रीन टाइम आपको इंगेज रखता है। जैसी एक पोजीशन में आप होते हैं वैसे ही उसी पोजीशन में कई देर तक आप स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, थकते हैं। जब आपको पता चलता है, देख के स्क्रीन टाइम ख़त्म होने के बाद जब आपको पता चलता है कि ये जो समय है ये बर्बाद हो गया, बहुत सारा मिला कुछ नहीं, गिल्ट आता है और स्क्रीन टाइम का रिजल्ट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, फेक डोपामिन, और उसके बाद आपको मिलता है रिग्रेट, स्ट्रेस। और उसके बाद दूसरा जो कारण है, बैठ के काम करने की आपकी आदत, दिन भर बैठे रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी चीज बैठे बैठे वहीं मिल जाए आपको। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन एक्सरसाइज का टाइम तो निकालती हूँ मैं, ख्वाहिश तो यही रहती है कि जहाँ बैठी रहूँ वहीं सारी व्यवस्थाएं हो जाए तो ज़्यादा उठना ना पड़े। लेकिन एक्सरसाइज तो हो, एक घंटा कम से कम 45 मिनट 50-60 मिनट कुछ तो अपने लिए हो। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी कमी है, और ये जो मोटापा आप बढ़ा लेते हैं, बांध लेते हैं, समेट लेते हैं अपने आसपास, ये आगे चल के आपको वही जिसके बारे में बात कर रहे थे, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, PCOD, फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स देता है। और अगर हार्ट डिजीज की बात करें तो आपने सुना होगा, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता रही हूँ, सुना क्या है, मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि कोविड के बाद अब यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा चलन देखने को मिल रहा है। पहले की जो दिल की बीमारी होती थी, हमने खुद अपने बचपन में जो दिल की बीमारी होती थी वो उम्र दराज लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो यूथ है उसमें भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। इसका जो मेन कारण क्या है, कम उम्र में जवान दिखना है। 17-18 की उम्र में आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करना है, धूम्रपान करना है, जिससे आप कूल और स्टड लग सकें, है ना।

स्ट्रेस है, धूम्रपान है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जंक फूड है, नींद खराब, 8 घंटे की नींद तो जैसे लेना भूल ही गए हैं सब। इसके अलावा चिंताजनक बात यह है कि लोग शरीर से ज्यादा काम और पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, शो ऑफ को प्रायोरिटी देते हैं। जब तक शरीर जवाब न दे दे तब तक इन्हीं सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं। तो समझिए होगा कैसे काम, कुछ नहीं हो सकता। एक और बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी खराब आदतों की वजह से।

होगा कैसे काम, कुछ नहीं हो सकता। एक और बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी खराब आदतों की वजह से हमें घेर कर चल रही है। ये ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, और तुरंत वापस आते हैं, बात करते हैं इन चिंताजनक बीमारियों के बारे में।

3:48 हो गए हैं और अब बात आगे बढ़ाते हैं और ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो एक और ऐसी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है और भारत में इतनी तेजी से फैल रही है कि बस हब ही बन चुका है भारत इसका भी। और वो बीमारी पता है, हो सकता है आप सुन रहे हैं, आपको भी हो, फैटी लिवर। और ये बीमारी ना अब बहुत ही कॉमन हो चुकी है, इतनी कॉमन हो चुकी है कि मतलब लोग सोचते हैं कि ठीक है पेट कॉन्स्टिपेटेड है या पेट में दिक्कत है, कुछ ऐसी चीजें। अब ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि खासकर यूथ में आपको लगता है नॉर्मल सा कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मल सा लूज मोशन है या नॉर्मल सा पेट दर्द है। और सबसे मजेदार बात यह है कि लिवर जब अपने ग्रेड 2 फैटी तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, और कई लोगों को तो ग्रेड 3 सिरोसिस पहुंचने तक भी पता नहीं चलता कि फैटी लिवर यानी कि एक लाइफस्टाइल डिजीज को समेट के चल रहे हैं अपने साथ। इसके जो मेन कारण क्या है, फिर वही बता रहे हैं हम आपको, तला भुना, जंक, कोल्ड ड्रिंक्स इसका मुख्य कारण है। अब लोग सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स से लिवर में फैट जमा होता है, जी हाँ, ढूंढिए, सर्च करिए, पूछिए डॉक्टर से कि क्या कोल्ड ड्रिंक से और ये जो गंदी वाली जो आपकी पेय पदार्थ है, जो ड्रिंक्स है आपकी, ये आपको कितना नुकसान करती है। मोटापा, अगेन, अगर आप ओवरवेट हैं, फैट हैं, तो आप फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी, वही बात हो गई कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपका इसका मुख्य कारण है। और असर ये होता है कि आपको बहुत सारी बीमारियां लिवर से लगती हैं, और लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और इसके साथ जो दूसरी बात है वो मैं आपको बताऊं, PCOD, PCOS महिलाओं में तेजी से बढ़ती लाइफस्टाइल डिजीज है, इसके मुख्य कारण भी वही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है और इरेगुलर आपका जो लाइफस्टाइल है वो है, खराब डाइट है, बहुत ही लेस फिजिकल एक्टिविटी है, फिर आप धीरे धीरे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वेट गेन होता है, स्किन खराब होती है, फर्टिलिटी समस्याएं आती हैं, और डिप्रेशन, ये भी अक्सर आजकल तो टर्म बन चुका है, आजकल मैं डिप्रेस हूं, मैं परेशान हूं, भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तनाव, सोशल मीडिया का दबाव, अकेलापन, नींद की कमी और जो ये डिसबैलेंस है लाइफ में वो सबसे खराब चीज है। बस देखिए, सारी लाइफस्टाइल बीमारियों की एक ही जड़ है, आपकी खराब लाइफस्टाइल। बस एक गाना आपकी रेडियो सेट तक पहुंचा देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस ना कम सा हो जाए।

बिल्कुल इसी तरीके से खुश रहना है, मौज मस्ती करते रहना है, लेकिन जो ये अभी तो कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा बाद में, अभी तो थोड़ा बहुत है, इतना तो चलता है। ये वाली जो सोच है आपकी ना, बीमारी के शुरुआती संकेतों को आप नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे वो आपके शरीर को अपना घर बना लेती है, और उसके बाद आप जितना चाहे निकालने की कोशिश करें वो नहीं निकलती है। स्वाद, आदत की लत, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और ये इररेगुलर आपका लाइफस्टाइल, इतना डिसबैलेंस है आपकी लाइफ में, तो वो सारा आप हब बना रहे हैं अपनी बीमारियों को, समेट रहे हैं अपने अंदर। समय की कमी है, लोग कहते हैं एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, लेकिन घंटों मोबाइल रील्स और ये सब स्क्रॉल करते करते निकालते हैं। अवेयरनेस की कमी भी है, बीमारी का नाम पता है शुगर है, लेकिन बहुत जनरलाइज करके रखा शुगर है। अच्छा चीनी नहीं खाएंगे तब तो ठीक है, बिना चीनी वाली चाय, लेकिन चाय पियेंगे, पकौड़े भी खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बीमारी का नाम आपको पता है, बीमारी के जो प्रभाव हैं, बीमारी के जो कारण हैं, उनको भी तो जानने की ज़रूरत है। तो मेंटल स्ट्रेस आपको अपना कम करना है, इसके साथ आपको गलत खान पान को हटाना है अपनी ज़िंदगी से, ख़राब आदतों को थोड़ा आपको किनारे करना है। छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बस यही सारी बातें कहूँगी और इन सारी बातों के साथ आपसे तो मैं विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा समय हो गया घर जाने का, और मैं सोच रही हूँ कि आप आगे बढ़ें प्रोग्राम्स में और खुश रहें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फिर कभी मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए ये गाना आपकी रेडियो सेट पर, बाय बाय, टेक केयर।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका अनियाला सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये मैं

0: एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है. मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ.
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी. और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं. लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं. सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है. अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
0: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF. जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है. तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे. और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का CRPF ने काम किया है. और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है. और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है.
1: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं. और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं. तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह. और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं. तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर.

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ। मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज ए चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था। मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से

0: जगहों पे जा सकता है और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प थोड़ी अपनी और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं
1: जी। तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है
1: जी। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस
1: जी। तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं
1: जी। तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई दूरभाष फ़ोन के माध्यम से, लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के बहुत है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों, उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था
1: जी। निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर

0: के और पीछे जाए, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस किस प्रकार के आप बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपने क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: अपनी
1: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी,
0: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रही हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी

0: इंडिया है, हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया. आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं. सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है. सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है. सीआरपीएफ को एक अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक. तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है.
1: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया. और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ. सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है. जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करती थी और ये खेलना आज तक जारी है. और आपको लगता है कि जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रीक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है. तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं. तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं. उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला. टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है. तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है. तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में.
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना. क्या बात है. तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए. सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स.

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा

0: फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी. तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई. तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी. और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा. उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा. और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया. उन दिनों मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में, ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था. तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था. तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था. और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं. तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में. तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था.
1: क्या बात है. फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा. उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी. मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में. तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था. तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है. मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब ही रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर. तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं. तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है. तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी.
1: क्या
0: तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया. तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए.
1: क्या बात है. उसके अलावा आपके क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ. आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन. तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं. तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं. तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा

0: सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है
1: जी। एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने आईआईएमसी से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन आईएमसी से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का पीआरओ भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ पीआरओ की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी, तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्य निष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निस्संदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था, तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे, तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ की ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें, तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं, तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और सीआरपीएफ भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की, तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के। सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने।

0: तो आज भी वो सेम फीलिंग है, जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल, रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एक ना बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी।
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो

0: माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है. तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी.
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए. तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है. तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है. तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है. आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है. और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत. बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है. क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है. ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्य निष्ठ हैं. तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: आप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे

0: वर्ष पूरे कर रहा है. अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी, आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो. तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी.
2: तो
1: जी तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीत माला लेकर आते थे. और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे. क्या गोल्डन वॉइस थी उनकी. तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई. और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए.
0: बिल्कुल. और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है. हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने.
0: बिल्कुल.
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी.
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी. और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल. तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह.
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की. एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है. निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर.
1: धन्यवाद. जय हिंद.
0: जय हिंद.

फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक. और एक कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर होते हुए एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊंगी कि इनका कभी भी ना बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में मेन करियर फोकस था ही नहीं. फिर भी सोचिए कितनी मजेदार बात है कि एक गाने ने उन्हें पैन इंडिया कल्ट फेम दे दिया. जी हाँ दोस्तों, इन्हीं आवाज़ों ने हमारी जिंदगी के कुछ सबसे इमोशनल मोमेंट्स को साउंड ट्रैक दिए हैं. ऐसे ही एक और सोलफुल आवाज आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर. बिल्कुल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक.

जी तो आ जाइए, मैं बताती हूँ इस खूबसूरत सी आवाज के पीछे कौन है वो सिंगर जो जिसने पूरे दिन और सभी के दिलों में, पूरे इनफैक्ट देश पे राज किया है। जी हाँ, तो ये है एक क्लासिकल सिंगर बॉम्बे जयश्री, ये उनकी आवाज़ है और उन्हीं के सॉफ्ट और सोलफुल अंदाज की वजह से ये सॉन्ग इतना आइकॉनिक बनता है। और ये जो सिंगर हैं बॉम्बे जयश्री, इनको गवर्नमेंट ने पद्मश्री से ऑनर भी किया है और साथ ही साथ ये क्लासिकल फील्ड में, एंड इन्होंने कई इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भी गाना गाया है, जैसे कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कई सारी उन्होंने फिल्मों में और साथ ही साथ क्लासिकल सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं। और इतनी खूबसूरत आवाज़ है ना कि इनको गवर्नमेंट ने, सरकार ने ऑनर किया है।

जी हाँ, तो ये खूबसूरत आवाज जो आप सुन रहे थे, क्या आप जानते हैं इसके पीछे ये आवाज किसकी है? मुझे लगता है आप नहीं जानते हैं, तो मैं आई हूं ना बताने के लिए आपको। ये खूबसूरत सी आवाज है स्वर्णलता की। स्वर्णलता ये एक सिंगर ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ही मेन स्ट्रीम उसमें सिंगिंग में फेमस नहीं है। ये इन्होंने रीजनल सॉन्ग्स बहुत से गाए हैं, कई लैंग्वेजेस इन्हें आती हैं और कई लैंग्वेजेस में इन्होंने गाए हैं। और इनके बारे में बताऊं तो इन्हें भी हमारी भारतीय सरकार ने नेशनल अवार्ड से नवाजा है। और साथ ही साथ मैं एक बात बताऊं कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस का ज्ञान है और ये काफ़ी रीजनल मूवीज़ के लिए गाती हैं, तो इन्हें मतलब इनकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, जैसे कि इनको अवार्ड भी दिया गया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो मीडिया से काफ़ी प्राइवेट रही हैं। इसलिए जो इनके फैंस हैं, क्योंकि आप जानते हैं इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है, ये गाना इतना खूबसूरत है, तो इनके फैन फॉलोइंग तो अच्छी होगी। तो बिल्कुल इनके फैंस इन्हें मिस्टीरियस गोल्डन वॉइस बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ बहुत प्राइवेट रखती हैं। तो चलिए सुनते हैं आने वाले और कुछ खूबसूरत ट्रैक इसी तरीके से, जो गाने तो सुपर हिट हुए, हमारी प्ले लिस्ट में रहते हैं, हिट लिस्ट हैं ये, बट ये जो सिंगर्स हैं शायद ही कोई उनके नाम अच्छे से याद रखता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अनकन्वेंशनल सिंगर्स रहे हैं, मेन स्ट्रीम तो नहीं, बट हाँ आवाज़ का जादू इनका चारों तरफ फैला है। चलिए बढ़ते हैं और सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग मेरी तरफ से आपके रेडियो सेट्स पर। ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा।

जी बिल्कुल, प्यार तो होना ही था इनकी आवाज से, खूबसूरत आवाज से। तो आप सुन रहे थे ये दो खूबसूरत आवाजें। क्या आप जानते हैं इनके नाम, क्या आप जानते हैं सिंगर्स कौन हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन ट्रैक दिया इतनी खूबसूरत आवाज में? चलिए कोई नहीं, फिकर नॉट, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। हाँ जी, तो ये आवाज थी रेमो फर्नांडिस की। इन्हें इंडियन पॉप म्यूजिक के पाइनियर कहा जाता है, और साथ ही साथ मैं बता दूं ये गोवन सिंगर हैं। आई मीन टू से ये गोवा के हैं और ये वहाँ के गोवन सिंगर हैं। इनकी वॉइस में आपको वो एक टच, वो एक फ्लुएंसी, एक वहाँ के रॉनेस सुनने को मिलेगी। और इसके साथ साथ ये जो फीमेल वॉइस आपने सुनी, ये आपको पता है कौन है? ये बॉलीवुड की पावरफुल फीमेल प्लेबैक पंजाबी सिंगर जसपिंदर नरूला। आई एम श्योर आपने ये दोनों नाम तो सुने होंगे। इन्होंने काफ़ी बेहतरीन गाने हमें दिए हैं, और दोनों सिंगर की वॉइसेस आपने नोटिस की होगी बहुत ही अलग है, दोनों की एनर्जी बहुत ही अलग। और जहाँ रेमो, जैसे कि मैंने बताया कि एक वेस्टर्न रॉक स्टाइल में गाना पसंद करते हैं, वैसे पंजाबी जसपिंदर जी ये क्लासिकल पावरफुल वोकल्स के साथ ये प्रस्तुत करती हैं अपने सॉन्ग्स। तो आप खुद देखिए ये बेहतरीन सा कॉन्ट्रास्ट, एक वेस्टर्न एंड देन क्लासिकल एंड देन रीजनल लैंग्वेजेस का एक इन्फ्लुएंस, गोवन एंड पंजाबी, व्हाट अ मिक्सचर आई मीन टू से। एंड यही बेहतरीन जो कॉन्ट्रास्ट है उसने इस गाने को इतना यादगार बना दिया। कहते हैं ना कि कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं यादों में ट्रेंड करती हैं, वैसे ही ये रोमांटिक प्लेलिस्ट की जान और वो आवाज़ जो इंस्टेंटली हमारा मूड लिफ्ट करती है। क्या आप सुनने के लिए तैयार है वो गाना? आई एम श्योर ये आप लोगों का पसंदीदा गाना तो ज़रूर होगा, और हम वेट कर रहे हैं, यू नो हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मानसून आए, मानसून में ये गाने तो ज़रूर बजते हैं। तो इसीलिए खास ये प्लेलिस्ट में आज आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इन्जॉय कीजिएगा। आपके लिए जो सेट्स पर श्वेता ने ये शेयर किया है आपके लिए ये प्लेलिस्ट, खूबसूरत सा ट्रैक, दिस सॉन्ग ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जिनका काम है सच को हूबहू आप तक पहुंचाना,
5: जिनकी कलम से निकले शब्द बनते हैं जनता की आवाज,
4: जो दिन के 24 घंटे रहते हैं सजग हर एक खबर के लिए,
5: उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे हम। कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में
4: हर बुधवार शाम 5:30 विविध भारती 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर,
5: और हर गुरुवार शाम 5:30 FM रेनबो 100.7 पर।
4: पत्रकार से संवाद।

श्रोताओं नमस्कार, आपका बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। और जैसा आपको पता ही है कि हर सप्ताह हम किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे पत्रकारिता से संबंधित व्यक्ति से बात करते हैं और जो उनके जीवन का जो अनुभव है, जो उनकी जीवन यात्रा है, जो उनकी पत्रकारिता का जो निचोड़ है और जो उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनसे हम सबक ले सकें, जिनसे हम प्रेरणा ले सकें, ढेर सारी ऐसी बातें आज हम मेहमान से सीखेंगे। और आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रहीश सिंह। और डॉक्टर रहीश सिंह के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, विगत कई वर्षों से ये शिक्षा के क्षेत्र में भी थे, लगातार पत्रकारिता भी कर रहे थे और आज वो कई पुस्तकों की रचना कर रहे हैं, कई पुस्तकें लिख रहे हैं और लगातार

0: आर पत्रकारिता की विधा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू
2: सर। हम जब कार्यक्रम की बात करते हैं, विशेष करके कि जब हम किसी यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई?
1: हमारा जो गृह जनपद है वो लखीमपुर खीरी है
2: जी,
1: और मैं वही प्राथमिक पाठशाला अपने गाँव की बहादुरपुर विकास खंड बेहजम पड़ता है, और कुछ मेरी ननिहाल में हुई, मोहम्मदी के पास गाँव है, तो प्राइमरी वहाँ से पढ़ा, जूनियर बेहजम हाई स्कूल पढ़ा, फिर लखीमपुर आ गया इंटरमीडिएट कॉलेज धर्मसभा कॉलेज में, वहां से फिर मैं लखनऊ आ गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो शिक्षा बहुत घूम घाम के नहीं, सीधी रेखा में चली है।
2: में चली जी। तो कैसे आपने ये डिसाइड किया कि हम शिक्षक बनेंगे या हम लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे आपकी रुचि भी है और हमने कई वर्षों में देखा भी कि आप लगातार शिक्षित करते रहे लोगों को।
1: देखिए, अगर ग्रामीण परिवेश को उस कालखंड में देखते जब हम बड़े हो रहे थे, दो नौकरियां सबसे पसंदीदा होती थी खास करके हम लोगों के परिवारों में, एक दरोगा की और एक इंटरमीडिएट के शिक्षक। तो मैंने यहाँ करके एमएससी किया, बीएड किया, और बीएड के बाद सोचा नौकरी करेंगे, मिली भी तो वो टीजीटी की मिली, पीजीटी नहीं मिली तो मैंने छोड़ दी। तो अब खुला आसमान था, उसी दौर में आया, हमारे कुछ मित्रों ने कहा आप सिविल सर्विसेज दीजिए, वो देने लगा, तो उसके समानांतर मैंने हिस्ट्री से जो है वो पीजी कर लिया सेकेंड, और बाद में पीएचडी कर लिया। तत्पश्चात हमारे एक छोटे भाई की तरह मित्र रहे और वो इस समय आईपीएस हैं, तो एक संस्थान ओपन हुआ एकेडमिशियंस आईएएस, और वो मेरे पीछे पड़े कि आप पढ़ाएं। तो मैंने कहा कि यार देखो, नंबर पा लेना किसी भी एग्जाम में अलग बात होती है, लेकिन शिक्षा देना और उसको सही से एक दिशा निर्देश देना किसी छात्र को, ये दूसरी बात होती है। तो मैं पारंगत नहीं हूँ उस विषय में, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब वो पुश करते रहे, उन्होंने ही वास्तव में मुझे भाषा का और लिखने का, वो मुझसे छोटे थे लेकिन मेरी जिंदगी में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही, तो ये मेरी उपलब्धि ज्यादा पड़ी रही।
2: आपने इतिहास को चित्रित कर पढ़ाया, ना कि वो रटते रहे।
1: हाँ हाँ, वो शायद एमएससी मैथ्स का या मेरी साइंस बैकग्राउंड का इम्पैक्ट था कि वहाँ सब कुछ फॉर्मुलेशन पे चलता था।
2: जी जी,
1: वो चला।
2: किताबों का भी आपका जिक्र होता है, कई किताबें आपकी हैं, खासकर इतिहास की हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस की हैं, कैसा अनुभव रहा किताबों के साथ?
1: जैसे शुरुआत में एक चीज आई थी, मैं देखता था कि लोग किताब लिखते हैं तो फेमस हो जाते हैं, तो मुझे आया मैं भी लिखूं
2: जी।
1: तो मेरी मुलाकात हुई पद्मधर मालवीय जी थे, उनके सुपुत्र विवेक मालवीय से। तो बोले क्या लिख रहे हो? मैंने कहा पुस्तक लिख रहा हूँ। बोले कौन छापेगा? मैंने कहा नहीं पता। कहा मैं छाप दूं? तो मैंने कहा आप छाप दीजिए। तो पहली पुस्तक 1997 में छापी थी, दूसरी पुस्तक 98 में छपी, लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा या छात्रों का मेरे प्रति जो स्नेह है, मैंने सीधे उनके लिए किताबें लिखी। तो इस प्रकार से लेखकीय यात्रा चलती रही।
2: अगर बात की जाए कि भाई आप एक शिक्षक भी रहे, छात्र भी रहे, लेखक भी रहे, और तो कैसा अनुभव रहा तब की शिक्षा पद्धति, क्या विकास देखते हैं, क्या उसमें और बदलाव की आवश्यकता है?
1: देखिए, नो डाउट आज का जो युवा है उसके पास मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटी भी है, और हमारे जमाने के छात्र से ज्यादा तेज है
2: जी।
1: लेकिन कभी कभी आप देखिए कि आपको एक ट्रैक पकड़ना होता है, और उस ट्रैक पे आप जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी कर दें रेडियो का, तो आवाज भरभराने लगती है। तो तेज चलने की आवश्यकता नहीं होती है, एक सधी हुई आपकी स्पीड होनी चाहिए और उसका समग्र ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा कंपटीशन था तो वो उन्हीं सीमित पुस्तकों से पढ़े हुए लोगों से था, लेकिन आज उनके अगले कंपटीटर के पास भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसकी स्ट्रेटजी आपसे बेहतर है, तो आप फेल हो जाएंगे। तो आज के छात्र में जो मुझे एक चीज दिखी, बड़े किस्मत वालों को मिलता है आकाशवाणी
2: जी।
1: तो मैं चाहता हूं कि वो लिखना और पुस्तक को पढ़ना ना छोड़ें। पुस्तक जब बोलती है, उसका एक एक शब्द जब हमको शब्द चित्रात्मक ढंग से हम देखते हैं, तो हमारे दिमाग से लेकर हृदय तक बैठ जाता है, और वो जब हमारी कॉपी में एग्जामिनेशन हॉल में अभिव्यक्त होता है, तो एग्जामिनर नंबर देने के लिए विवश होता है। तो मैं ये मानता हूं, नोट्स अपने सेल्फ से बनाएं, उनको कई बार लिखें, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करें
2: जी,
1: उसके
2: जी,
1: मर्म को समझें कि विश्लेषण क्या होता है, विवेचन क्या होता है, समीक्षा क्या होती है, अनुरेखण क्या होता है, समालोचना क्या होती है।
2: जी, जी, जी,
1: मुझे लगता है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा है आज के छात्रों में।
2: तो श्रोताओं, आप अभी सुनी रहे हैं डॉक्टर रईस सिंह को, और आपने इतनी अच्छी बात कही कि भाई जो उसका विश्लेषण है हम शायद वो नहीं करते, या हम अधकचरा सा ज्ञान लेते हैं, तो आपकी सलाह भी है कि भाई हम किताबें पढ़ें, उसका सही रूप में उपयोग करें। सर, हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात कर ही रहे हैं, क्या गीत संगीत में भी कोई रुचि रही? कोई अपना पसंदीदा गीत जो हम आज अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से सुनवा सकें?
1: मुझे किशोर दा का एक बहुत अच्छा गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान।

0: बातें।
1: दोस्तों एक बार पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है और हम सर से बात कर ही रहे हैं, एक शिक्षक से पत्रकार की यात्रा कैसी रही, कैसे इधर आप पहुंच गए?
2: दरअसल जब मैंने सिविल सर्विसेज में मैं असफल हुआ, मैं कहीं पर कुछ बोल रहा था यूनिवर्सिटी के मालवीय हाल में, वहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे निरंकार सिंह जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लिखते क्यों नहीं हैं अखबार में, अच्छा बोलते हैं। तो मैंने कहा कि सर मेरे पिताजी वो छोटे किसान और मेरे जीवन में मेरे रिलेशन में कोई पत्रकार नहीं है। तो बोले कि देखो ये पॉलिटिक्स पे तो सब कोई लिखता है, यहाँ पर उसी का सजेशन लिया जाएगा जो वरिष्ठ होगा, आपका नहीं लिया जाएगा, आप ऐसे विषय अपनी पत्रकारिता के लिए चुनो जो अछूते हैं। उन्होंने कहा जैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय। धीरे धीरे मैं लेखन से घुसा, फिर मैंने डेस्क पे कुछ दिन काम किया, तो मैंने एक पत्रिका आती थी, वो मालिक उसके इंदौर में थे, दिल्ली से निकलती थी, उसमें काम किया। लेकिन मुझे बहुत रास इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मेरी सृजन क्षमता कम होने लगी थी जब डेस्क पे ज्यादा काम होता था, और मेरी अभिरुचि थी कि बहुत पहलुओं से उसको सोचे। जैसे मैं आपको बताऊं, लोग बहुत कम बिलीव करेंगे, अभी भी 2014-15 का अगर वो अंक मैगजीन का उठाएंगे तो मैंने मोदी नॉमिक्स पहली बार मैंने यूज किया था, और वो यूज किस लिए किया था, क्योंकि पढ़ रहा था तो उसमें रीगनो थैचरा मिक्स एक शब्द छपा था, रीगन और थैचर की इकोनॉमी का। तो मैंने कहा कि मैं क्यों किसी बाहर का नाम लूं, हम उसका इंडियनाइजेशन करते, और उनकी अपनी एक शैली है विकास की, उनका अपना एक मॉडल है। कोई भी इशू आता था तुरंत वो कहते थे कि इस पे आप बताइए, आपके ही शैली पर स्टोरी जाएगी, और बीच में मेरा कमेंट छपा होता था करीब 100 से 150 शब्दों। मैं समझता हूँ अखबार की दुनिया ने, छात्रों की या शिक्षक की दुनिया ने मुझे एक शक्ति दी जो आज भी संबल मेरा बने हुए हैं, और अखबार की दुनिया ने मुझे इतना एनरिच किया अंतर्राष्ट्रीय विषय और आर्थिक विषयों से कि मैं छात्रों को और बेहतर बना सकूं, दे सकूं। तो ये दोनों जब अन्योन्याश्रित होकर के चले
1: जी,
2: तो
1: जी,
2: वो
1: जी।
2: मेरे लिए मुझे लगता था, मतलब जैसे नहीं रेनेशा में एक शब्द बोला जाता था मैन विद वर्टू, अ कंप्लीट मैन, उधर की ओर मुझे बढ़ने का एक अवसर मिल गया।
1: आपने डेस्क का जिक्र किया कि आपने डेस्क पे भी काम किया और भी कई विधाओं में आपने अखबार में लिखा, शब्द से वाक्य और वाक्य से आपने कहा कॉलम, ये सफर कैसे तय करते हैं, आप कैसे लिखते हैं?
2: आज के दिन पर तो देखिए अगर आप देखेंगे तो मैं मैक्सिमम विदेशी अखबार पढ़ता हूँ, मैं एक ग्रुप से जुड़ा हूँ, इनको ज्यादा पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ। लेकिन आप देखिए आज भी अगर डेस्क पे, क्योंकि पत्रकारिता का तात्पर्य क्या होता है, पहला होता है कि आप सूचना प्राप्त करें
1: जी,
2: ठीक, दूसरा होता है कि उसको एनालाइजेशन करें जी, और तीसरा होता है दें, सामान्य शब्दों में कहें टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, एंटरटेनमेंट। तो इंटरटेन वाला पार्ट आज के दौर में थोड़ा ज्यादा हो, इन्फॉर्म हम आपको तब कर सकते हैं जब हम पहले इन्फॉर्मेशन खुद जुटाए हों, उसको एनालिसिस की हो कि ये इन्फॉर्मेशन देने योग्य है कि नहीं है, दूसरा ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए लाभकारी है, ये पब्लिक के लिए लाभकारी है, सरकार के लिए लाभकारी है, क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता तो दोनों के बीच का सेतु है, हमें सरकार को भी बताना है कि ये यहाँ प्रॉब्लम है, और हमें जनता को भी बताना है कि सरकार ने आपके लिए ये किया है और आप इसको ऐसे करिए। तो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम आप देखिए बहुत कमजोर हो गया, पत्रकार भी जब गूगल से देख करके खबर लिखने लगे तो फिर ये, मतलब मेरे दृष्टि से तो ये पतन है। दूसरा क्या है, टू एजुकेट, जब हम ही इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं रखते, हमने यही एक किताब पढ़ी नहीं और हम किसी को पढ़ाने बैठ जाएं, तो फिर तो ये अनएथिकल हो गया ना, और जहां ये इनकम्प्लीट और अनएथिकल आ जाता है तो शेष क्या बचता है, इंटरटेनमेंट, चिड़ियाघर से सुन ले। तो मेरा मानना है कि आज की मेधा और आज का जो टेक्निकल जो रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं कि पत्रकार जो नए आते हैं वो बहुत कुछ करना

0: चाहते हैं, बस उनको गाइड करने की, उनको एक मार्गदर्शन देने की और उनको एक फलक देने की आवश्यकता है।
1: आपने सूचनाओं का और विश्लेषण का जिक्र किया कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसे एनालिसिस करते हैं कि क्या ये देने लायक है या नहीं। आजकल हम देखते हैं कि ढेर सारा ऐसा सोशल मीडिया का संसार है जहां ढेर सारी ऐसी खबरें आती हैं, ढेर सारी ऐसी न्यूज आती है, कैसे उसका परीक्षण करते हैं कि ये सत्य है और कैसे उसे जो लोग हैं उन तक वो बातें पहुंचाते हैं या परोसते हैं उस न्यूज को, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं और कैसे समाहित करते हैं।
0: अब तो देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, उनमें अगर आप यूज किया, डाल दिया कि यूपी गवर्नमेंट, तो जितनी पॉजिटिव और जितनी नेगेटिव खबरें हैं वो आपको निकाल लाएगा, सोशल मीडिया से भी ढूंढ लाएगा, प्रिंट मीडिया से भी ढूंढ लाएगा। तो जैसे वो आया कि भाई ये पॉजिटिव खबर है तो वो एक रिपोर्ट बना के चली गई, ये नेगेटिव खबर है तो जो नेगेटिव खबर जाती है उसको पहले काउंटर चेक कर लीजिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की छपी है तो वास्तव में ऐसा है कि ये फेक है, तो वहां के जिलाधिकारी से या उनके सूचना अधिकारी को भेज दिया गया, भाई इसको कंफर्म करो, अगर वो फेक है तो फिर उस पर फेक मोहर लग जाए, और अगर वो फेक नहीं है, कोई ऐसी घटना हुई है, तो शासन उस पर संज्ञान ले लेता है। तो वो एक हर जगह, हर गवर्नमेंट में, हर डिपार्टमेंट में इस तरह का है कि सूचनाओं को फिल्टर करो, जहां उसको पहुंचाना है पॉजिटिव भी पहुंचाओ। भाई सरकार अगर काम कर रही है तो मुझे लगता है वह भी एक सराहना करनी चाहिए कि सरकार ने काम किया है। अगर कोई ऐसी घटना हुई या कोई खबर ऐसी है जो नहीं संज्ञान में आई, पहुंचाई जानी चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई उचित हो सके। तो दोनों पक्ष होते हैं और दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, खास करके तंत्र को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज जो है वो एक ग्रे एरिया भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही कोई नहीं पूछ सकता और कर सकता है। तो यही होता है,
1: मतलब विश्लेषण करिए और सही और गलत दोनों को समझते हुए।
0: बिल्कुल।
1: कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी यात्रा जिसे आप समझते हो कि पत्रकारिता जब आपने की तो वो आपको करियर की संतुष्टि दे जाए, या बहुत बार हम कहते हैं कि हम जिस काम को कर रहे हैं हमें बहुत मजा आया, या हमें लगा कि हमने शायद इसमें करियर बनाकर खुद को फील कराया कि मैंने बहुत बेहतर काम किया है।
0: देखिए कभी कभार क्या होता है कि 22 का चुनाव था
1: जी,
0: मैं गोरखपुर गया था, आगे थोड़ा बढ़ा वनटांगिया गांव था, उससे पहले मैंने नहीं देखा था, तिकुनिया नंबर 3 उस, तो मेरे साथ एक बच्ची थी, मैंने कहा कि इससे तुम बात करो, कि महिला थी, दुर्गावती उनका नाम था, उनसे पूछा गया कि आपको क्या मिला और पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, तो उन्होंने जो शब्द बोले
1: जी,
0: हमें घर मिला, बिजली मिली, सड़क मिली, पानी मिला, तो बोले राशन में क्या मिला, तो सब बताया, कब मिला, किसने दिया, तो बोले बाबा ने दिया। तो आप जब ऐसे जगहों पर जाते हैं, मुझे याद है मैं झारखंड में गया था 2006 या 2007 का समय होगा, तो मुझे केवल समझना था कि वहां पर जो सिद्धू और कान्हू के गांव पर मैं रुका था, तो हम लोग एक स्कूल में रुके थे, वो स्कूल भी मिशनरियों का था, तो जैसे मान लिया कोई आया उससे पानी मांगा, पानी दे दो, वो ये नहीं बोलता था हम ला रहे हैं, हम जा रहे हैं ना, वो चुपचाप सर झुका के चला जाता और लेकर के थोड़ी देर पानी आ जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि, तो बोले कि कुछ नहीं बोलते हैं, तो मैंने कहा फिर इनकी आवाज कैसे सुनी जाती है, तो बोले कोई नहीं सुनता है। वहां से हम आकर के जो है, फिर मैंने एक स्टोरी अपनी मैगजीन में ही लिखी थी कि बिना आवाज के भी जो काम होता है वो कैसे बोलता है। तो मैं 7-8 दिन वहां रुक करके क्या क्या वो करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उनकी संवेदनाएं हैं, क्या स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति, मतलब बहुत खराब आर्थिक स्थिति में वो अपने अतिथि का ऐसा सत्कार कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं कर पाएगा
1: जी।
0: तो यही भारत को जिंदा रखे हैं, तंत्र तो चलाता है उसको, भारत की आत्मा यही लोग हैं। तो उस आत्मा को जब आप पढ़ते हैं, उस आत्मा को जब एक कैनवास पर आप उतारते हैं, उसका चित्रण करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी आत्माएं आपको बहुत साधुवाद दे रही हो, वो दिखे ना भले, अंदर से फील होता है। तो इस तरह की कुछ एक स्टोरी है, जैसे बस्तर में भी वो मुझे ले गए थे, वो ज्यादातर जल जंगल जमीन के लिए काम करते थे, तो मैं जानबूझ उनके साथ जाता था कि वो अपने आप चलता फिरता एक विश्वविद्यालय, इतना नॉलेज था उनको, तो उनसे सीखने के बहुत मिलता था। और उस समय वो कहते थे कि कैसे इनकी व्यवस्था को, इनको कैसे परिवर्तित करोगे, तो उसी पर काम करते थे। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी अपने जीवन में। बाकी तो ठीक है, कॉर्पोरेट को सब छापते हैं, आप कल किसी बहुत बड़े पद पर हो जाओ तो हम आपके लिए लिखने लगते हैं, तब उनको उस पहचान की जरूरत नहीं रह जाती है, खुद पहचान पा लिए हैं अपने कार्य और श्रम से। पहचान की जरूरत तब होती है जब वो नेपथ्य में होती।
1: आपने जिक्र किया 2004 का, 2006 का, पत्रकारिता है जो सकारात्मक बदलाव है, जो नकारात्मक बदलाव है, कैसे देखते हैं आप 2004 या 2000 के समय से आप 2026 तक की पत्रकारिता?
0: 2004-05 में देखिए पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता में जो एक ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उस बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब 24 आवर आपको चैनल चलाना है, तो अब दौड़ है
1: जी।

0: और मैं कहता हूं एक बड़ा अंग्रेजी का शब्द है लाइक अ जगरनाट, हिनाते हुए घोड़े हैं जिनकी आप लगाम पकड़े हैं, उन्हें खुद नहीं पता किधर जाना है। तो वर्क कम हो रहा है और उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया है वो अभी भी उसने अपने चेंज आवश्यकता अनुरूप किए हैं। आज भी आप खबर देखने के बाद फिर आते हैं कि नहीं अखबार सवेरे पढ़ेंगे, उसमें सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को। प्रिंट मीडिया ने अपने आप को कमोबेश बनाए रखा है और उसमें बहुत कोई ऐसी क्रिटिक करने की संभावनाएं नहीं होती हैं। बाकी थोड़ा सा तो जैसे जनरेशन जी का दौर है और उन्हें लगता है कि इनको ये भी चाहिए तो उन्हें देना ये व्यवस्था है, पाठक को ही पढ़ाने के लिए अखबार छप रहा है। लेकिन मुझे लगता है नहीं, उसकी आत्मा, मैं तब भी वही चीज लिखता था और अखबार तब भी पढ़ा जाता था, अखबार तब भी छाप रहा था, आज भी सारे हिंदी अखबार मुझे छापते हैं और मैं लिखता हूं और लोग पढ़ते हैं, मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास मेल आते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका पाठक भी अभी है वैसा ही, और अखबारों ने अपनी आत्मा को मारा नहीं है, उसने अपनी आत्मा को स्पंदित कर रखा है, जिंदा कर रखा है। हाँ ठीक है, स्पेस कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है ये अलग बात।
1: आपने स्पेस की बात की कि भाई स्पेस कितना मिलता है, आजकल इनपुट बहुत सारे मिल जाते हैं आप, क्योंकि हर आदमी के पास सोशल मीडिया है, फोन है, कंप्यूटर है, वो लगातार आपको सूचनाएं देते हैं। कैसे उस एक पेज में, या यूं कहें कि उस 12 13 पेज के उस अखबार में वो सारी सूचनाएं कैसे आप फिल करते हैं, कैसे ये अनुमान लगाते हैं शामिल करना इसे नहीं शामिल करना?
0: देखिए, अगर नो डाउट सोशल मीडिया आज के दौर में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही डायनामिक है और कहना चाहिए इंप्रेसिव। दुनिया में अगर आप देख लीजिए पॉलिटिकल बदलावों में या तमाम चीजों में इसने बड़ा, लेकिन अखबार की अपनी एक व्यवस्था होती है
1: जी।
0: उसने अगर सोशल मीडिया पर कोई खबर देखी तो वो सूत्र सोशल मीडिया को तो नहीं बनाएगा ना, फिर वो अपने रिपोर्टर को वहां भेज करके और उसको कंफर्म करेगा। नंबर वन, सोशल मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं बनती, लेकिन अखबार की जवाबदेही होती है। अगर वो गलत हो गई, सवेरे संपादक से पूछ दिया जाएगा कि भाई ये कैसे, तो वो एक काउंटर जो है वहां पर क्वेश्चन भी पूछेगा। अगर मान लिया कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो पुलिस से भी पूछेगा, वो जिलाधिकारी से भी पूछेगा कि कितने बजे हुआ था, कैसे हुआ था, वो पब्लिक से भी वहां पर पूछेगा। इसलिए उसका उस खबर की ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर के। तो इसलिए अखबार का स्पेस वो सबको फिल्टर करेगा। अगर उसने 1000 दिन भर में सोशल मीडिया देखें तो वो 5 पाएगा कि ऐसी है जो अखबार में स्थान देने योग्य है, तो उनको स्थान दे, शेष को वो छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्थान नहीं देता या सोशल मीडिया इररिलेवेंट हर जगह होती है, नहीं, वो रिलेवेंट है। लेकिन चूंकि जब खबरें बहुत हों तो ये आपके मस्तिष्क में भी एक विध्वंस पैदा करती हैं, क्योंकि आपको कूल रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है। कोविड के समय कितना पैनिक है, लोग मर रहे हैं तो पता लगा कोविड हो गया तो हम और डर रहे हैं, नहीं, उस समय तो हमको और साहस बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो चीजें तो बिल्कुल दिखानी नहीं, ये दिखाना था कि नहीं इतने ठीक हो रहे हैं, आप धैर्य रखिए, आप शांत रहिए। तो मीडिया और सोशल मीडिया में ये अंतर है। अखबार तब भी शांत रहे थे, तब भी पॉजिटिव खबर दी थी और आज भी वो एक पॉजिटिव खबर देते हैं, और मैं आज भी नंबर वन पे अखबार को ही रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक आधार भी रहा और मेरे जीवन में जो कुछ है जो पत्रकारिता का, वो अखबार का है, इसलिए भी मैं देता।
1: अब चूंकि आपका इतना बहुआयामी व्यक्तित्व है कि आप शिक्षक भी रहे, मेंटर भी रहे, आप अखबार में भी लिखते रहे, आपकी कई पुस्तकें भी हैं और विभिन्न विषयों पर भी हैं, और लगातार आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं, ढेर सारा ऐसा ज्ञान जैसे अखबारों के कॉलम के माध्यम से भी आप देते हैं, अपनी पूरी जीवन यात्रा को कैसे देखते हैं आप, जो हमारे श्रोताओं को अगर इसका निचोड़ बताना चाहें सकारात्मक पहलुओं के संदर्भ में, कि वो अपने जीवन में इसे कैसे शामिल करें, कैसे आपसे प्रेरणा लें, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो शामिल करके वो भी बेहतर बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अपना करियर बेहतर बना सकते हैं?
0: देखिए, जीवन में पढ़ना, तब सरकार किताब देती थी और किताबें महंगी कितनी थी, मतलब 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, फीस माफ होती थी। अच्छा, तब चूंकि सरकारी स्कूल थे तो बड़े से बड़े आदमी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं
1: जी,
0: तो कंपटीशन तो हमारा पढ़ाई से था। जब कर्ण के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं द्रोणाचार्य, वो कहता है कि मैं किस घर में पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन प्रतियोगिता करना आज मेरे हाथ में
1: जी।
0: तो हर स्टूडेंट के अंदर वो मेधा है, वो कंपटीशन में आ सकता है और दूसरे को कंपीट कर सकता है, आगे निकल सकता है। पहले उसको अपनी ऊर्जा को पहचानना होगा, दूसरों की बुराई करना, दूसरों में कमी देखना, उच्च और निम्न का ये एक जो तिरस्कृत भाव है त्यागना हो। दूसरा, मैं जब शिक्षण के तौर पर आया, मैंने कभी उसको व्यवसायिक नहीं किया, पर मेरा एक वहां बैठे हुए ऑफिस देखता था, एक रहता था सीधा निर्देश कि किसी बच्चे का पढ़ना इस बात के लिए नहीं रुकना चाहिए कि उसके पास फीस नहीं है
1: जी।
0: वो ना पढ़ना चाहे, वो शरारत करता है, भगा दो बाहर, लेकिन अगर फीस नहीं है। हाँ, एक बार पेरेंट्स आके कोई

0: कह दे मेरे पास नहीं, क्यों? इसकी मेधा कल कहां ले जा सकती? हो सकता है ईश्वर मुझे ही माध्यम बना रहा। तो जो अगर हेल्प करने आप योग्य हैं, मदद जरूर करिए, ताकि गिवन का जो आपको पुरस्कार मिलता है और जिन रूपों में मिलता है उसकी कहीं किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। देने में बहुत सुख है, अगर हम देने योग्य हैं तो हम जरूर दें। तीसरी चीज धन्यवाद या कृतज्ञता, हमें यहां तक लाए आप, ठीक है, आपने आपने जो देखा होगा अलग, लेकिन मैं तो मानता हूं कि ये इस प्लेटफॉर्म में पहली बार मैं जब आकाशवाणी में कार्यक्रम में आया था, भाषा पर मेरा था और मैंने तब पहली लाइन कही कि एक किताब पढ़ते हुए उसमें वो व्यक्ति कहता है कि अगर मुझे आवाज ही नहीं सुनाई देती तो कैसे पता चलता कि नक्कार खाने में तूती भी बजी है। तो ये शब्द अगर आप इनको बाहर नहीं भेजेंगे तो किसी को क्या पता कि हु आई एम। तो मुझे हर उस व्यक्ति की कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए जिसका मेरे जीवन में इतना सा भी पाठ रहा, और अगर हमने व्यक्त कर दी तो हमसे संसार में बड़ा कोई आदमी है ही नहीं। यही सब कुछ है। और अंतिम चीज जो है, अगर आप में नॉलेज है, आपके ज्ञान है, आप चीजों को जानते हैं, तो आप समाज को जरूर मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, कोई मांगता है कोई नहीं मांगता, आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, इससे किसी का नुकसान ना हो, किसी की आलोचना ना हो, लेकिन इसका भला हो, आप जरूर एक बार उसको बताएं। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझसे किसी और ने भी ये सवाल पूछ दिया था किसी कार्यक्रम में, अपने बारे में बताइए, मैंने कहा क्या बताऊं, मैं तो उस नदी की तरह हूं जिस घर में पैदा हुआ, माता पिता ने संस्कार दिया, उन्होंने अपने परिश्रम करके मुझे उस ढर्रे पे डाल दिया, तो मैं नदी की तरह बहता गया, मेरे साथ पत्थर भी जुड़ते गए, मेरे साथ पेड़ भी जुड़ते गए, सब कुछ, अभी भी बहाव में हूँ। तो उसकी तरह से मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे भी निर्मल बनाए रहे, मुझे भी समाहित करने का एक जो जज्बा है वो दिए रहे, और किसी के लिए किसी काम आ सकूं अंतिम दौर तक, अंतिम क्षण तक, ये सबसे बड़ी बात होगी। बाकी तो आप कितने बड़े भी व्यक्ति बन जाइए, आपकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। और ये अच्छी बात है कि मुझे जो मेरे मेंटोर्स मिले, जो मेरे गाइड मिले, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, मुझे लिखना सिखाया, मुझे अखबारों में छापा, वो सब निर्मल थे। और मजेदार बात, कोई मेरी जाति का नहीं था, कोई मेरे वर्ग का नहीं था, कोई मुझे पहचानता नहीं था, और सबने मुझे मदद की।
1: तो दोस्तों, अभी आप रईस सिंह जी को सुन रहे थे और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, विशेष करके कि हर आयाम पर आपने हमें बातें बताई। आप जब छात्र थे तब आप क्या दृष्टिकोण रख रहे थे, आप जब शिक्षक थे तब आप कैसे पढ़ाते थे, कैसे लोगों को शिक्षित करते थे, खासकर आप पत्रकार के तौर पर भी वो सारे सूचनाएं संप्रेषित करते थे। अभी जब हमने ये बात की कि भाई आपने जो जीवन का है वो निचोड़ क्या आपने पाया, तो आपने भी हमारे श्रोताओं को बताया कि भाई मदद करते रहें, काम करते रहें, और आपके पास जो भी कुछ ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद सर।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप रईस सिंह जी को सुनकर प्रसन्न हुए होंगे और जो आपने बातें बताई हैं उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। हम पुनः अगले अंक में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के नगर विकास एवं मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन चार के भसौरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशन FCTS प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए के लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर में नियमित रूप से कूड़े का निस्तारण किया जाए। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इस बार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक या नकल की कोई घटना सामने नहीं आई। आज अयोध्या पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। सर्किट हाउस में अयोध्या महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने

0: माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर नगर के विकास कार्यों पर चर्चा की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सके। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य संघ विशिष्ट डिजिटल प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और प्रतियोगियों, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी, शासन प्रक्रियाओं और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजनाएं बनाने को सक्षम बनाता है। ईद उल अजहा का त्यौहार बरेली में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह सहित शहर की सभी मस्जिदों में सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन के तहत दो शिफ्टों में ईद की नमाज अदा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शहर में पर्याप्त पुलिस बल, लगातार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन उस दिन नीट परीक्षा होने के कारण अब उसे 29 जून को आयोजित किया जाएगा। आयोग की परीक्षा नियंत्रण ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे, जिसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

वेलकम बैक दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शहरी नवाब के लखनऊ। लखनऊ के लोगों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल, जी हाँ, 107 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है। और ये वक्त कितना हो रहा है, शाम के 6:12, जी शाम के 6:12 हो रहे हैं और मैं हाजिर हूँ प्रोग्राम शामी अवध लेकर। ये वक्त होता है जब आप इंजॉय करते हैं हमारा शो, हमारा प्रोग्राम शामी अवध। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त श्वेता राजवंशी इस घंटे एक बार फिर से आपकी खिदमत में आपके साथ रहूंगी और स्वागत करती हूँ फिर से आपको और आपके इस फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है शामे अवध, जहां लखनऊ का दिल धड़कता है। जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम में हम हर तरीके की बातें करते हैं, हम आपको काफ़ी अपडेट्स देते हैं, काफ़ी इंफोटेनमेंट से भरा हुआ प्रोग्राम होता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ तहजीब भी है, त्यौहार भी, इवेंट्स भी और ट्रैफिक भी। जी हाँ, यहाँ हम शेयर करते हैं आपसे हमारे शहर की मेजर सिटी हैपनिंग्स, इवेंट अपडेट्स, एंड इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये है शहर रौनक। यार चल गया रहा है हमारे शहर लखनऊ में। हाँ जी, बात होगी तमाम अपडेट्स की, उससे पहले लेट्स एंजॉय सम सॉन्ग्स, सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स जो मैंने आपके लिए क्यू करके रखे हैं। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM श्वेता के साथ। ऑलराइट, दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली फॉर यू।

जी इसी खूबसूरत से गाने के साथ मैं आपको ईद मुबारक कहती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे विशेज और मेरा प्यार आप सब तक पहुँचे और 100.7 FM के लिसनर्स तक हमारा ढेर सारा प्यार शामी अवद प्रोग्राम के थ्रू मेरा यानी श्वेता राजवंशी का पहुँचे. ओके, तो अगर अब हम बात करें, ये महीना चल रहा है मई का और मई का महीना तो लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि माना गया है कि इस महीने में गर्मी का रिकॉर्ड टूट ही जाता है. और अगर हम मौसम के फ़िलहाल इस वक्त लखनऊ ही नहीं नॉर्थ रीजन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पारा हाई हो रखा है और टेम्परेचर जहाँ सारे रिकॉर्ड तोड़ ही रहा है. तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगी और आपको ये कहूँगी कि पानी पीते रहिएगा क्योंकि ये ऑफिशियली ये हमारा मंत्र इस महीने तो ज़रूर होना चाहिए कि आपको हर 15-20 मिनट और खासकर आधे घंटे में आपको ध्यान रखना है कि क्या आपने पानी पिया, क्या आप हाइड्रेटेड हैं प्रॉपर. आपको अपना तो ख्याल रखना ही रखना है, साथ में अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीबडी अराउंड यू, आप सबका ध्यान रखिए. और लखनऊ में भाई गर्मी तो अपने पीक पर है और हीट वेव कंडीशन कंटिन्यू ही रहेगी. आप निकल रहे होंगे, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप घूमने फिरने थोड़ा मार्केट घूमने के लिए या फिर हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बिल्कुल मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी सलाह जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ये सब तो करिए. जाहिर सी बात है कि समर वेकेशन है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बड़ों की भी आज तो स्पेशल हॉलीडे है ही, तो ये जरूर आप इंजॉय करिए.

0: इतना ये इतिहाद जरूर बरती है कि थोड़ा सा अननेसेसरी जो आउटडोर एक्सपोजर होता है, स्पेशली जो दोपहर में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक, उसके बीच में आप थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि इस वक्त धूप भाई प्रचंड सीमा पे है, और अगर आपका हाइड्रेशन डाउन हुआ तो फिर वीकनेस होगी, एंड फिर अगर आपने अपना ध्यान नहीं दिया तो फिर भाई मूड किरकिरा हो जाता है, राइट? तो बिल्कुल पूरा ध्यान रखिए अपना, पानी पीते रहिए, कैप और सनग्लासेस भी साथ रखिए, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो भाई मैं आपको याद दिला दूं, गर्मी फिलहाल फुल एटीट्यूड में चल रही है, पर आपको अपना ध्यान रखना, और ध्यान तो हम भी आपका रख रहे हैं पूरी तरीके से। आपके लिए खूबसूरत से ट्रैक्स मैंने क्यों करके रखे हैं और उसे एंजॉय करेंगे, पर एक छोटे से एड ब्रेक के बाद, तो Stay tuned, 200.7 FM, Shweta ke saath.
1: Aap sun rahe hain 100.7 FM, Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
2: Personal loan offer.
3: फिर से block करता हूँ.
2: Free trip to Dubai.
3: ये भी block. कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम,
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
8: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
3: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
2: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
3: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
2: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
3: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
2: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
3: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
4: लखनऊ की
3: 100.7 FM रेनबो।

तो दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 6:34 और आप सुन रहे हैं 100.7 FM श्वेता के साथ। तो शाम का वक्त हो चला है और आप इंजॉय कर रहे हैं हमारा शो। मे बी आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? और बिल्कुल मुझे बेसब्री से इंतजार है आपसे बात करने का, जो अगले कुछ मिनटों में हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपसे जुड़ूंगी, बात करूंगी। तो आपको पता है आपको क्या करना है? तो फिलहाल तो हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं शाम ए अवध। हाँ जी, तो दोस्तों इवेंट्स की अगर मैं बात करूं आपको कि हमारे शहर में इस वक्त क्या खास चल रहा है लखनऊ में, तो कल्चरल वाइब फुल ऑन है। देखिए, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 29-30 मई को उत्तर प्रदेश दर्शन समिट एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये टूरिज्म, कल्चर और बिजनेस का एक बड़ा शोकेस होने वाला है। सो अगर आप एग्जीबिशन और नेटवर्किंग इवेंट्स पसंद करते हैं तो डेफिनेटली चेकआउट जरूर करें। और साथ ही साथ म्यूजिक लवर्स के लिए भी एक एक्साइटिंग अपडेट है, क्योंकि 30 मई को लखनऊ में सिंगर पैपो का लाइव कॉन्सर्ट भी प्लान्ड है। आई एम श्योर बहुतों ने टिकट्स बुक कर ली होगी, बहुत लोगों ने प्लान कर लिया होगा। बिल्कुल है ही इतने गजब के सिंगर। और भाई, लखनऊ के वाइब्स तो दिन पर दिन और बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई इस वक्त समर ब्रेक भी चल रहा है, इवेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बट साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है जो स्टूडेंट्स हैं, यस, इस वक्त स्टूडेंट्स अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। अब क्यों भाई, भला ऐसी क्या बात है? बिल्कुल, क्योंकि इसी वक्त यही टाइम होता है जब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोटिफिकेशंस, जो इस वक्त ये सीजन चल रहा है, इसी वक्त उनके एंट्रेंस फॉर्म्स, काउंसलिंग डेट्स और जितने भी एडमिट कार्ड के अपडेट्स होते हैं, वो इसी वक्त आपको रेगुलरली चेक करते रहते रहना होता है। ये टाइम होता है जब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, या आप कहाँ पे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, कहाँ अपनी स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। सो करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए रिसेंटली सिटी में काफ़ी एजुकेशन एंड करियर फेयर ऑर्गेनाइज हुए और अभी होते भी रहेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि आपको थोड़ा अपने आप को अपडेट रखना है, और साथ ही साथ कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन चेक करते रहना है कि आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, जैसा भी सब्जेक्ट है, आपको जो भी फील्ड परस्यू करना है, कोई भी स्ट्रीम, उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च करते रहिए और देखते रहिए क्या आपको कोई मदद चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए। तो बिल्कुल, बहुत ढेर सारे फेयर्स एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे शहर में, तो करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल, अगर अपना फ्यूचर प्लान मोड इस वक्त आपका ऑन है, सो दिस इज योर साइन टू स्टे अपडेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इस घंटे आप बने रहेंगे श्वेता राजवंशी के साथ। टाइम हो रहा है इस वक्त 6:36 और हम किधर बढ़ते हैं? हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर। मैं होप करती हूँ कि आपको ये गाने पसंद जरूर आ रहे होंगे। तो बिल्कुल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर, आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर, ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

वीकेंड वाइब्स तो ऑलरेडी सेट लग रहे हैं मुझे. इतने प्रोग्राम्स, इतने इवेंट्स हो रहे हैं हमारे शहर में, और साथ ही साथ जब आपको घूमना है, निकलना है, तो बात मेट्रो की हो जाए. सो मेट्रो कम्यूटर्स के लिए एक गुड न्यूज है कि सिटी का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर फ्यूचर एक्सपेंशन मोड में है, और अपकमिंग फेज में तो भाई ड्राइवरलेस ट्रेन का भी प्लान किया जा रहा है. भाई समर रश के चलते रेलवे स्टेशन की भी हम बात जरूर करते हैं. इस वक्त लोग बहुत ट्रैवल कर रहे होंगे, बाहर घूमने जा रहे होंगे, स्पेशली चारबाग और बादशाह नगर की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्राउड एक्सपेक्टेड है. जाहिर सी बात है इस वक्त लोग घूमने फिरने जा रहे हैं. अगर आपका भी ट्रैवल प्लान है तो फिर जरूर पहले, निकलने से पहले आप ट्रेन स्टेटस को जरूर चेक करें और प्लेटफॉर्म डिटेल्स भी पहले चेक करके ही निकलिए. जी तो आप सुन रहे हैं कुछ बेहतरीन ट्रैक्स, लगातार ये कारवां जारी है और मैंने आपके लिए और खूबसूरत गाने लगा के रखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स आपके रेडियो सेट्स पे, क्योंकि आप सुन रहे हैं कौन सा प्रोग्राम. जी बिल्कुल, शामे अवध, शामे अवध का टाइम हो रहा है और ये प्रोग्राम चल रहा है. यहाँ पे आप सुन रहे हैं बेहद खूबसूरत गाने, और इसी के साथ मैं श्वेता आपके लिए एक और गाना प्ले करने वाली हूँ. आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए शाम की चुस्कियों के साथ और सुनते रहिए 100.7 FM धड़कन लखनऊ की.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: तो चलिए इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ हमारा आज का प्रोग्राम शाम अवध को। इजाजत दीजिए मुझे श्वेता राजवंशी को। कुछ ही देर में हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम हेलो एफएम में। बने रहिए मेरे साथ। और बिल्कुल आपको पता है आपको क्या काम करना है, आपको नंबर घुमाने हैं और डायल करना है, मुझसे बात करनी है, अपनी फरमाइशें करनी है। और बिल्कुल मैं हूँ आपकी खिदमत में, आपके प्लेलिस्ट आपकी फरमाइश बजाऊंगी और आपके चाहने वालों तक पहुंचाऊंगी। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और कुछ ही देर में टॉप 10 न्यूज के बाद मैं लेके हाजिर हूँ हेलो एफएम। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू 100.7 एफएम स्टेशन ऑफ द नेशन।

नमस्कार, अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। इटावा में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 301वें जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि हमें गर्व है कि लोक माता अहिल्याबाई ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया है और सभी ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार कराकर आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को जीवित रखने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की क्रांतिकारी चेतना और संघर्षपूर्ण जीवन हमें सदैव राष्ट्रहित में समर्पण, साहस और अटूट संकल्प का अमूल्य संदेश देता रहेगा। प्रदेश के नगर विकास एवं मंत्री ए के शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसौरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन FCTS प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस प्लांट को प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। माफ कीजिएगा, इस दौरान महापौर सुषमा खरकवार भी मौजूद रहीं। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इस बार यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में करीबन 54 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक या नकल न होने के कारण कोई भी घटना सामने नहीं आई। आज अयोध्या पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश के सभी जनपदों में आज ईद अल अजहा का त्यौहार श्रद्धा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि सभी जनपदों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, सीतापुर, अयोध्या, फरुखाबाद, उन्नाव, चित्रकूट और इटावा सहित सभी जनपदों में लोगों ने निर्धारित स्थलों पर ही अपनी परंपराओं का निर्वाह कर त्यौहार मनाया। ईद उल अजहा का त्यौहार बरेली में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शहर में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियों और प्रवेश पत्र जारी करने का ऐलान किया। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट cuet.nta.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा और अयोध्या में राम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर कल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और आध्यात्मिक गुरु साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन उस दिन नीट परीक्षा होने के कारण ये परीक्षा अब 29 जून को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होते हैं। अगला समाचार बुलेटिन रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आपके रेडियो सेट्स पे ये अगले कुछ सॉन्ग्स जो बेहद खूबसूरत हैं और बहुतों के फेवरेट, ये शायद आपको उन लम्हों की याद दिला जाएं जो दो लोग एक ही ख्वाब देखते हुए सुनते हैं और देखते हैं जी। बिल्कुल टाइम हो रहा है 7:07 और प्रोग्राम चल रहा है हेलो FM। आपके साथ मैं बनी हुई हूँ श्वेता और मैं बनी रहूँगी रात के 8 तक और हम सुनते रहेंगे बेहतरीन गाने सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट चैनल 100.7 FM स्टेशन of the nation.

0: हाँ जी, तो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ यानी श्वेता की आवाज़। तो आपको पता है ना कि इस वक्त क्या होता है, आपको फ़ोन मिलाना होता है, डायल करना होता है हमें, और हम तक पहुंचानी होती है अपनी फरमाइश, और फिर हम काउंटडाउन शुरू करते हैं, आपके प्लेलिस्ट, आपके फेवरेट गाने हम प्ले करते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, हम उन्हें लाइन पे लेते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहती हैं। हेलो
1: हेलो मेरी प्यारी श्वेता मैम को प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग।
0: थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। आप कौन बोल रही हैं?
1: मैम रिंग बात कर
0: हाँ जी रिंकी, हाय।
1: के शहर जिला रायबरेली से।
0: वाव, आपने तो मेरी शाम बना दी, इतनी प्यार भरे अंदाज में आपने मुझे हेलो
1: मैम
0: बोला।
1: रही हैं क्योंकि कार्यक्रम बहुत अच्छा कर रही है मैम, और मैम आपसे फर्स्ट टाइम हमारी बात हो रही है
0: जी क्या बात है,
1: तो
0: पहली
1: मैम
0: बार
1: बड़ी
0: और
1: खुशी
0: पहली
1: हो रही
0: कॉलर।
1: है आपसे बात करके। मैम
0: हाँ जी जी तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मैम मूवी का नाम है मीरा का मोहन, गीत के बोल है तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, और मैम आज ईद है तो सभी भाइयों बहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम कुछ नाम लेना चाहेंगे
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: जी। मैम मेरे भाई हैं दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही, मेरी सिस्टर है पिंकी और पू, और क्षमा परवीन, साहिबान अंसारी, महक अंसारी, मोहम्मद फैज भाई, ममता और वकील अहमद भाई, बबलू यादव भाई और विनीत भाई तिवारी अंकल, और मैम बाकी जितने सारे श्रोता सुन रहे हैं उन सभी के लिए और मैम आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच, और आपके सभी भाइयों बहनों और सभी को ईद मुबारक, और आपके लिए आपकी फरमाइश आपके रेडियो सेट पर। कीप
1: जी
0: लिसनिंग
1: मैम
0: टू
1: नमस्ते, बाय बाय।
0: बाय, स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा।
1: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं। इस वर्ष में, इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7

0: जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज लखनऊ में जोन 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
1: लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं, उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
0: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
2: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे, इसका मेरा पूरा प्रयास है।
0: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
4: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा किसानों की आजीविका को बेहतर

0: स्वास्थ्य और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: तो बिल्कुल 7:30 हो रहे हैं और ये वक्त होता है प्रोग्राम हेलो एफएम का. मैं हूं श्वेता, एक बार फिर से आपके साथ, आपकी फरमाइश पूरी करने, आपका फोन अटेंड करने. तो भाई देर किस बात की है, और देर तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं. चलिए हम उनसे बात करते हैं. हेलो.
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग
1: जी. हम गुलफ्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं मालिका से.
0: हाय गुलफ्ता, आप कहाँ से बात करें बताइए.
1: जी हम संडीला से बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो हम अपने गांव के घर पर हैं.
0: अच्छा जी, देखिए आपके बात करने के अंदाज से मुझे याद आ गया था कि मैंने आपसे पहले भी बात की.
1: हेलो किया आपने, कहा आपसे बात हो चुकी है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी आवाज पहचान ली.
0: यही तो गुण है, यही तो बात है कि हम आवाज जरूर पहचान जाते हैं.
1: लेकिन मैम हम लोग भी बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी तो 12 मिनट से होल्ड थे.
0: बहुत बहुत शुक्रिया. बिल्कुल
1: जी मैम.
0: तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी, क्या फरमाइश है आपकी.
1: फिल्म का नाम है प्यार जिंदगी है.
0: ओके.
1: उसमें गाना है, मैं चाहता हूँ तुझे दिलो जान की तरह, तू छा गए हैं मुझे आसमान की तरह.
0: अच्छा, तो फिर भाई अब अपनी लिस्ट शेयर कर दीजिए, किस किस को शेयर करना चाहती हैं.
1: जी सबसे पहले आपको, आपने मेरी कॉल उठाई इसलिए
0: थैंक यू.
1: शमा परवीन है, साहिबा अंसारी है, साजिया अंसारी है, महक अंसारी है, निशा अंसारी है, ममता गौतम है, रोशनी रावत है, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को.
0: ऑल राइट, बिल्कुल.
1: जी मैम, आप बहुत दिनों के बाद आई हैं.
0: हाँ जी, आप पहचान गई, मैं आई हूँ कई दिनों के बाद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि
1: जब आप आई थी हमारी बात हुई थी, 2 बार बात हो चुकी है, 3री बार बात हो रही है आपसे.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये देखिए प्यार है, मोहब्बत है आपकी हमसे और हमारी आपसे, कि आपने हमें कॉल किया और हमने आपकी आवाज पहचान ली.
1: लेकिन बिजी डे है, लेकिन फिर भी हमने आप कॉल लगाई है.
0: बिल्कुल, आपको ईद की मुबारकबाद, ढेर सारी ढेर सारा प्यार,
1: बहुत बहुत मुबारकबाद.
0: बिल्कुल. तो आपके लिए मैं प्ले करना चाहूंगी आपका ये गाना, क्योंकि आपने भाई इतनी बेसब्री से इंतजार किया और इतना
1: जी इतना मिनट आज मैंने पहली बार इतना होल्ड किया.
0: नहीं, ये आपका प्यार है और भाई आपका जो रिक्वेस्ट है हमारे सराखों पर, आपके लिए ये प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर एंजॉय कीजिएगा.
1: ओके.

0: बिल्कुल, मिले हैं तो नहीं बिछड़ेंगे हम। तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी फरमाइश और आपकी ख्वाहिश पूरी हो तो नंबर डायल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक कॉलर, चलिए जानते हैं उनके बारे में, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: हाय,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम मेहक अंसारी, उदनापुर कोरैया जिला सीतापुर से।
0: ओके, तो बताइए भाई, आज आपकी फरमाइश क्या है, हम पूरी करेंगे आपके लिए।
1: हमारी फरमाइश सौदागर मूवी का टाइटल सॉन्ग।
0: ओके, ये देखिए, गाना बजाने से पहले आपको ईद की बेहद शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो।
1: जी मैम, आपको भी।
0: थैंक यू सो मच।
1: हम कुछ लोगों के नाम ले लें।
0: हाँ बिल्कुल,

0: लीजिए।
1: साहिबा जी, साजिया अंसारी जी है, रिंकी पिंकी, वकील भाई, समाज परवीन जी, गुलस्ता जी, और हमारे घर में हमारी अप्पी आई है ईद करने के लिए।
0: क्या
1: हमारी
0: बात,
1: अम्मी है और हमारे भाई जान जिसान,
0: ओके,
1: हमारे हमारे अब्बू, हमारा भाई मोहम्मद सादाब
0: जी,
1: हमारे भांजे दो बहुत क्यूट है मैम वो।
0: अरे वाह, क्या बात है, आपके पूरे परिवार को बहुत ही बहुत मुबारक हो ईद की। और आप सबके लिए ये प्यारा सा गाना आपकी फरमाइश मैं प्ले करने जा रही हूँ, ओनली ऑन 100.7 FM आपके रेडियो सच पर। चलिए एंजॉय कीजिएगा, बाय बाय।

0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सौदागर। और भाई अभी किसी ने मुझे फिर से कॉल किया है और कॉलर्स तो लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मगर मैं आज इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज फीमेल कॉलर्स बहुत ज़्यादा रीच आउट कर रही हैं और मेरे साथ एक और कॉलेज जुड़ चुकी हैं जिन्होंने कॉल किया है और उन्होंने अपनी फरमाइश भाई बताई है और वो चाहती हैं कि वो सॉन्ग प्ले हो शायद उनकी मदर के लिए। तो चलिए हम और ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से। हाय,
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, कैसी हो आप?
0: वेरी गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात हो गई तो पूछिए मत कितनी अच्छी हो गई हूँ।
0: क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आपके चेहरे पे खुशी लाई और आपकी ये फरमाइश पूरी कर पा रही हूँ।
1: हाँ जी मैम, मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ आज।
0: अच्छा, तो ये पहली बार कॉल लगने की खुशी है?
1: आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: क्या बात है, देखिए पहली बार आपने कॉल किया और पहली बार आपकी बात हो रही है मुझसे। आपको मेरा नाम पता है?
1: जी मैम बिल्कुल पता है।
0: क्या नाम है? बिल्कुल सही,
1: श्वेता राजवंशी सुन रही हूँ।
0: क्या बात है, तो आप हमारे रेगुलर लिसनर्स में से हैं।
1: हाँ जी,
0: बहुत खुशी हुई।
1: मेरा नाम है रोशनी रावत, ग्रामा पोस्ट बमना, कैंटीन सभी को जिला उन्नाव और अभी मैं प्रोग्राम चंडीगढ़ से सुन रही हूँ आपका।
0: अरे वाह राखी रावत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके, और आप चंडीगढ़ से सुन रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है जान के। आपकी मम्मी भी सुन रही होंगी शायद, ये गाना आपने उन्हीं को डेडिकेट किया है।
1: हाँ जी मैम।
0: तो पूरी फैमिली सुनती है?
1: हाँ जी, और जितने भी लोग सुन रहे सभी को और कुछ नाम लेना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शुरू हो जाइए।
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट रहेगा ये सॉन्ग।
0: थैंक यू।
1: और हमारी बबीता रावत जी है जो गुसाईगंज लखनऊ से सुन रही है।
0: ओके।
1: और नीलू शर्मा दीदी है जो रूपपुर चंदेला से सुन रही है। और अभी हमारी गुलक्ता सिद्दीकी दीदी से कॉल लगी थी, उनको भी डेडिकेट है।
0: क्या बात है, आप सबकी दोस्ती है।
1: हाँ जी,
0: बहुत अच्छी बात है
1: जी। और बताइए मैम, और आपका क्या लगे सुन रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है।
0: गाने आपको पसंद आ रहे हैं?
1: हाँ जी।
0: ओके, तो ये प्लेलिस्ट मैंने ऐसे ही सोच के लगाई है कि भाई, और मैंने साथ ही साथ उन सिंगर्स के बारे में बात की कि गाने तो भाई सुपर हिट है, हम जरूर सुनते हैं हमेशा उन गानों को, पर कुछ सिंगर्स के बारे में हम नहीं जानते क्योंकि वो मेन स्ट्रीम नहीं है, बट आवाज उनकी एक पहचान बना के गई है।
1: और रेडियो पे गाना सुनने की बात ही अलग होती है, ऐसे तो हम रोज सुनते ही है लेकिन बिल्कुल जब हम सुनते हैं रेडियो से तो उसकी अलग ही होती है,
0: एक अलग ही चार्म है रेडियो का। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो बिल्कुल आप
1: हमारे ऑफिस में मैम पूरा दिन चलता रहता है ऐसा रेनबो लखनऊ।
0: वाह, अरे वाह, काबिले तारीफ, आपके ऑफिस में हर वक्त चलता है एफएम रेनबो, हमें बहुत खुशी हुई और हमारे टीम में भी सबको जान के बहुत खुशी होगी। इसी तरीके से आप अपना प्यार बरसाते रहिए, सुनते रहिए हमें हमेशा और हम आपके लिए फरमाइशें लाते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे। तो आपके लिए ये सॉन्ग आपके रेडियो सेट्स पर आपकी मम्मी के लिए, एंजॉय कीजिए। All right.
1: धन्यवाद मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय, सी यू।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: बिल्कुल, मुझे तुम याद आते हो और हमें आप याद आते हैं हर वक्त, तो मुझे भी पता है, हमें भी पता है कि आपको हम याद आते हैं। हाँ जी, तो इसी याद के सिलसिले में ना मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं भाई। ये मतलब बहुत ही प्यार करती हैं, बेहद प्यारी सी कॉलर हैं और इन्होंने हमसे बात की और ये चाहती हैं कि इनकी फरमाइश जरूर पूरी हो। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं इनकी ओर, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो।

0: अस्सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, अपना बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत बढ़िया। भाई सबको अपना नाम तो बताइए।
0: आपको ईद मुबारक हो।
1: ईद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन सबको दे दीजिए जल्दी से। ओके और अभी एक छोटी सी भी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची थी जो आपके पीछे से छुप छुप के बात कर रही थी। जी उसको भी ढेर सारा प्यार। और आपकी फरमाइश जो है मैंने क्यू करके रखी है, आप किस किस को सुनाना चाहेंगी गाना?
0: मैम सबसे पहले आप,
1: बेहद शुक्रिया। हाँ जी,
0: आसिफ भाई है, मोहम्मद फैज भाई है, वकील अहमद भाई है, बाबू अंसारी भाई है, तालिब अंसारी भाई है, जावेद अख्तर भाई है, सत्यन कुमार भाई है, समा परवीन अंसारी अपनी है, गुलस्ता सिद्दीकी अपनी है, महक अंसारी है, साजी अंसारी है, रिंकी पिंकी है, निशा अंसारी है।
1: जी बहुत लंबी लिस्ट है,
0: सुनने वाले को भी सुनाना चाहते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपके सभी परिवार में सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपकी बात उनसे करा पाई।
0: मैम हमारा गाना मैम कोई बात नहीं, बताइए कि हमारी छोटी बहन से बात कर लीजिए।
1: अच्छा अच्छा, बात करा दीजिए जल्दी से।
0: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम बेटा,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आपकी बहुत प्यारी आवाज है।
0: जी थैंक यू।
1: श्योर आप भी बहुत प्यारी हैं। जी तो मैंने
0: भी बहुत प्यारी आवाज है।
1: अरे शुक्रिया। तो चलिए मैंने आपका जो सॉन्ग है ना प्यारा सा, वो मैंने लगा के रखा है और मैं चाहती हूँ आपके पूरी फैमिली के साथ आप इंजॉय करें और इसी तरीके से अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहें। आप मुझे पता है आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं और बहुत प्यार से सुनती हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप तक ये गाना पहुँचाती हूँ, ठीक है? आपके रेडियो सेट्स पर ओनली ऑन 100.7 FM। थैंक यू फॉर कॉलिंग, टेक केयर, बाय बाय। ऑल राइट तो कहते हैं ना कि ये क्या अजब है, सब अपने आप में गुम है, जबां मिली है मगर हम जबां नहीं मिलता, तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद है उसकी वहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। सभी ने सुना होगा, इतनी खूबसूरत लाइनें हैं। तो भाई आज की शाम अगर आपको किसी अपने की याद दिला गई हो और हमारे इतने खूबसूरत ट्रैक अगर आपको पसंद आए हो तो शायद दिल ने फिर से आपको हमारी याद दिलाई और हम तक ये वादा जो होता है ना कि पहुंचने का, हमें पहुंचाने का, ये पूरा हुआ। तो फिर अब हम इसी इंतज़ार में आप से फिर मिलने के लिए जल्दी से आएंगे। और मैं श्वेता आपसे इस प्रोग्राम में इजाज़त देती हूँ, आपको छोड़ जाती हूँ इस प्यारे से गाने के साथ। और भाई 8 बजे से जो नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आने वाली हैं वो खूबसूरत सी इंसान, वो खूबसूरत सी आरजे आ चुकी हैं, आपसे बहुत जल्दी जुड़ेंगी उनकी खूबसूरत आवाज़। तो चलिए और सुनते रहिए और बने रहिए 100.7 ओनली ऑन लखनऊ की धड़कन। ओके चलिए श्वेता को करिए बाय एंड एंजॉय।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर कल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और आध्यात्मिक गुरु साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी 3,000 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं का समागम होगा। उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनके परिवार के अनुसार उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें आज साय भोपाल टॉकीज के पास स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आज के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। UPSTF ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को आगरा के शिवपुरी कॉलोनी से करीब 1,22,00,000 रुपए के मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। एसटीएफ को काफी दिनों से आगरा व आसपास के जनपदों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी। प्रदेश की पॉलिटेक्निक में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली UPJEEP 2026 परीक्षा का आयोजन 2 से 9 जून तक किया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 10 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
3: शाम होने को है।
2: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

आदाब, नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग। शाम के 8:06 और ठीक 55 सेकंड्स हो रहे हैं। दिन भर की मसरूफियत के बाद उम्मीद है कि अब आप अपने आशियाने में अपनों के बीच सुकून के कुछ पल बिता रहे होंगे। वैसे भी आज का दिन है बड़ा खास, ईद उल अजहा का त्योहार, यानी कि अपनों से मिलने जुलने और उनके साथ खुशियां बांटने का दिन। तो ऐसे में अगर हम और आप भी मिल जाएं, तो फिर बस कहने ही क्या। तो चलिए अपनी मुलाकात को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह। जी हाँ, वो आवाज जिसमें शायरी की नमी, अल्फाज की तहजीब और एहसासों की गर्माहट भी है। बात ऐसी हो जो दिल से निकल कर रह जाए और जो कोई शेर भी कह दे तो अमर हो जाए। तो चलिए सुरों और अल्फाज के इसे खूबसूरत आबशार में एक साथ भीगने का सिलसिला शुरू करते हैं।

0: अच्छा, कभी कभी मुलाकात कुछ ऐसी क्यों होती है कि बहुत वक्त बिताने के बाद भी लगता है कि दिल नहीं भरा। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आप घंटों बातें करते रहे लेकिन फिर भी लगता है कि जो बात कहनी थी वो तो लफ्जों तक, वो लफ्ज मिल ही नहीं पाए, वो बात होठों तक पहुंच ही नहीं पाई। कभी महसूस किया है आपने भी कुछ ऐसा?
1: नजीब है।
0: बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी।

यूं तो इंसान जिंदगी में जाने क्या क्या चाहता है, ऐसे थोड़ी ना कहा गया है कि हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। फिर भी जाने क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक की खुशी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, बस यही काफी लगती है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। महसूस किया है क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा? धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो। 8:18 और ठीक 18 सेकंड्स, आप हैं आबशार में आज ज्योति मिश्रा के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

ख्वाब बनकर मेरी आंखों में समा जाता है, मेरी सोई हुई रातों को जगा जाता है। जब भी मैं हाथ उठाती हूँ दुआ की खातिर, वो खुदा बन के मेरे सामने आ जाता है। मैंने उसके लिए दुनिया से बगावत की है, मैंने उसके लिए दुनिया से बगावत की है। वो मुझे छोड़ के हर रोज चला जाता है। अब तो हैरा भी होती नहीं आंखें मेरी, अब तो हैरा

भी होती नहीं आंखें मेरी, जो भी आता है वो आईना दिखा जाता है। उसको मालूम नहीं रात का आलम असमा, शाम होते ही मेरे घर से चला जाता है। यकीन है, भरोसा है, तभी तो है रिश्ता, है ना? जब आपको पता हो कि आपके बिना कहे सामने वाला सब समझ लेगा, तभी तो बात में मजा है ना? कुछ ऐसी ही अनकही अनसुनी बातें आज कर रहे हैं हम आबशार में। आठ बजकर 26 मिनट और ठीक 45 सेकंड्स। ये खूबसूरत गजलें और आपका मेरा साथ FM रेनबो पर, प्रोग्राम आबशार में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: धीरे धीरे जिसे इस दिल में बसाया मैंने, धीरे धीरे जिसे इस दिल में बसाया मैंने, उसकी खुशबू को जमाने से चुराया मैंने। सोचती हूँ जमाने के हवाले कर दूँ, सोचती हूँ जमाने के हवाले कर दूँ, मुद्दतों से जिसे दुनिया से छिपाया मैंने। एक आवाज पे

दौड़ा हुआ आ जाएगा, एक आवाज पे दौड़ा हुआ आ जाएगा, मुझे मालूम था फिर भी ना बुलाया मैंने, फिर भी ना बुलाया मैंने।

8:49 हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप शार की इन गजलों के साथ ईद उल अजहा की ये शाम थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और मुलायम जरूर बनी होगी। आपसे इजाजत लेना चाहूंगी इस प्रोग्राम से, बस थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या के लिए, और समाचार संध्या के बाद फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिएगा एफएम रेनबो से, जहां पर ज्योति आपका बेसब्री से इंतजार करती मिलेगी।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की।

0: प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
2: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
2: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
2: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
0: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

madame. Assalamu alaikum, wa alaikum, bahati kalakena jete, good evening. 100.7 FM Rainbow par shuru ho chuka hai sabse dhamakedar musical hangout, pop time. मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योति और यस घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं रादर करेक्ट टाइम इज 9:02 एंड 14 सेकंड और आज की रात ऐसे भी बड़ी खास है ईद उल अज़हर का ये त्योहार है और हमारे लिसनर्स ने इसे पूरी तरह से मनाया होगा मुझे पूरा यकीन है Yes, अब तक हमारे लखनऊ के नवाबों ने सवैयों से लेकर एक से बढ़कर एक लजीज पकवानों पर पूरी तरह से हाथ साफ कर दिया होगा है ना पेट बिल्कुल फुल होगा और जब पेट फुल होता है ना तो मन कहता है कि अब भाई थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस तो चलिए अब कुछ कड़क म्यूजिक हो जाए तो भाई जिन्होंने आज खूब जम कर डट कर खाया है उनकी कैलोरीज को बर्न करने जिन्हें ये लग रहा है कि अभी भी मेहमान आ रहे होंगे तो उनकी तैयारी में मदद करने के लिए आ गई है आपकी अपनी दोस्त ज्योति यस यस यस अगले एक घंटे तक थिरकने वाले हैं आप मेरे साथ तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं हम और आप मिलकर एक साथ याद दिला दो प्रोग्राम का नाम पॉप टाइम मेरा नाम ज्योति और चैनल आपका वही पुराना पसंदीदा जिसका नाम है FM रेनबो

तो जमकर खाने के बाद और दोस्तों के संग धूम मचाने के बाद अब थोड़ा सा हैव मर्सी अपने आप पर अब थोड़ा सा घूमने फिरने थिरकने के लिए निकल जाइए एंड यस इफ यू फील आपके घर में अभी भी मेहमान आए हुए हैं या आ सकते हैं तो उन्हें भी अपने साथ खड़ा करिए और थिरकते रहिए ऑन दीज बीट्स जिन्हें हमने खास तौर पर सजाया है आपके लिए एंड यस एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कोई एक्सक्यूजेस चलने वाले नहीं है बॉस तो नो एक्सक्यूजेस बस उठ जाइए और थिरकना शुरू कर लीजिए क्योंकि फिटनेस भी तो मैटर करती है ना

0: किया है
1: किया सोचने की कोई जरूरत नहीं जल्दी से हमें ईमेल्स भेजिए क्योंकि ऑलरेडी हम तक ढेर सारी ईमेल्स आ चुके हैं और ये खूबसूरत ईमेल्स आपके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं तो हमें कहना ना पड़े कि किया नीलू शर्मा ने रूपपुर चंदेला से लिखा है इजहार से नहीं इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है वाओ सो स्वीट आगे भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत बातें इन्होंने लिखी हैं पूरी बातें पढ़ना यू नो स्नेहा सोनी सारा पीयू रोशनी बबीता जी को मेरा नमस्कार मेरी बहन दुबग्गा लखनऊ से तनु शर्मा के घर में आज खुशियों की बहार आई है उनकी जिठानी की बेटी हुई है तो मतलब आपकी तो सचमुच ईद मन गई है ना गुलफशा सिद्दीकी ने लिखा है संडीला से ईमेल कर रही हूँ आप कैसी हैं आपको भी ईद के ढेर सारी मुबारकबाद और सभी सुनने वालों को भी खाना खाकर आराम से अपने घर की छत पर बैठी हुई हूँ तेज हवा

0: शर्मा ने रूपपुर चंदेला से लिखा है, इजहार से नहीं इंतजार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। वाओ, सो स्वीट। आगे भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत बातें इन्होंने लिखी हैं, पूरी बातें पढ़ना यू नो। स्नेहा सोनी, सारा पीयू, रोशनी, बबीता जी को मेरा नमस्कार। मेरी बहन दुबग्गा लखनऊ से तनु शर्मा के घर में आज खुशियों की बहार आई है, उनकी जेठानी की बेटी हुई है। तो मतलब आपकी तो सचमुच ईद मन गई है ना। गुलफशा सिद्दीकी ने लिखा है, संडीला से ईमेल कर रही हूँ, आप कैसी हैं? आपको भी ईद के ढेर सारी मुबारकबाद और सभी सुनने वालों को भी। खाना खाकर आराम से अपने घर की छत पर बैठी हुई हूँ, तेज हवा चल रही है और इतनी अच्छी लग रही है ये हवा कि लग रहा है कि आज तो बहुत बढ़िया नींद आने वाली है। वही ध्यान रखिएगा गुलफशा जी, ये बोला जा रहा है कि आंधी पानी के भी आसार हो सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल। साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी, रोशनी रावत, हम सब मिलजुल कर सुन रहे हैं, भाई वाह। अशोक कुमार जी ने लिखा है, राजपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रविकांत जी ने ईमेल किया है दिल्ली परिवहन विभाग से, रविकांत जायसवाल और अमित भाई ने, जी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। सुल्तान रजा की जानिब से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद और सारे सुनने वालों को आदाब। आज का त्यौहार हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, हमने एक दूसरे को बधाइयां दी, सबने मिलकर सेवैयां खाई, बाकी सब ठीक हाँ चल रहा है ना। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल, मोनिश रजा, सादिक रजा, अम्मी और पापा, इन सब ने ईमेल किया है। शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, इन सब ने भी मिलकर ईमेल किया और कह रहे हैं कि इनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। तो जी आपकी पसंद के लिए ही तो हम करते हैं ये प्रोग्राम्स इतनी तैयारी से, है ना। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, रंजीत, बजरंगी काका, ये सब मिलकर लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा जा रहा है जी, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। विजय पाल यादव जी ने लिखा है, आबशार में आनंद आ गया, बहुत ही सुंदर गजलें जी, शुक्रिया। लिखते हैं आगे कि आपके साथ ही रहने वाला हूँ रजनीगंधा तक। विजय पाल यादव एवं समस्त परिवार, ग्राम वापस लेना हुआ, जिला खीरी। तो विजयपाल, रामराज और इनका ईमेल पढ़ा गया, हाँ जी हाँ जी, शाहरुन नूर अंसारी जी का ईमेल भी बिल्कुल पढ़ा गया, गुलफशा एंड नीलू शर्मा इनके भी ईमेल्स पढ़े गए, और यस अभी हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स हैं और ढेर सारे गाने भी हैं, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ। और अगर आप इधर उधर हुए तो मैं क्या पूछने वाली हूँ, मैं पूछूंगी क्यों होया।
1: की होया है?
2: कैर लगता है।
1: पानी
2: जहर लगता है।
1: की होया है?
2: कैर लगता है।
1: पानी
2: जहर लगता है।
1: या किसे दी कबर ते असी।

जावेद अख्तर जी, मैं चंद्रकला नहीं हूँ। और यस, आपने ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद कही है, तो आपको भी ढेर सारी मुबारकबाद। इन्होंने लिखा, मैं अपने वक्त की जिंदा कहानी छोड़ जाऊंगा, रहेगा सबके होठों पर हमेशा। ओके, कलम से निकली कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाऊंगा। पॉप टाइम कार्यक्रम में आपके मीठे लहजे का पूरा आनंद ले रहे हैं रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शशमल शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे हमारे सामने ईमेल है विवेक कश्यप का, लिख रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आवाज अच्छी लग रही। ओके, थैंक यू विवेक कश्यप फ्रॉम सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर से। और इन्होंने फरमाइश भी की है, फिलहाल तो आपके तक वो गाना पहुंच रहा है जिसने जमाने से धूम मचा दिया, मतलब इस गाने को सुनने वाले बच्चे जवान हो गए और जवान उस उम्र पर पहुंच गए कि अब वो क्या कहें। बट यस, उस गाने का जादू, इसका चार्म कहीं से भी कम नहीं पड़ा, यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए।

भाई वाह क्या स्वैग है यस यस यस इसे ही कहते हैं असली स्वैग अच्छा एक बात सच बताइए आज जब आपने अपने दोस्तों के साथ अपने अपनों के साथ मिलकर जबरदस्त मीठा खाया या फिर जब पकवानों पर हाथ साफ किया तो दो मिनट के लिए भी ये लगा कि भाई डाइट का क्या होगा या थोड़ा सा भी लगा कि कैसे चलेगा बॉस कैसे चलेगा इतने अच्छे अच्छे पकवान मेरे सामने और दूसरी तरफ ये टेंशन कि बड़ी मुश्किल से फिट हुए थे तो भाई चिंता मत करिए वंस इन अ व्हाइल तो चलता है इसी को तो कहते हैं ना चीट डे क्योंकि अगर आप त्योहार के दिन भी बैठ करके उबला हुआ खाना खा रहे हैं तो मतलब मेरे हिसाब से तो चलता नहीं है ये तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि जम करके खाइए जम करके नाचिए गाइए और धूम मचाइए क्योंकि फिट रहने के लिए खाने पर कंट्रोल ही जरूर उतना ही काफी नहीं होता उसके अलावा भी बहुत कुछ जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है ये कि आप एक्सरसाइज करते रहिए तो आपको एक्सरसाइज ही कराने के लिए तो आज वो गाने खास तौर पर लेकर आई हूँ जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे एंड यस यस यस वो लोग जो कि आलस में खाने पीने के बाद हेडफोन लगाकर बेड पर लेते हैं उन्हें बता दूं कि पॉप टाइम का मीटर अब धीमा नहीं होने वाला अब आपको लेकर चलने वाली हूँ उस टाइम में जो कि ठंडे ठंडे पानी जैसी चीज पर भी गाने ना सिर्फ लिखे जाते थे बल्कि वो सुपर डुपर हिट भी होते थे पहुंचा रही हूं आप तक बाबा सहगल का वो गाना जिसने ठंडे ठंडे पानी जैसी बेसिक चीज को बना दिया सेंसेशन बाबा सहगल अरे अपने सदर वाले बाबा सहगल और कौन हमारे गली मोहल्ले वाले बाबा सहगल कैसे बने नेशंस हार्ट थ्रोब इस बारे में भी बात किसी और दिन जरूर की जाएगी लेकिन फिलहाल जमकर खाने के बाद ठंडा ठंडा पानी पीते हुए थोड़ा सा थिरक लीजिए जनाब

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनते रहिए 100.7 FM।

तुझे 9:35 हो चुके हैं और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं सोच करके कि भाई हमारा ईमेल पढ़ा जाएगा या फिर नहीं। तो ऐसे में मैं बस यही कह सकती हूँ कि रिलैक्स, चिल, ऑफ कोर्स पढ़ा जाएगा, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। विनीत कुमार का ईमेल है रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से। How sweet, बहुत मीठी मीठी बातें उन्होंने कही है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ अपने आप से, अपनी तारीफ कैसे करूँ, अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके मैसेज को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेज के लिए। विवेक कश्यप जी का भी ईमेल आया है, इन्होंने क्या लिखा है।

विजिबल नहीं है. गुड इवनिंग, पॉप टाइम प्रोग्राम अच्छा लग रहा है. विवेक कश्यप सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर. ओके गाने अच्छे बज रहे हैं. हम सब खाना खाने जा रहे हैं, आप भी आकर खा लें. हाउ स्वीट. ईद उल अज़हा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. और ये सारी बातें कहने वाले हैं वकील अहमद मंसूरी कटका हतूरी जिला सीतापुर से. साहिब अंसारी, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ शाह सिद्दीकी, अमन नवाब जो कि छत के ऊपर है, इन सब के साथ मिल करके इन्होंने ईमेल किया है. सतीश कुमार जी का भी ईमेल आया है फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से. एंड आपकी मकमल ओके. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इतनी खूबसूरत बातें लिखने के लिए दोस्त, आपका दिल से शुक्रिया. रजनीश पासवान जी रामपुर सीतापुर से, इन्होंने लिखा है कि गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी ऐसे लाजवाब डांसिंग ट्रैक पर खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ. आबशार उमदा रहा तो जी, रुकने की कोई जरूरत नहीं है. मैं चाहती नहीं कि आज आप रुके, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप इतना नाचे, इतना नाचे, इतना थिरके कि बस आपको आज की ये रात, ईद उल अज़हा की रात हमेशा याद रह जाए. अरविंद कुमार जी ने लिखा है, अरविंद दुबे ग्राम धर्मदेवा छठा जिला मिर्जापुर से. मेरा फेवरेट गाना बज गया. अच्छा कौन सा? आगे लिख रहे हैं कि रेनबो लखनऊ से एक रिश्ता बन गया है. सारे प्रोग्राम भले ही ना सुन पाऊं तो भी पॉप टाइम एंड रेनबो कैफे कभी नहीं छोड़ता. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू. एक्चुअली आज के वक्त में अगर आप हमें अपना वक्त देते हैं तो ये सबसे बड़ा तोहफा है ना. हम सभी अपने पूरे परिवार के साथ छत पर प्रोग्राम सुन रहे, चांदनी रात है. गाने सुन सुनकर छोटी बहन जी कुछ ज्यादा थिरक रही है, माँ की मीठी डांट खा रही है. ये सब इसी प्रोग्राम की खासियत है. अरविंद दुबे, गोविंद प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से. एंड जितेंद्र नामदेव का भी ईमेल आया है मेरे सामने. जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खान का नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, पोस्ट खनौधी जिला शहडोल मध्य प्रदेश, इतनी दूर से. नमस्ते ज्योति जी. जी नमस्कार, नमस्कार. तुमसे बात ना हो तो दिल उदास रहता है, तुम्हारी यादों में ही हर एहसास रहता है. तुम दूर होकर इतने करीब हो कि हर धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम रहता है. वाह वाह क्या बात है. इंद्रपाल मिश्रा जी ने लिखा है, ज्योति दीदी को प्यार भरे नमस्कार. आपके आने से श्रोताओं में खुशी की लहर, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है. पता नहीं आप कितने खुश हैं या मतलब उसमें मैं नहीं जाना चाहती, बट यस आप अगर मेरी खुशी के मीटर की बात कहें तो वो बहुत ऊंचा चल रहा है, पारा एकदम हाई है. ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत ईमेल्स के लिए. एंड एंड एंड एंड एंड भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से एम के राज लिख रहे हैं कि आंधी के साथ साथ बारिश भी होने वाली है लखीमपुर खीरी में. हमारे लखीमपुर में तो मौसम ने भी पॉप टाइम शुरू कर दिया है. आंधी पानी बारिश तीनों मिलकर ऐसा धमाल मचा रहे हैं कि छतरी कह रही भाई मुझे छुट्टी चाहिए. हर रोज लाइव सुनता हूँ, सुनते सुनते चाय ठंडी हो जाती है. ओके बस गुजारिश है ये कि अगली बार बारिश के मौसम में कोई ऐसा गाना बजा देना कि बादल भी थिरकने लगे और बिजलियां भी तालियां बजाने लगे. लखीमपुर से आपका फैन मुनेश कुमार राज, ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा. ओके कलम के साथ साथ रेडियो का भी दीवाना. बहुत बहुत शुक्रिया, सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि मौसम बदल गया है. और बस अभी इस वक्त का, इस बार का ये आखिरी ईमेल, चांद से कहूं मेरा पैगाम देना उनको, अपना चांद मानते हैं हम जिन दोस्तों को. मेरे प्यारे से दोस्त, ईद मुबारक हो. आनंद तिवारी दारू कोहिया मल्लावा हरदोई यूपी से लिखते हैं, जबरदस्त प्रोग्राम जी, आपको पसंद आ गया और क्या चाहिए. क्योंकि श्रोताओं की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार भी हर किसी के नसीब में हो, जरूरी नहीं.

भाई नसीब की बात तो सबसे बड़ी ये होती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको कभी भी तन्हा अकेला महसूस होने ही ना दे। अब देखिए ना, जैसे ही कोई त्योहार आता है ढेर सारे आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, जी ईद मुबारक, होली मुबारक, दिवाली मुबारक, होता है ना। तो आज भी सुबह से कुछ ऐसा ही आलम था, सुबह से इतने मुबारकबाद के मैसेजेस आए, इतने मुबारकबाद के मैसेजेस आए कि एक तरफ तो दिल एकदम खुश हो गया, दूसरी तरफ फोन बेचारा वो हैंग करने लगा। पर एक चीज, वो थोड़ी सी हल्की सी चुभी, भाई हमारे बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं कि जब वो किसी और के मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं तो वो ये भी नहीं देखते कि मैसेज में पहले वाले बंदे ने अपना नाम लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ईद मुबारक ज्योति मिश्रा, अब आपने ये अपनी तरफ से भेज दिया किसी और को तो कैसा लगेगा, बट यस ये होता है और हर त्योहार के मौके पर होता है। तो भाई दूसरों का फॉरवर्डेड मैसेज आगे खिसकाने से पहले एक बार चेक तो कर लो, इतना भी क्या आलस।

0: कॉपी पेस्ट करते टाइम नाम तो बदल लो। वैसे आप कहो कुछ भी, आज की जेनरेशन का स्वैग एकदम अलग है। एक तरफ हाथ में फोन होगा मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए, और दूसरी तरफ नए नए कपड़े में एकदम माहौल बना करके जब तक इंस्टा पर चाचे रील्स और एस्थेटिक फोटोज पोस्ट ना हो जाएं, तब तक लगता है कि त्योहार ठीक से मन नहीं पाया है ना। तो बस इतना ही कहूंगी कि थोड़ी देर के लिए फोन को किनारे रखिए, स्क्रीन से अपनी आंखें हटाइए और इस रात की रौनक को महसूस करिए। वैसे जब फोन की बात आई है तो जाने क्यों बार बार मुझे ये गाना याद आ रहा है। बस मैंने प्लान कोई और सॉन्ग किया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन फोन की बात करते करते मुझे ये गाना दिख गया। तो चलिए पहले यही वाला सॉन्ग आप तक पहुंचाती हूँ।
1: 02264008955।
2: हेलो,
1: अकेले हो? दोस्ती करोगे?
2: हाँ।
0: बहुत ही चुलबुला गाना और अपने टाइम पर हुआ था ये बिल्कुल सुपर डुपर हिट। तो चलिए लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

तो जी मैं तो अपना वादा लगातार निभा रही हूँ आपको थिरकाने का। आपको भी अपना वादा निभाना है। अब ये नहीं कहना है कि भाई 9:51 और 37 सेकंड्स हो गए हैं, अब हम थक गए हैं, त्योहार का दिन है, थोड़ा आराम करना है। ना ना ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई ऐसा तो मूड बना ही नहीं, क्योंकि अभी जो अगला गाना आ रहा है ना आपके तक, इसके बीट्स में कुछ ऐसा करंट है कि अगर आप सुस्त हैं तब भी थिरकने लगेंगे। एंड यस, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर पैर सीधे एक्सेलरेटर पर चले जाएंगे। ये गाना हमारे खास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो इस वक्त गाड़ियों की एक्सेलरेटर बढ़ाकर, बेस बढ़ाते हुए गाना सुनते हुए लखनऊ की सड़कों का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन भाई बस यही कहूंगी कि सुरक्षित रहिए, एंजॉय करना बिल्कुल बनता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप सेफ ड्राइविंग नहीं करेंगे। बिल्कुल सेफ ड्राइव करते रहिए। और ये सभी भी हमारे पास काफी वक्त है, 9:52 और ठीक 36 सेकंड। आप हैं ज्योति के साथ और ज्योति आप तक पहुंचा रही है अखिल को।

तेरी आवाज से महक उठा है मेरा गांव, रेनबो पॉप टाइम सुनकर भूल जाते हैं हम सारे घाव। भाई वाह, मनीष कुमार राज ने ये लिखा है भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से। मोनू से जी, पॉप टाइम सबसे पॉपुलर प्रोग्राम बनता जा रहा है, थोड़ी व्यस्तता थी इसलिए देरी से मेल किया, सॉरी। कम ऑन, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं समझती हूँ मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का भी ईमेल आया है। एंड अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नाम और पढ़ लेते हैं। जयराम जी आपका नाम मैंने ले दिया, राजेश कुमार जी, ज्योति दीदी को प्यार भरा नमस्ते, प्रोग्राम बिंदास लग रहा है, आपको छत पर बैठ करके सुन रहा हूँ, हवा अच्छी चल रही है। आपका ईमेल कुर्सत हरदोई से भेज रहा हूँ राजेश विद्यार्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमन नवाब ने लिखा है, कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब थोड़ा बेटर महसूस हो रहा है, दिल नहीं माना तो मेल कर दिया, बहुत अच्छा किया, और अपना मन बस हमारे साथ लगाते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, जल्दी से ठीक हो जाइए। धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी का भी ईमेल आया है, श्रृंगार लखीमपुर खीरे, श्रीनगर लखीमपुर खीरे से बाबू अंसारी का ईमेल है, कैसी यहाँ प्रोग्राम अच्छा लग रहा, नसीम अंसारी, मुन्नन अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता और बाबू अंसारी, राजकमल यादव जी ने भी ईमेल किया है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतेश बहादुर यादव जी, ममता यादव जी के साथ इन्होंने ईमेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये खूबसूरत वक्त बिताकर, स्पेशली त्योहार का दिन। एक बार फिर कहना चाहूंगी आज के इस खास मौके की आप सबको ढेर सारी बधाइयां। पॉप टाइम को तो वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि 9:58 ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन रजनीगंधा में बहुत जल्द फिर मिलने आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड यस कीप एंजॉयिंग। जय हो।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में ना रहे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 4,95,00,000 आवास के लक्ष्य के मुकाबले 3,91,00,000 आवास को पहले ही मंजूरी मिल चुकी।

की है। श्री चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज अंबेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर महानगर एवं देवरिया के जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिलीप देव पटेल को अंबेडकर नगर, रामसकल पटेल को वाराणसी, काशीनाथ सिंह को चंदौली, रमेश प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर महानगर एवं काली प्रसाद को देवरिया का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलते रुख से भीषण गर्मी और हीट वेव से परेशान लोगों को राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों में तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और गरज चमक वज्रपात होने की संभावना जताई है। ऐसा होने से तापमान गिरेगा और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आगरा, मेरठ, कानपुर, हमीरपुर, बांदा समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: रात के खामोश पहर में

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

नमस्कार दोस्तों, रात के 10:06 और ठीक 5 सेकंड्स हो रहे हैं। तेजी से भागते हुए शहर की रफ्तार अब धीमे धीमे थमने लगी है।

दिन भर की भागदौड़ के बाद अब यूं भी वक्त आ गया है थोड़ा सा ठहरने का, थम कर बैठने का और उन गीतों को महसूस करने का जो आज भी आपकी मेरी हम सब की धड़कनों में बसे हुए हैं। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति और अब मैं लेकर आई हूं आपके लिए रजनीगंधा के फूलों सा महकता प्रोग्राम, जिसका नाम है, जी हाँ, जिसका नाम भी है रजनीगंधा ही। आज है बकरीद का त्योहार, तो इस खूबसूरत रात हमारी तरफ से आपको और आपके अपनों को ढेर सारी मुबारकबाद। दुआ है आपके घरों में हमेशा मोहब्बत की रोशनी, रिश्तों की गर्माहट और दिलों का अपनापन बना रहे। तो आइए आज की इस मुलायम महकती रात में आपकी नजर करती हूँ कुछ सदाबहार नगमे, कुछ दिलकश किस्से और कुछ खूबसूरत एहसासात, कुछ महकते जज्बात। तो अगर ऐसे में आपका भी मन करे कि थोड़ी देर यही रुक जाए, ठहर जाए, तो खुद को रोकिएगा नहीं।

कभी कभी बात जगह की नहीं होती, साथ की भी होती है, है ना? बशीर बद्र साहब ने क्या खूब कहा है, बेवफा रास्ते बदलते हैं, बेवफा रास्ते बदलते हैं, हम सफर साथ साथ चलते हैं। उसकी आंखों को गौर से देखो, उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिर में चराग जलते हैं। क्यों किसी का साथ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है मानो आसमान में झिलमिल सितारे टिमटिमा रहे हों। ऐसे में दिल कुछ और चाहे तो कैसे चाहे, मन कुछ और मांगे तो कैसे मांगे।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. दस बजकर 19 मिनट और ठीक 47 सेकेंड्स। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा, आज ज्योति मिश्रा के साथ।

कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि उनके आने भर से सब कुछ रोशन सा दिखने लगता है, हर तरफ नूर छा जाता है, जिंदगी आसान हो जाती है और लगता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आसान हो ही जाएंगी। तेरी मोहब्बत में इतना असर देखा, तेरी मोहब्बत में इतना असर देखा कि तेरे ख्वाबों में ही अब सहर देखा। ये जादू मोहब्बत का होता है या किसी के वजूद का, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला गीत जो आप तक पहुंचा रही हूं वो है 1975 की फिल्म आंधी का। पंचम दा ने इस गीत की धुन को बहुत ही मिनिमल ऑर्केस्ट्रा के साथ कंपोज किया था ताकि शब्दों की नरमी और एहसासों की गर्माहट पूरी तरह उभर कर सुनने वालों के दिल तक पहुंच सके। शायद इसीलिए जब किशोर दा और लता जी ने आवाज दी इस गाने को तो सुनने वालों को आज भी ऐसा लगता है जैसे दो रूहें हमारी रूह से कुछ कह रही हैं। फिल्म की शूटिंग हुई थी श्रीनगर के ऐतिहासिक परी महल में और शायद यही वजह है कि एक तरफ ये गाना नूर की बात करता है और दूसरी तरफ एक अजीब सी ठंडी रूहानी खुशबू हम तक पहुंचाता है।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, हैरते आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: आज भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार महबूब खान की पुण्यतिथि है। आन, अंदाज और मदर इंडिया जैसी कालजयी फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय सिनेमा को न सिर्फ भव्यता दी, बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू, रिश्तों की सच्चाई और इंसानी जज्बातों की गहराई भी हम तक पहुंचाई। उनकी फिल्मों में गांव की पगडंडियां भी थी, माँ की ममता भी, और टूटते बिखरते दिलों की खामोश कसक भी। अगला सॉन्ग उन्हीं की फिल्म सन ऑफ इंडिया से। हम सब जानते हैं कि जो चला गया उसका वापस आना मुमकिन नहीं, फिर भी जाने क्यों, कभी कभी दिल उसी को ढूंढता है जो हमारे पास नहीं है। हमारी श्रद्धांजलि महबूब खान साहब को। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं, अपनी फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए और उस पहचान के जरिए जो उन्होंने हमारी फिल्मों को दी।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. बदकिस्मती को भी ये गवारा न हो सका, बदकिस्मती को भी ये गवारा हो न सका, हम जिस पे मर मिटे वो हमारा हो न सका। वक्त हुआ है 10:36:45 और आप डूब रहे हैं पुराने सदाबहार मदहोश करते नगमों के जादू में, ज्योति के साथ प्रोग्राम रजनी गंधा में।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दस बजकर 41 मिनट और 44 सेकंड्स हो चुके हैं और अब रजनीगंधा में जो सॉन्ग मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं वो है 1974 में रिलीज हुई फिल्म आरोप का गाना। आरोप फिल्म आत्मा राम ने निर्देशित की थी।

और आत्मा राम जी का नाम अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस किस कनेक्शन में आपने सुना है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस फिल्म के निर्देशक आत्मा राम हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता गुरुदत्त के भाई थे। फिल्म में विनोद खन्ना, सायरा बानो और विनोद मेहरा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और संगीत दिया था भूपेन हजारिका ने। ये उन बेहद रेयर मौकों में से एक मौका था जब उन्होंने किसी हिंदी फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। जो गाना अब मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ नैनों में दर्पण, आज भी इसे

खाई थी। और संगीत दिया था भूपेन हजारिका ने। ये उन बेहद रेयर मौकों में से एक मौका था जब उन्होंने किसी हिंदी फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। जो गाना अब मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ नैनों में दर्पण, आज भी इसे

बहारों का ये मौसम यूं ही बना रहेगा। 10:54 हो चुके हैं। इस गीत के बाद एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी रजनीगंधा में। वादे के मुताबिक आपके साथ बनी रहने वाली हूँ मैं पूरे 12 बजे तक। सो स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में CBSE की कक्षा 12 की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उभरते तकनीकी रुझानों से शिक्षार्थियों को बेहतर ढंग से परिचित कराने के लिए AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार की दिशा में उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करने और AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। जौनपुर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित VVPAT वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउस में रखी VVPAT मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव, CCTV कैमरे की क्रियाशीलता एवं अभिलेखों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेयरहाउस में सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा CCTV कैमरे क्रियाशील रहने चाहिए। प्रदेश की पॉलिटेक्निक में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली UPJEEP 2026 परीक्षा का आयोजन 2 से 9 जून तक किया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 12 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
1: वो भूली दास्तान फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. ग्यारह बजकर चार मिनट और ठीक 24 सेकंड्स। अपना वादा निभाते हुए एक बार फिर मैं ज्योति आपके साथ हूँ रजनीगंधा में, लेकर कुछ ऐसे गाने जो कभी हो ही नहीं सकते पुराने।

कुछ इत्तेफाक कितने खूबसूरत होते हैं, है ना? जब पहली बार किशोरदा ने आवाज दी होगी काका यानी राजेश खन्ना को, तो किसी ने ये सोचा भी ना होगा कि ये जोड़ी इतनी सफल होगी। अभी जो गीत मैंने आप तक पहुंचाया वो था 1977 की फिल्म अनुरोध से। एक दौर वो था कि राजेश खन्ना स्क्रीन पर हो और किशोरदा की आवाज हो बैकग्राउंड में, तो बस इतना ही गारंटी होता था सफलता की, जादू के छाने की। जी हाँ, कुछ इस तरह से राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी लोकप्रिय हुई कि दर्शकों को लगने लगा था कि राजेश खन्ना की असली आवाज किशोरदा ही हो सकते हैं। वो मासूमियत, वो चुलबुलापन, वो महसूस करना मोहब्बत को। तो चलिए एक और खूबसूरत गाना सुनाती हूँ इसी जोड़ी का। फिल्म का नाम कटी पतंग, जो रिलीज हुई थी 1971 में। मोहब्बत हमारी कुछ यूं मुकम्मल हो गई, मोहब्बत हमारी कुछ यूं मुकम्मल हो गई, मैं उस जैसा हो गया वो मुझ जैसी हो गई।

11:17 और ठीक 32 सेकेंड्स। आप हैं ज्योति के साथ और सुन रहे हैं वो प्रोग्राम जो आपके दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रजनी गंधा की।

कितना अच्छा लगता है ना जब कुछ सपने सच हो जाएं, कुछ वादे निभा लिए जाएं। हमेशा ऐसा हो ये हो नहीं सकता, लेकिन जब कभी ऐसा कुछ होता है तो दिल को ऐसा लगता है कि बस यही तो चाहिए जिंदगी जीने के लिए। अगला सॉन्ग जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं वो है 1976 की फिल्म सबसे बड़ा रुपया से। ये फिल्म एक सुपरहिट कन्नड़ फिल्म कासिद्रे कैलासा का ऑफिशियल रीमेक थी। फिल्म में थे विनोद मेहरा और मौसमी चैटर्जी, और इस फिल्म को तो पसंद किया ही गया था, फिल्म से कहीं ज्यादा चर्चा में रहे थे इसके गाने। ये जो सॉन्ग आप तक आ रहा है ये अपनी रिलीज के ईयर में रेडियो पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सॉन्ग्स में से शामिल रहा। तो आइए सुनते हैं 1976 की फिल्म सबसे बड़ा रुपया का ये खूबसूरत सॉन्ग।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो वही शख्स सबसे हसीन है।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा।

एक सुकून सा मिलता है, एक सुकून सा मिलता है तुझे सोचने से भी। फिर कैसे कह दूं कि मोहब्बत नहीं है तुमसे। अगला गीत 1976 की फिल्म फकीरा से। कुछ इसी सुकून का एहसास आप तक पहुंचाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कुछ इस तरह से मोहब्बत की है तुमसे, कुछ इस तरह से मोहब्बत की है तुमसे कि सांसें मेरी चलती हैं पर महसूस तुम होते हो। शशि कपूर और शबाना आजमी पर फिल्माया हुआ ये गाना। लगता ही नहीं कि 50 साल पुराना है, यकीन नहीं आता तो खुद ही सुनकर देख लीजिए।

वक्त हुआ है 11:44 ये लीजिए ठीक 45 मिनट और 2 सेकंड्स आप सुन रहे हैं रजनीगंधा के फूलों से महकते मधमाते सदाबहार पुराने फिल्मी गाने आज ज्योति मिश्रा के साथ स्टे ट्यून्ड

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दिल अगर फूल सा नहीं होता, दिल अगर फूल सा नहीं होता, कोई कांटा चुभा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। गुफ्तगू उनसे रोज होती है, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं हो।

Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और इसी उम्मीद के साथ अब इस महकती हुई रात से इजाजत लेने का वक्त आ पहुंचा है। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ छोड़कर जा रही हूं कुछ अनकहे एहसास, कुछ धुने, कुछ यादें और कुछ ऐसे चेहरे जो ना चाहते हुए भी दिल के आसमान पर टिमटिमाते रहते हैं सितारों की तरह। आज रजनीगंधा की इस महफिल में हमारे साथ गुनगुनाए मोहब्बत के वो नगमे जिन्होंने कभी हमारे होठों पर मुस्कान सजा दी तो कभी हमारी आंखों में नमी सी ला गए। उम्मीद है इन सदाबहार गीतों की खुशबू आपकी इस शाम को, इस रात को और भी हसीन बना गई होगी। विदा लेने से पहले बशीर बद्र साहब की ये नर्म और रूहानी पंक्तियां आपकी नजर, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी,

किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो चलिए अब इजाजत लेती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बदलते समय में पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस दक्षता, अनुशासन, संवेदनशीलता और जन विश्वास के मानकों पर देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में स्थापित हो सके। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिला इकाई द्वारा जिला कार्यालय पर आयोजित जिला कार्यशाला में संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क अभियान और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर व्यापक मंथन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का मस्तक विश्व मंच पर ऊंचा करने का कार्य किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन

वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:13 पर और सूर्यास्त 6:54 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 प्रसारित होगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। मध्यरात्रि के 12:02 और ठीक 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर। साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 प्रसारित होगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। मध्यरात्रि के 12:02 और ठीक 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर।